0: 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
1: It's true. हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life. From relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
2: Beta, 95% aaye?
3: हाँ मम्मी.
2: गुड. अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए.
4: मेरा?
2: हाँ. प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड.
4: वो
5: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने. एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज. विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांधी. सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
6: कफिंग और स्नीजिंग एट होम, योर एयर डक्ट्स मे बी टू ब्लेम, एंड क्लॉग्ड ड्राई वेंट्स कैन इवन कॉज फायर्स. डक्ट टाइम रिमूव्स डस्ट, पोलन, एलर्जेंस एंड लिंट, गिविंग यू क्लीनर एयर, बेटर हेल्थ, एनर्जी सेविंग्स एंड पीस ऑफ माइंड. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Funny Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duct Time.
7: Restaurant choose karna ho? Google Reviews. Hotel book karna ho? Google Reviews. Lekin bachcho ke doctor ki jab baat aaye to ek hi review sabse important hota hai.
5: इसलिए डॉक्टर फरहाद हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ DFW चाइल्ड मॉम अप्रूव्ड पीडियाट्रिशियन फॉर 4 कंसेक्यूटिव इयर्स 2023 थ्रू 2026. मीट डॉक्टर निशात फरहाद एट पैशन हेल्थ पीडियाट्रिक्स, सर्विंग फैमिलीज एट फ्रिस्को एंड ऑब्री, स्टार्टिंग एट द एंड ऑफ ऑगस्ट. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, बिकॉज एवरी हेल्दी स्माइल बिगिंस विद ट्रस्टेड केयर. कॉल 214-666-6259 एंड शेड्यूल योर अपॉइंटमेंट्स टुडे.
8: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit MyTimeEquity.com or call 972-330-2771.
5: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
9: Some journeys begin with silence and some begin with devotion. At Osho Universal, experience both. Seek inner awareness through Osho's powerful meditation techniques and bow your head at the serene Neem Karoli Baba Temple, where faith, peace and blessings come together. Stay overnight or simply visit for the weekend. Next to beautiful Lake Texoma, it's the perfect destination for spiritual rejuvenation and quality time with your family. Osho Universal, where meditation meets devotion. Visit oshouniversal.org to learn more and plan your trip.
10: Nation ka fun station, Fun Asia Radio.
11: Fun of

0: नेशन के फन स्टेशन फनिशर रेडियो पर दोस्तों आप सभी का ब्रेक के बाद स्वागत है। दोस्तों यू आर लिसनिंग टू द फनिशर नेटवर्क ब्रॉडकास्टिंग नॉनस्टॉप बॉलीवुड एंटरटेनमेंट हियर ऑन 104.9 एफएम फन एशिया रेडियो एंड आल्सो ऑन 104.1 एफएम रेडियो कैरवान। मोर वैरायटी है, मोर चॉइसेस है और मोर फन भी है, ओनली अंडर वन नेटवर्क व्हिच इज फनिशियस नेटवर्क। और दोस्तों मैं हूं आपकी होस्ट और आपके इस रिले सफर की साथी आपकी अपनी अपूर्वा। ये है आपका अपना शो जिसका नाम है ये शाम मस्तानी। एवरी सनडे की शाम 6 से 8 रहता है आपका और मेरा साथ, जुड़े रहते हैं आप भी हमारे साथ हमारे फोन लाइंस के जरिए 9722355555 के जरिए। आज की शाम में फ्रेंडशिप ट्रिप को सेलिब्रेट करते हुए मैं आप सभी को अच्छी अच्छी बॉलीवुड में जो दोस्ती पे मूवीज बनी है उसके डायलॉग सुनवा रही हूँ और डायलॉग सुनवाने के बाद आपको बोल रही हूँ कि वो कौन सी मूवी है वो आपको मुझे पहचान के बताना है। तो चलिए हमारा जो नंबर है स्पीड डायल पे रख दीजिए क्योंकि अभी बारी है अगले डायलॉग की और आपको मुझे फट से बताना है कि ये कौन से मूवी का डायलॉग है। बहुत ही इजी पीजी वाला डायलॉग है ये। 9722355555 है स्टूडियो का नंबर और ये रहा डायलॉग।
1: आज डर मत फरहान, नहीं तो 50 साल बाद जब तू बूढ़ा होकर ऐसी किसी अस्पताल में पड़ा होगा और मरने का इंतजार कर रहा होगा तब सोचेगा कि लेटर हाथ में था, टैक्सी गेट पर थी, जरा सी हिम्मत कर लेता ना तो सारी जिंदगी कुछ और हो सकती थी। आज डर मत फरहान, नहीं तो 50 साल बाद जब तू बूढ़ा होकर ऐसी किसी अस्पताल में पड़ा होगा और मरने का इंतजार कर रहा होगा तब सोचेगा कि लेटर हाथ में था, टैक्सी गेट पर थी, जरा सी हिम्मत कर लेता ना तो सारी जिंदगी कुछ और हो सकती थी। आज डर मत फरहान, नहीं तो 50 साल बाद जब तू बूढ़ा होकर ऐसी किसी अस्पताल में पड़ा होगा।
0: 9722355555 इज द नंबर टू कॉल द स्टूडियो। गुड इवनिंग फनिशिया रेडियो, यू लाइव ऑन एयर, हु इज दिस? गुड इवनिंग फनिशिया रेडियो,
2: 9722355555
0: रेडियो का वॉल्यूम प्लीज कम कर दीजिए। आपका नाम बताइए।
3: जिग्नेश।
0: जिग्नेश जी बताइए कौन सी मूवी थी?
3: थ्री इडियट।
0: और ऑसम, थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग फनिशिया रेडियो, यू लाइव ऑन एयर, हु इज दिस?
4: Hi, this is Saurabh.
0: Saurabh, बताइए कौन सी मूवी थी?
4: Three Idiots.
0: Three Idiots, बिल्कुल सही जवाब। Good evening, Fanisher Radio. You're live on air. Who's this?
5: This is Nihil.
0: बताइए कौन सी मूवी थी?
5: Three Idiots.
0: Three Idiots, बिल्कुल सही। And the last caller. Good evening, Fanisher Radio. You're live on air. Who's this?
6: Hi, Divya here again. This is Three Idiots.
0: Three Idiots it is. Thank you so much for all the lovely calls. And with that, आपको लेकर चलती हूँ इसी मूवी के गाने की तरफ।

दोस्तों, इफ यू गेट इन्वॉल्व्ड इन अ कार और ट्रक एक्सीडेंट और स्लीप एंड फॉल इंसिडेंट, अटॉर्नी ओमर ख्वाजा विल फाइट योर केस एंड गेट हेल्प यू गेट द कंपेंसेशन दैट यू डिजर्व. डीलिंग विद इंश्योरेंस कंपनीज कैन बी स्ट्रेसफुल एंड फॉर दोज सिचुएशंस यू नीड एन अटॉर्नी दैट विल मेक श्योर दैट यू आर कंपेंसेटेड. यू डोंट पे अंटिल यू विन एंड फॉर अ फ्री कंसल्टेशन यू कैन कॉल देम. द नंबर टू कॉल इज 4693005046 और यू कैन विजिट देयर वेबसाइट विच इज attorneyomar.com. भाई, आज की तारीख है August 2nd, 2026. आज के दिन पूरे देश भर में फ्रेंडशिप डे मनाया जा रहा है और किसी के लिए आज का दिन बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, फेवरेट है. जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मेरे अजीज दोस्त और प्यारे से परम मित्र मार्विन दास जी की. जी हाँ, बंदा बिंदास मार्विन दास, उनको आप सुनते हैं हमेशा यहाँ पर फनीशा रेडियो पर. जी आज उनकी धर्म पत्नी जी का है जी हैप्पी वाला बर्थडे. उनका नाम है ज्योति और उनको मार्विन जी प्यार से बोलते हैं जोजो जी. सो जोजो जी, विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे. आई एम श्योर यू मस्ट बी हैविंग अ ग्रेट ग्रेट टाइम विथ योर बिलवड हस्बैंड. एंड मेरी तरफ से, मार्विन की तरफ से और पूरी हमारी फनीशिया टीम की तरफ से ज्योति जी, आपको बहुत सारा वाला हैप्पी बर्थडे. आई एम श्योर आप बहुत अच्छा अपना दिन बिता रही होंगी और आपको हैप्पी फ्रेंडशिप डे भी कहना चाहती हूँ हमारी पूरी फनीशिया टीम की तरफ से और मेरी तरफ से भी. आपके जो पति है वो आपको ये वाला गाना डेडिकेट करना चाहते हैं, तो चलिए ये गाना सुनते हैं और इसके बाद हमारा फ्रेंडशिप का सेगमेंट आगे बढ़ाएंगे. वंस अगेन विशिंग यू ज्योति अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे.

0: Tandoori Flame, located in Garland, is a new flavor destination for all these spice lovers. Serving up sizzling tandoori platters, rich curries, and all your North Indian favorites with that home-style punch. From smoky tandoori kebabs to velvety curries and fresh hot naan, every plate feels like a celebration. Step in today and let Tandoori Flame serve you the kind of meal that turns the ordinary day into a feast. Tandoori Flame Restaurant, which is located in Garland. उसी के साथ दोस्तों आपको अगले मूवी का डायलॉग सुनवाती हूँ. जी हाँ, हमारा फ्रेंडशिप डे का जो सेगमेंट चल रहा है उसी को कंटिन्यू करते हैं. और ये वाला जो अगला फ्रेंडशिप डे की हम जो सेलिब्रेट कर रहे हैं उसका जो डायलॉग है वो आप सभी को सुनवा देती हूँ. गौर से सुनिएगा और फिर उसके बाद मुझे कॉल करके बताइएगा कि कौन सी मूवी है. 9722355555 है स्टूडियो का नंबर.
1: साले अपने डॉलर से मुझे खरीद रहा है. इतनी सस्ती नहीं है मेरी दोस्ती. मुझे तेरे पैसे नहीं चाहिए मनी, समझा?
2: तो फिर क्या कर सकता मैं तेरे लिए? अभी ये ले दारू पी मेरे साथ.

0: such a heart-touching dialogue and such a heart-touching scene. Good evening, Funny Shell Radio. You're live on air. Who's this?
1: Hey, how are you doing? This is Abdul.
0: बताइए सर, कौन से मूवी का डायलॉग था?
1: ये जवानी है दीवानी.
0: बिल्कुल सही जवाब. थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल. गुड इवनिंग फनी शॉट रेडियो, यू लाइव ऑन एयर. हु इज दिस? कॉल ड्रॉप हो गया. जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब था. दिस मूवी वॉज ये जवानी है दीवानी. तो चलिए ये जवानी है दीवानी का गाना सुन लेते हैं.

0: This part of our show is brought to you by AG Fintechs, which is one of the fastest growing tax firm in the US. They offer innovative financial services with untapped potential for both individuals and businesses. They are trusted, efficient, and get you ready for the future. You can call them. The number to call is 469-942-9888, or you can visit their website, which is agfintechs.com. Friendships Day ko celebrate karte hue jo main agla dialogue aapko sunwane wali hu. It is going to be the last dialogue of our show. तो चलिए ये वाला डायलॉग सुन लीजिए. 972-235-5555 है स्टूडियो का नंबर. ये maybe थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बट nonetheless भाई आप सब लोग बॉलीवुड के बहुत सारे बड़े वाले फैन हो तो आपको आई एम श्योर पता चल ही जाएगा कि कौन से गाने के कौन से मूवी के बारे में मैं बात कर रही हूँ. ये अगला वाला डायलॉग आपको सुनना है और मुझे बताना है कि कौन सी मूवी है. 972-235-5555 है स्टूडियो का नंबर. ये रहा डायलॉग.
1: बेटा तुम्हारा रिजल्ट डिसाइड नहीं करता कि तुम लूजर हो कि नहीं, तुम्हारी कोशिश डिसाइड करती है. पर कोशिश तो आपने बहुत करी ना बेटा. बेटा तुम्हारा रिजल्ट डिसाइड नहीं करता कि तुम लूजर हो कि नहीं, तुम्हारी कोशिश डिसाइड करती है. पर कोशिश तो आपने बहुत करी ना बेटा. बेटा
0: जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, तो मैं ही आपको बता देती हूँ कि ये कौन सी मूवी है. जी हाँ, ये डायलॉग आप सुन रहे थे टेकन फ्रॉम द मूवी छिछोरे, जो कि सुशांत सिंह राजपूत पे पिक्चराइज थी, उसमें श्रद्धा कपूर थी. तो चलिए छिछोरे मूवी का ये वाला गाना आपको सुनवा देती हूँ. एंजॉय दिस ट्रैक.

0: ओए तेरी बैंड सुना इस यार
1: ब्रेकिंग न्यूज होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग नो हिडन फीस नो सरप्राइजेस और हाँ सबसे बड़ी खबर उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज हजारों फैमिलीज का भरोसा विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338 4697343338 myfamilyhomeloan.com is powered by Loan Factory NMLS 2025289 licensed mortgage broker in Texas all loans subject to credit approval equal housing lender
2: At Tanishq no two diamonds are exactly alike they're beautifully rare just like the woman who wears them that's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds with up to 25% off on diamond value and making charges Plus, zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
3: जी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे?
4: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
3: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
4: हेलो, तुम डेलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
3: सच में? सब संभालेंगे?
4: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
1: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770 वेनेसा इवेंट्स योर सेलिब्रेशन पार्टनर
5: यार मेरे फोन में हम दोनों के कितने सेल्फीज है यार
1: तो चल उन सेल्फीज से पिज़्ज़ास खाते हैं
5: व्हाट
6: दिस फ्रेंडशिप डे ब्रिंग योर फ्रेंडशिप टू फन पिज़्ज़ा किचन पोस्ट अ सेल्फी विद योर फ्रेंड्स ऑन इंस्टाग्राम टैग फन पिज़्ज़ा किचन एंड एंजॉय 10% ऑफ योर बिल और अ फ्री गार्लिक ब्रेड ऑफर वैलिड टिल August 3rd विजिट funpizzakitchen.com फॉर मोर डिटेल्स
7: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
8: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for us.
7: क्या मतलब?
8: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
7: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
8: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call तो करो. 888-888-9914.
7: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
9: Don't let debt ruin your life. Visit Ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
10: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं.
11: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
12: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं. जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
13: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
12: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
14: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय करूं.
15: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
1: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
15: वेट, इतना सब और प्राइस?
1: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन. समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को. ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
16: मैं हीरो.
17: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco. Saturday from 2 p.m. onwards, experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone.
16: sponsorship booth from $3,000 to $50,000 and vendor stalls at $750. Call 214-529-3257.
17: Celebrate India's 80th Independence Day with the entire community. IANT Anand Bazaar 2026 on Saturday, the 15th of August, 2 p.m. onwards at the Comerica Center in Frisco.

मोर म्यूजिक मोर मैजिक और मोर मस्ती के साथ दोस्तों आपको फिर से एक बार वेलकम बैक करती हूँ। स्टूडियो की घड़ी में हो चुके हैं 35 मिनट्स पास्ट 7। बस कुछ मिनटों का सफर बचा है आपका और मेरा और उसके बाद टाटा बाय बाय कहने का समय आ जाएगा। दोस्तों आप सुन रहे हैं मुझे यानी कि आपकी होस्ट और आपके सुरीले सफर की साथी आपकी अपनी अपूर्वा को और ये है आपका अपना शो जिसका नाम है ये शाम मस्तानी। विद्यार आपको लेकर चलती हूँ अगले गाने की तरफ।

गाना सुनते ही कितना मजा आता है। जब इन्होंने गाना गाया होगा, रिकॉर्ड किया होगा अमित त्रिवेदी जी ने, तो उनको कितना मजा आया होगा। वेल दोस्तों, कभी आपने गौर किया है, जब कोई सिंगर्स गाते हैं ना, तो हर एक सुर में एक अलग उनका एहसास छलकता है। जब वो हंसते हुए, जी हाँ हंसते हुए गाना गाते हैं ना, तो वो हंसी उनके गाने में भी झलकती है। आई एम श्योर ये वाला जो गाना था लैला लैला, वो अमित त्रिवेदी ने एकदम मन खोल के, दिल खोल के हंसते हुए गाना होगा, एंड इसीलिए वो गाना इतना ब्यूटीफुल लगता है। अग्री करते हो या नहीं? अगर आप सिंगर हो तो डेफिनेटली अग्री करते हो मेरे साथ, क्योंकि ये वाली जो लाइन है ना, मेरे दिल के भी दिल में है तू, ये गाना गाते वक्त और स्पेशली ये लाइन गाते वक्त जो दिल की खुशी है वो उस गाने में और वो उस लाइन में झलकती है। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द पीपल हु सिंग्स वेल ये मेरे थॉट के साथ रिलेट करते होंगे। वेल, अगले अच्छे अच्छे गाने आपको सुनवाने वाली हूँ अभी लास्ट के हमारे सेगमेंट में। उसके पहले आपको बता देती हूँ दैट हाउ मच टाइम डज योर डॉक्टर spend with you. 5 minutes, 10 minutes at Passion Health Primary Care. Every appointment is scheduled for 30 minutes because truly understanding your health takes time. Because at Passion Health Primary Care, you are not just a patient, but you are family. For you, for your family, and for the health of our community, Passion Health Primary Care is there. 30 minutes is all that it takes to complete your annual physical. Anxiety care ho, ya fir fibro scan ho, for alcohol related liver concerns हो, विटामिन B12 डेफिशिएंसी टेस्टिंग हो, या फिर मोर आर ऑल अवेलेबल एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। स्केड्यूल योर अपॉइंटमेंट टुडे। आप उनको कॉल भी कर सकते हैं, द नंबर टू कॉल इज 214-666-6259 टू बुक योर अपॉइंटमेंट। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, योर हेल्थ इज आवर पैशन।

तूफान मूवी से सुने थे दोस्तों आप, ये गाना फरहान अख्तर और मृणाल ठाकुर पे पिक्चराइज थी ये मूवी। दोस्तों आपको बता देती हूँ दैट डायमंड्स आर नॉट जस्ट फॉर एवर, दे आर इवन मोर इररेजिस्टिबल ड्यूरिंग द तनिष्क फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स। एंजॉय अप टू 25% ऑफ ऑन डायमंड वैल्यू एंड मेकिंग चार्जेस प्लस 0% डिडक्शन ऑन द एक्सचेंज ऑफ गोल्ड ओल्ड गोल्ड अबाउ 18 कैरेट। सेलिब्रेट द सीजन विद टाइमलेस स्पार्कल एट तनिष्क। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। यू कैन विजिट देयर स्टोर विच इज इन फ्रिस्को।

ऑलराइट दोस्तों, इसी के साथ स्टूडियो की घड़ी में हो चुके हैं 55 मिनट्स पास्ट 7। यही कहूंगी वक्त हो गया है मेरे जाने का। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आज की शाम साथ निभाने का। दोस्तों आपके साथ से ये सफर बहुत ही खूबसूरत, सुरीला और सुहाना होता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और ये फन एशिया रेडियो का स्टूडियो मेरी हैप्पी प्लेस है। यहाँ पर आकर मैं जितनी हैप्पी हैप्पी होती हूँ, उतना ही हैप्पी हैप्पी आपको बनाने की मेरी इच्छा आकांक्षा और मनोकामना रहती है। With that, दोस्तों, live fully, love passionately and laugh loudly. लेती हूँ आप सबसे विदा इसी thought के साथ और करती हूँ next Sunday, same time, same show, same channel on 104.9 FM पर मिलने का वादा. This is your host RJ Apurva signing off for tonight. Have a great night ahead, Dallas, and have a beautiful Monday morning and the rest of the week ahead. Bye bye and good night.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels, India's finest, Dallas's newest.
3: Call 857-891-8942 today.
4: Experience peace, music and meditation with Archana Didi at a free 3-day retreat in DFW. Join us on August 7th at Bhartiya Nivas in Richardson, August 8th and 9th morning at Sri Raghunath Temple in Plano, and August 8th evening at DFW Hindu Temple, Ekta Mandir in Irvine. Enjoy meditation, soulful music and free vegetarian prasad.
3: Proudly supported by Roma Pithadia, Sri Vimal, Shankar Vilas, Payal Dance Class, Rajula's Kitchen, Fun Pizza Kitchen, Raghunath Temple, DFW Temple and Fun Asia.
4: Register free now at meditation.funasia.net.
5: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में.
6: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून.
5: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन. द फ्लेवर लाउंज.
6: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद. विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स. द फ्लेवर लाउंज, हर बाय सुपरहिट.
7: डैलस, आर यू रेडी? जागो टाइम्स ग्रुप पब्लिकेशंस अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू. लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खान साहब, जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई. डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com. फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खान साहब 6825516500. द जागो टाइम्स कमीशन, जागो भी जगाओ भी. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया.
8: यार मेरे फोन में हम दोनों के कितने सेल्फीज है यार.
9: तो चल उन सेल्फीज से पिज्जास खाते हैं.
8: व्हाट?
10: दिस फ्रेंडशिप डे ब्रिंग योर फ्रेंडशिप टू फन पिज्जा किचन. पोस्ट अ सेल्फी विद योर फ्रेंड्स ऑन इंस्टाग्राम, टैग फन पिज्जा किचन एंड एंजॉय 10% ऑफ योर बिल और अ फ्री गार्लिक ब्रेड. ऑफर वैलिड टिल August 3rd. विजिट funpizzakitchen.com फॉर मोर डिटेल्स.
11: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है.
12: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त. जब गाने हो जबरदस्त. ओनली ऑन फन एशिया रेडियो.

so many amazing conversations यार with everybody. Thank you so much for doing this यार. लोग मुझे अक्सर फोन करते हैं for a song recommendation, for giving a shout out to, you know, just talk about the song that they love. But when somebody listens to some of these songs, like for example this one, डूबा डूबा रहता हूँ, मुझे दो लोग ने सिर्फ इसीलिए फोन करने के लिए बात की कि यार इतना मजा आ रहा है, और बस वो कॉलेज डेज के बाद की बातें चालू कर दी, यू नो, विद समबडी अननोन एंड दे जस्ट कनेक्ट. दैट्स द पावर ऑफ म्यूजिक एंड दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव हियर. थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, कीप हिम कमिंग. 972-235-5555 इज द स्टूडियो का नंबर. इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे DMs आर ऑल्सो ओपन. आई हैव ऑलरेडी रिसीव्ड 2 रिक्वेस्ट, बट हमारे पास पूरा एक घंटा है यार सिर्फ पॉप सॉन्ग बजाने के लिए. सो लेट अस नो. प्रेम जोशी पॉडकास्ट पे फॉलो कीजिए, और यू कैन ऑल्सो सेंड अस अ DM देयर, द नेम ऑफ द सॉन्ग एंड द आर्टिस्ट सॉन्ग. अभी आई जस्ट स्पोक टू राहुल एंड प्रिया, हु ऑलवेज रेकमेंड मी सम अमेजिंग नंबर्स, और आज प्रिया ने मुझे रेकमेंड किया है मेरी प्यारी बिंदु, मेरी भोले रे बिंदु. नॉट दैट ओल्ड सॉन्ग, ऑफकोर्स दैट ओल्ड सॉन्ग इज आइकॉनिक, बट दैट रीमिक्स वर्जन जो कुणाल गांजा वाला ने गाया था. Can you imagine that song was released in 2005? Because that was an animated song. और अगर आप लोग ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज यार घर जाके वो वीडियो देखना जरा. प्रेम ने बोला है वो वीडियो देखना. It was so iconic. Channel V और MTV पे बार बार बजता था. So have a listen, ladies and gentlemen. It's one of that amazing songs, you know, that you feel like you haven't heard for a while. I especially haven't heard for a while. Bindu by Kunal Ganjawala.

0: इसपे इतने सारे फनी कॉमेंट्स है, लाइक द एल्गोरिदम डिडंट टेल मी टू व्यू दिस सॉन्ग, आई एक्चुअली सर्च फॉर दिस सॉन्ग, यू नो, बिकॉज देर वर सो मेनी आइकॉनिक सॉन्ग्स बैक इन द डे, एस्पेशली द अर्ली 2000s, यू नो दैट ईयर फ्रॉम 2000 टू 2005, जो रीमिक्स का वो जो जमाना था, जो लोगों ने वो ओल्ड इज गोल्ड वाले गाने उठाए और रीमिक्स किए, ओह माय गॉड, दैट वाज जस्ट अमेजिंग. लेडीज एंड जेंटलमैन, कीप हिम कमिंग. 972-235-5555 इज द स्टूडियो का नंबर. प्रेम जोशी पॉडकास्ट पे जाइए. अमेजिंग कॉन्वर्सेशन वी हैव जस्ट अपलोडेड टुडे, वेयर आवर वेरी ओन रिनाउंड डेंटिस्ट फ्रॉम फ्रिस्को केम इन एंड टॉक्ड अबाउट एवरीथिंग अबाउट डेंटल हेल्थ एंड ओरल हेल्थ. डू यू नो दैट योर ओरल हेल्थ इज डायरेक्टली इम्पैक्टिंग your heart and cardiovascular health? Yes, दांत का खर्चा आपको ज्यादा लगेगा, but it is really, really important to take care of your teeth, take care of your oral health. We talked about everything, you know, bleeding gums, ये वो, braces. हमने तो छोटी छोटी बातें भी डिस्कस की यार, कि कौन सा टूथपेस्ट यूज करना चाहिए, कौन सा ब्रश यूज करना चाहिए, फ्लॉसिंग क्यों जरूरी है, टंग क्लीनिंग क्यों जरूरी है. वी टॉक्ड अबाउट एवरीथिंग, सो प्लीज मेक श्योर यू चेक आउट दैट कॉन्वर्सेशन. इट वॉज फैंटास्टिक एंड आई ओपनर. लेडीज एंड जेंटलमैन, PREMJOSHI पॉडकास्ट, प्रेम जोशी पॉडकास्ट पे जाइए, यू हैव सम अमेजिंग अमेजिंग इनसाइट्स. ऑलराइट, नेक्स्ट गाना हमें राहुल ने रेकमेंड किया है, नशा ही नशा बाय सुखविंदर सिंह.
1: के लिए

ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, नेक्स्ट गाना हमें सी फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे जब मिलेनियल्स हमें कॉल करते हैं, हमारे जो 90s एंड 80s किड्स हमें कॉल करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, पर हमारे इस जनरेशन के किड्स जब हमें कॉल करते हैं, स्पेशली जब पेरेंट्स गाड़ी चला रहे हैं, हे गाना रिकमेंड कर यार, यू वांट टू सजेस्ट अ सॉन्ग, एंड द किड्स पिक अप द फोन एंड टॉक टू मी एंड रिकमेंड अ सॉन्ग, आई लव इट लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज कीप हिम कमिंग, हमको बहुत पसंद है आपके किड्स के साथ बात करने में, उनकी सॉन्ग्स रिकमेंडेशंस लेने में, वी लव इट, कीप हिम कमिंग। सो ये गाना हमें रेकमेंड किया है वन ऑफ आर यंग जनरेशन बॉय, एंड ही हैज रेकमेंडेड, हे प्रेम प्लीज प्ले शेकी शेकी, सो हियर वी गो।

0: We'll continue on the next.
1: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
2: कौन सा?
1: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
2: अरे सारे तो सेम है।
1: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
2: ओ हाँ, ये तो अलग है।
3: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
4: इस रक्षाबंधन चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरेंट के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी, एंड ए लाइफटाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरेंट। अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837-7147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फाइनेंशियल रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस।
3: चौक टॉक कैसीनो एंड रिसॉर्ट डुरांट, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर। मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली।
5: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
6: ये तारा वो तारा हर तारा।
3: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
4: In today's busy world, when was the last time you truly paused and listened to yourself? Rediscover peace at the Osho Meditation Retreat from July 31st to August 2nd at Osho Kevalya Dham in Denison, Texas. Experience dynamic and silent meditation, joyful music, celebration, and deep inner transformation with Swami Prem Maitreya. Whether you are new to meditation or have practiced for years, you are welcome. Limited seats are available. Register today by calling 214-395-6757 or visit oshouniversal.org.

Welcome back, ladies and gentlemen. This is the Sunday Pop Station with RJ Prem. So many amazing conversations, so many amazing recommendations. Ladies and gentlemen, keep him coming. Yeah, studio ka number hai 972-235-5555. Aur thoda sa simple kar du, aasan kar du aap sabhi ke liye. Instagram pe hume follow kar dijiye. It's just called Prem Joshi Podcast. Green color ka logo hai, ekdam se dik jayega. PremJoshi Podcast. और आप उस पर हमें डीएम कर सकते हैं, आपके गाने का नाम और आर्टिस्ट का नाम डाल दीजिए एंड विल गिव यू अ शाउट आउट. आई जस्ट हैड अ सच एन अमेजिंग कॉन्वर्सेशन विद क्रिशा हु इज जस्ट 10 years old एंड शी हैज रेकमेंडेड मी अ सॉन्ग. बाय द वे हमारा सेगमेंट चल रहा है अभी जहां पे हम पॉप गाने बजाते हैं, बट यू नो वॉट, फॉर आर न्यू जनरेशन, फॉर आर किड्स, वी ब्रेक द रूल्स, राइट लेडीज एंड जेंटलमैन. सो शी हैज रेकमेंडेड मी वॉट झुमका. And we will play that song right now. I hope you enjoy this one as much as I will.

ऑल राइट, वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। बैक टू बैक रिक्वेस्ट आ चुके हैं। इंदु ने हमें रेकमेंड किया है ओ मेरी मुन्नी मन्ने मन्ने नन्ने। अगर आप लोग ने ये गाना नहीं सुना है तो ओ माय गॉड, यू मस्ट बी लिविंग अंडर द रॉक, बिकॉज दिस सॉन्ग वाज सच अ वायरल सॉन्ग बिफोर द वर्ड वायरल, राइट? एंड चैनल वी, एमटीवी, बिफोर यू म्यूजिक पे तो बचता ही था, पर ये एफएम रेडियो पे भी इतना बचता था। ओ माय गॉड, थैंक यू इंदु फॉर रेकमेंडिंग दिस सॉन्ग, बिकॉज इट रिवाइव्स सो मेनी अमेजिंग मेमोरीज।

right, welcome back, ladies and gentlemen. Attention, Texas business owners. Looking for a smarter commercial energy solution? Trust Tara Commercial Energy, proudly serving Texas business since 2002 with competitive rates, reliable services, and customized energy plans. Call 844-428-2808 or visit taraenergy.com. Today, अभी हमारी बात हुई मिस सोनाली पुरी से एंड उन्होंने गाना गाया. सो या वी आर लिसनर्स हैव सो मच टैलेंट यार. सो शी इज ऑल्सो सिंगर एंड उन्होंने गाना गाया विथ मिस्टर अमित केटवा कटे वाले ऐसा कुछ सरनेम है. आई

से एंड उन्होंने गाना गाया. सो या वी आर लिसनर्स हैव सो मच टैलेंट यार. सो शी इज ऑल्सो सिंगर एंड उन्होंने गाना गाया विथ मिस्टर अमित केटवा कटे वाले ऐसा कुछ से सरने में. आई होप आई एम नॉट बुचरिंग इट. तो यस उन्होंने गाना गाया है ये तू मेरे दिल का राज है. आई होप यू एंजॉय एज मच एज आई विल. हियर वी गो.

All right, ladies and gentlemen, we have 3-4 requests before we end our segment. 15 मिनट में जितने हो सके हम गाने बजाएंगे. थैंक यू सो मच एवरीबॉडी. लोगों ने बहुत सारे कॉल्स किए हमारे स्टूडियो लाइन पर, बहुत सारे मैसेजेस आए हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर. मेक श्योर यू फॉलो अस देयर ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड यूट्यूब. इट्स जस्ट कॉल्ड प्रेम जोशी पॉडकास्ट एंड वी टॉक टू सम अमेजिंग पर्सनैलिटीज एंड वी टॉक अबाउट ऑल द थिंग्स दैट आर यू नो क्लोज टू आवर हार्ट. When we live here in America, we're trying to build our life, we're trying to make sure whatever our family needs, we provide, and we try to help through all these amazing conversations and learn from their experiences. Ladies and gentlemen, next gana, one of my personal favorites, Bijuria by Sonu Nigam. Here's your song, Prashant. Thank you so much.

I cannot tell you the amazing entertainment that Sonu Nigam gives in his concert. Oh my God. This can only be described when you're actually in his one of his concerts. Like the last time I went to Sonu Nigam's concert was of course back in Bombay. BKC mein unhone ek concert kiya tha. एंड इट्स बीन ओ गॉश इट्स बीन ऑलमोस्ट 14 ईयर्स. और जब ये गाना उन्होंने सॉन्ग ये जस्ट म्यूजिक जस्ट चालू हुआ पब्लिक पागल हो गई. यू नो दैट्स द पावर ऑफ दिस सॉन्ग. इट्स बीन ऑलमोस्ट 25 ईयर्स सिंस दिस सॉन्ग वॉज लॉन्च एंड स्टिल फील सो फ्रेश. एंड सब लोग झूम उठे यार. कोई भी चेयर पर बैठा नहीं था. एवरीबडी वॉज स्टैंडिंग एंड जस्ट इंजॉइंग दिस सॉन्ग. सो इफ एवर यू गेट अ चांस टू विजिट और जस्ट एक्सपीरियंस सोनू निगम्स कॉन्सर्ट, आई हाईली रिकमेंड यू डू इट यार. लेडीज एंड जेंटलमैन कीप हिम कमिंग. दो तीन गाने और ले सकते हैं हम बिफोर वी कॉल इट, बिफोर वी यू नो एंड आर सेगमेंट. बट ऑफकोर्स 9 बजे से लेकर 10 बजे तक हमारे ब्लॉक बस्टर सॉन्ग्स तो बजाएंगे ही. बट ऑफकोर्स पॉप सॉन्ग्स और कोई भी बचे हैं वी वुड लाइक टू प्ले. 9722355555. एक गाना मुझे सोनाली ने रिकमेंड किया है, ले जा रे, श्रेया घोषाल एंड ऑफ कोर्स सुल्तान खान की आवाज में.

0: कभी मैं तुझे कुछ नंबर्स एसएमएस कर रहा हूँ, पता लगा है किनके हैं और उन्हें 24 घंटे मॉनिटर करवा।
1: अरे शिवम, यहाँ पर वैसे ही सौ काम है, ये नंबर्स ढूंढना इतना जरूरी है? हाँ?

0: All right, the iconic song Maiya Maiya picturized on मृणालिनी शर्मा और इमरान हशमी। तो मैंने जैसे आपको सभी को बोला था सॉन्ग बजाने के पहले कि मैं एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछने वाला हूँ और जो भी मुझे फट जवाब देगा, सबसे पहले जवाब देगा, सही जवाब देगा बाय द वे, उसे मिलेगा ये $10 गिफ्ट कार्ड फ्रॉम फन पिज्जा किचन। एंड एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी लव्स इट यार, एवरीबॉडी लव्स द देसी स्टाइल पिज्जा। एंड ऑफ कोर्स फन पिज्जा किचन इज ए मास्टर in making fun pizza, desi style pizzas, right? So, the question is, what movie is this song from? Just let me know the name of this movie, okay? From, ye jo gana hai, ye kis movie ka hai? Maiya Maiya gana, alright? 972-235-5555, alright? Let me know the name of the movie and win this $10 gift card.
1: Stop.

0: Now it's the call call.
1: वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। 25 कॉल्स इन 2 मिनट्स। यार लोगों ने एकदम से, मेरे को ऐसा लग रहा है यार थोड़ा सवाल डिफिकल्ट कर देना चाहिए था। आई वॉज थिंकिंग यार 9:10 हो चुके हैं, बहुत लोग रोड पे नहीं होंगे, बहुत लोग हमें सुन नहीं रहे होंगे, बट टू माई एकदम शॉकिंग देर आर सो मेनी पीपल हु आर लिसनिंग टू अस। सो थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन। एंड ऑफकोर्स रजत ने फर्स्ट ही, तीसरा कॉल था उनका, पहले दो कॉलर से मेरी बात हुई, मुझे लगा यार लोगों को पता होगा यार ये कौन सी मूवी है। मुझे जन्नत बोला किसी ने, मुझे किसी ने जहर मूवी बोला, बोला क्या बोल रहे हो आप। एंड ऑफ कोर्स दे वर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन बिकॉज ऑल ऑफ दीज मूवीज आर पिक्चराइज्ड ऑन इमरान हाशमी, बट ऑफ कोर्स द राइट आंसर इज आवारापन, जो रजत ने मुझे सही जवाब दिया। टू ऑल द अदर कॉलर्स थैंक यू सो मच, आई ट्राई टू पिक अप एज मेनी कॉल्स एज आई कुड, बट ऑफ कोर्स I can only talk to one person at the time, so I missed some of the calls. Please naraz mat hoiye because we do this Bollywood quiz every single weekend. Okay, to hum 8 se leke 10 baje tak agar aap hamara show sunenge, aapko mauka milega Bollywood quiz khelne ka hamare saath. All right, next song, humko Yasin ne recommend kiya hai. Mohabbat hai mirchi, mohabbat hai mirchi sanam.

good times roll.

0: डैलस, आर यू रेडी? जागो टाइम्स ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू, लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com। फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500। The Jago Times Commission, Jago Bhi, Jagao Bhi. Exclusive media partner, Panacea.
1: In today's busy world, when was the last time you truly paused and listened to yourself? Rediscover peace at the Osho Meditation Retreat from July 31st to August 2nd at Osho Kevalya Dham in Denison, Texas. Experience dynamic and silent meditation, joyful music, celebration, and deep inner transformation with Swami Prem Maitreya. Whether you are new to meditation or have practiced for years, you are welcome. Limited seats are available. Register today by calling 214-395-6757 or visit oshouniversal.org.
2: Hi guys, this is Tiger Shroff. Enjoy Fun Asia Radio.
3: Asia Radio, 104.9 FM.
4: Get your body moving and your heart pumping with the hottest dance tracks on your airwaves.
5: Turn it up.
4: Brought to

0: Sparks on your airwaves.
1: Turn it up.
0: Brought to you by Club Phonasia.
2: नमस्ते बहन और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत यही।

0: Dallas, are you ready? Jabu Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500 The Jago Times Commission Jago bhi jagao bhi Exclusive Media Partner Panacea
1: Ek baar jo maine commitment kar di
2: to phir sirf Panacea hi sununga

चलते प्यार सोनिए ताई चलते प्यार ऐसा ही चलते प्यार सोनिए ताई चलते प्यार।

0: परेशानी,
1: बोल बचन का कतरा
0: खतरा,
1: बोल बचन की भाषा
0: झांसा।

0: मेरे पिताजी कहते हैं कि दारू पीने से लिवर खराब होता है, और मैं कहता हूँ कि बोल बच्चन से कुछ खराब नहीं होता।
1: नौटंकी गड़ी गड़ी ड्रामा करता है। अरे ऐसे ही बोल बच्चन करता रहेगा तो आसमान से गिरेगा, खजूर में अटकेगा।
2: या फॉलिंग फ्रॉम स्काई स्क्रेपर हैंगिंग इनटू ड्राई फ्रूट एंड नट।

0: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
1: Hi, this is Vinay Pathak and you're listening to me on Fun Asia Radio.

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: पिक्चर
1: अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
2: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं,
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
1: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco. Saturday from 2 p.m. onwards, experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone.
2: Sponsorship booth from $3,000 to $50,000 and vendor stalls at $750. Call 214-529-3257.
1: Celebrate India's 80th Independence Day with the entire community. IANT Anand Bazaar 2026 on Saturday the 15th of August, 2 p.m. onwards at the Comerica Center in Frisco.

0: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
3: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
4: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco. Saturday from 2 p.m. onwards, experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone.
2: Sponsorship booth from $3,000 to $50,000 and vendor stalls at $750. Call 214-529-3257.
4: Celebrate India's 80th Independence Day with the entire community. IANT Anand Bazaar 2026 on Saturday the 15th of August, 2 p.m. onwards at the Comerica Center in Frisco.

0: मार्शमेलो, नाम तो सुना होगा।
1: नेशन का फन स्टेशन, फनेशियर रेडियो।

0: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी
1: तो फिर सिर्फ फन एशिया ही सुनूंगा।
2: भूख लगी जोरों की भूख लगी। मुर्गे की बांग हमें कोयल की भूख लगी।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये?
1: जो
2: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
3: Official tax and finance partner, AG FinTax.
2: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
3: In association with Passion Health Primary Care.
4: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
5: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
6: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में.
7: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून.
6: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन, द फ्लेवर लाउंज.
7: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद. विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स. द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपरहिट.
8: Yeah, this is Shakti Kapoor and you guys are listening to me on the Fun Asia Radio.

0: KZMP 104.9 FM. Keep listening to Fun Asia.
1: Bop, bop, bop, bop, bop.

What is up? क्या बोल रहे सब लोग? एमवे बंटा है मालूम है ना, मचाएंगे जो नहीं नाचते उसको भी नचाएंगे। Let's do it.

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

104.9 FM, Fun Asia Radio, Fun Asia Radio, non-stop entertainment.

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: एंटरटेनमेंट से करते मैड डैलस में रेडियो का डैड फोनेशिया 104.9 FM
1: Yeah, it's coming up.

0: The Dill of Dallas. Heart to Heart, Funasia.
1: साथी जिंदगी में करते रहते हो लेकिन काम में तुमने आज तक नहीं की, आदत नहीं है तुम्हें।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फनेशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं फन एशिया पर ही आते हैं।

0: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
1: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
0: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
1: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाय सुपरहिट।
2: Hi, this is Saif Ali Khan. You are listening to Fun Asia Radio.

0: Hi, this is Ranbir Kapoor.
1: And I'm Vani Kapoor, and you're listening to Funasia Radio.
2: तुमने दुबई के चक्कर में हमसे बिया किया? हमसे कतई प्यार नहीं था, हुँ?

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: 104.9 FM Fun Asia Radio. Fun Asia Radio. Non-stop entertainment.
1: Music MG. तुझे बीच सड़क में रोक के दूंगा मौके देखने के मेरे शौके शौके इट्स ओके तेरे पीछे पड़ा हूँ लाखों लड़

0: पिक्चर
1: अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
2: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: देसी स्वैग, देसी स्वैग, बॉलीवुड टैग, फन एशिया, फन एशिया।
1: मैं बहुत अच्छा गा लेता हूँ।
2: अच्छा, सुना? सुना?
1: हाँ। वो मेरी प्रैक्टिस नहीं अभी।
2: अगली बार प्रैक्टिस करके आना और किसी और के लिए मत गाना।

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: सुनो, कल बहुत काम है. पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट भी खरीदने, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली. कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे.
2: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
1: कहाँ?
3: फूडिस्तान इन ऑबरी. फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानीपुरी, केटरिंग सर्विसेज, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी. एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट D-Vibe, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर.
0: फूडिस्तान इन ऑबरी. मेंशन फन एशिया एंड एंजॉय 10% डिस्काउंट.
4: Experience peace, music and meditation with Archana Didi at a free 3-day retreat in DFW. Join us on August 7th at Bharatiya Nivas in Richardson, August 8th and 9th morning at Sri Raghunath Temple in Plano, and August 8th evening at DFW Hindu Temple, Ekta Mandir in Irving. Enjoy meditation, soulful music and free vegetarian prasad.
0: Proudly supported by Roma Pithadia, Sri Vimal, Shankar Vilas, Payal Dance Class, Rajula's Kitchen, Fun Pizza Kitchen, Raghunath Temple, DFW Temple and Fun Asia.
4: Register free now at meditation.funasia.net.
5: Thank you so much for joining us on this lovely Monday morning as we get this week started. We're actually getting the month of August started. Sabse pehle tareef us upar wale ki jisne duniya banayi, chaand sitare banaye, zameen aasman banaye, insaan ke dil mein mohabbat ka jazba paida kiya. उसी ऊपर वाले की तारीफ है जिसने मुझको, आपको और ये सारी कायनात को इंसानियत को आगे बढ़ाने के लिए बनाया है. आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, याली मदद एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एज वी गेट स्टार्टेड विद आवर प्रोग्राम टुडे.

0: Let's round off this first hour of our program, and I'm promising you another very busy hour coming up for you. Lots of information and plenty of songs lined up at 8 o'clock.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: Hire moti, main na chahun.
8: Achha, manifest karne se pehle thoda dubara soch lo. Kyunki ab diamonds mein mil raha hai buy two, get one free offer. Tanmay Jewelers in Irving. Diamond rings, pendants, earrings aur bridal jewelry par buy two, get one free. Aur wo bhi sab kuch wholesale price par. Chahe proposal ho, wedding ho, ya bas apni sparkle upgrade karni ho. Ab shine double within budget. Luxury, brilliance, celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
9: अरे अरे अरे, डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
10: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
9: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 days week, 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
11: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer? Oh. उमर ख्वाजा।
9: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम, तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
12: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, ये बॉक्सेस उठा ले रे।
13: अरे, बॉक्सेस उठाने के लिए बाबा को नहीं, स्मार्ट लोग SFL वर्ल्डवाइड को बुलाते हैं।
12: अच्छा, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भेजने हो तो?
13: डॉक्यूमेंट्स, बॉक्सेस, पूरा घर रिलोकेशन, इवन कार ट्रांसपोर्ट
12: इंडिया तक।
13: सिर्फ इंडिया नहीं, विद इन USA और वर्ल्ड वाइड, कम्प्लीट डोर टू डोर शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज।
9: SFL वर्ल्डवाइड, घर हो, गाड़ी हो या जिंदगी का नेक्स्ट मूव, सब सेफली पहुँचता है। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
14: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस। विद ओवर 400 इयर्स ऑफ फैमिली ट्रेडिशन थ्रू हिज एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड पाम रीडिंग, पंडित ईश्वर जी कैन हेल्प यू विद एनी डिफिकल्टी इन योर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, फ्रॉम रिलेशनशिप इश्यूज टू नेगेटिव एनर्जी रिमूवल। कॉल द मोस्ट ट्रस्टेड एस्ट्रोलॉजर पंडित ईश्वर जी 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com।
15: जिंदगी एक रंगमंच है
16: और घर ढूंढना सिर्फ इंटरवल। असली क्लाइमेक्स तो तब है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और चाबी आपके हाथ में हो। पर्दा गिरने से पहले फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल, हम पक्का करते हैं कि घर सच में आपका हो, हर कदम आपके साथ।
9: कॉल 972-897-1530 firstunitedtexastitle.com।
17: Hi, this is Varun Sharma and you are listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.
0: Thank you very much. We're going to start our program with one of your requests. On this lovely Monday morning, we are getting not just the week but the month started here for you on the airwaves of the Fun Asia Network.

0: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
1: जी सुनते हो?
2: जी नहीं, एजी सुनते हैं।
3: The OG of tax planning, AG Fintax. सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions. Every Friday 9:45 AM, only on Funasia Radio.
4: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
5: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है। एक हफ्ता, दस दिन, अगले ट्यूसडे।
6: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख।
7: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट। आज बुखार, आज डॉक्टर, आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर, आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर, प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी।
5: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259।
8: इस रक्षाबंधन चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी एंड ए लाइफटाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड। अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837-7147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फनेशिया रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस।
7: चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट डुरांट, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर। मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। प्लीज प्ले रिस्पांसिबली।
9: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर।
10: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
7: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
11: इतना सब और प्राइस?
7: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
12: मैं हीरोइन हूं।
13: अरे यार, घर मिल गया।
14: घर तो देख रहा हूँ, लेकिन इट्स हार्ड टू फाइंड अ रियल्टर हु ऑफर्स ग्रेट सर्विस एंड आल्सो कैशबैक एट क्लोजिंग।
7: इसलिए कॉल करो अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट। अजय इज एन एक्सपीरियंस्ड रियल्टर। वो सिर्फ घर नहीं दिखाते, हर प्रॉपर्टी का ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं, प्रोज एंड कॉन्स समझाते हैं, बेस्ट प्राइस नेगोशिएट करते हैं, बिल्डर इंसेंटिव दिलवाते हैं और क्लोजिंग पर कैशबैक भी।
14: सीरियसली, अच्छे सर्विस भी और कैशबैक भी?
7: बिल्कुल। विजिट अजयप्रभु.com एंड सी व्हाई सो मेनी पीपल आर रेविंग अबाउट हिम।
15: Love!

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे?
2: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
1: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
2: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
1: सच में सब संभालेंगे?
2: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
0: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.

0: It is 9 o'clock.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
4: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
5: Restaurant choose karna ho? Google reviews. Hotel book karna ho? Google reviews. Lekin bachcho ke doctor ki jab baat aaye to ek hi review sabse important hota hai. Maa ka review.
6: Isliye Dr. Farhad has been recognized as a DFW Child Mom Approved Pediatrician for 4 consecutive years, 2023 through 2026. Meet Dr. Nishat Farhad at Passion Health Pediatrics, serving families at Frisco and Aubrey, starting at the end of August. Passion Health Primary Care, because every healthy smile begins with trusted care. Call 214-666-6259 and schedule your appointments today.
7: Shaadi byah ka koi mauka ho ya koi tyohar, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
8: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
9: आर यू लुकिंग फॉर अ स्मार्टर अप्रोच टू रिड्यूसिंग टैक्सेस व्हाइल बिल्डिंग एंड प्रिजर्विंग वेल्थ? माय टाइम इक्विटी, अ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म लेड बाय CPA सुधीर पाई, ऑफर्स एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late stage pre-IPO opportunities and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
10: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
11: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया। ट्रैफिक अलग और ऊपर से स्ट्रेस।
12: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
11: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
12: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
11: ये क्या होता
12: है? सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
13: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस, सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
14: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन अवेलेबल।
15: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है, चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग। फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस। फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव।
16: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को। विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 4693331099.
17: Mention Fun Asia and get 50% off on tryout session.
18: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco. Saturday from 2 p.m. onwards, experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone.
19: For sponsorship booth from $3,000 to $50,000 and vendor stalls at $750, call 214-529-3257.
18: Celebrate India's 80th Independence Day with the entire community. IANT Anand Bazaar 2026 on Saturday, the 15th of August, 2 p.m. onwards at the Comerica Center in Frisco.
0: I am Humaira Jamani from Sanada Inc. I'm here to talk about the bundle insurance. Many insurance companies offer discounts when customer bundle policies. If you get auto and home policy, they give you several discounts on that. Business and commercial auto policies also give you several discounts. Beyond savings, bundling often simplifies policy management and claim services. Contact me or my team at 972-863-7772. 972-863-7772. We will review the policies and we will provide you all the available options or the discounts that you can get on bundling up your policies. Thank you.

0: coughing or sneezing at home, your air ducts may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duct Time.
1: If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 और ईमेल एट इन्फो एट सीमा मेहता लॉ फर्म डॉट कॉम।
2: डूड, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
3: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
2: कैसे?
3: पेज 3 ईटरी?
2: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
3: डूड, इट्स पेज 3। स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्ट एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट।
2: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं।
4: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट।
5: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
6: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
5: नहीं।
6: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
5: नहीं।
6: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
5: वो भी नहीं।
6: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
1: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
7: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
8: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
9: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
10: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
11: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
10: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
12: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
10: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
12: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
10: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट।
13: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
14: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
13: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
14: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
13: सच में? सब संभालेंगे?
14: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
1: कॉल हरि बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.

स्वर्ग सी धरती खिल रही जैसे, मेरा मन भी तो खिल रहा वैसे। कोयल की तरह गाने की अरमा, बिजली की तरह मचलूं ये आसमान।

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
2: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
0: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य। एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर ओपन 7 days a week, 8 AM to 8 PM. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
3: Hocho.
4: Hoko.
3: Hocho.
4: Hoko.
3: Hocho.
4: It's Hoko. अरे बस भी करो यार।
5: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है।
4: नाम Hoko हो या Hocho क्या फर्क पड़ता है? एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूरी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करीज, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना, फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा।
0: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक Hoko अब फ्रिस्को में। वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिड केटरिंग ऑप्शंस। टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज।
6: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, ये बॉक्सेस उठा ले रे।
7: अरे बॉक्सेस उठाने के लिए बाबा को नहीं, स्मार्ट लोग SFL वर्ल्डवाइड को बुलाते हैं।
6: अच्छा, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भेजने हो तो?
7: डॉक्यूमेंट्स, बॉक्सेस, पूरा घर रिलोकेशन, इवन कार ट्रांसपोर्ट
6: इंडिया तक।
7: सिर्फ इंडिया नहीं, विद इन USA और वर्ल्डवाइड, कंप्लीट डोर टू डोर शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज।
0: SFL वर्ल्डवाइड, घर हो, गाड़ी हो या जिंदगी का नेक्स्ट मूव, सब सेफली पहुंचता है। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
8: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from 3 convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
9: 104.9 FM Phonesia Radio
10: 104.9 FM Phonesia और आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को गपशप गली में। गुड मॉर्निंग आप सबको, आज सावन का पहला सोमवार, उसकी बधाई और साथ में मंडे ब्लूज से निकलने के लिए तैयार हो जाइए, बिकॉज मैं कुछ अच्छे अच्छे गाने और ढेरों बातें लेकर के आ रही हूँ गपशप गली में। ये गली है मीठू की, पर इस गली में मैंने अपनी जगह बना ली है, तो इस पूरे हफ्ते आपको एंटरटेन करूंगी यहाँ पर। बने रहिए मेरे साथ और सुनते रहिए फनीशिया, आज का पहला गाना आप सबके लिए।

अमित त्रिवेदी की आवाज़ और अमिताभ भट्टाचार्य का के बोल हैं इस गाने में, केदारनाथ फिल्म का ये गाना। और ये गाना ना वन ऑफ माय फेवरेट्स है जब आती है शिव भक्ति की बात। और आज हम एक ऐसे महीने की बात कर रहे हैं जो कि सिर्फ बारिश का नहीं, जिसे हम मॉनसून कहते हैं, बारिश का ही महीना नहीं है, ये एक ऐसा हिंदुस्तान में, भारत में ये एक ऐसा महीना है जो कि भक्ति का, आस्था का और प्रकृति की खूबसूरती को भी लेकर के आता है। सावन का महीना, सावन मास, श्रावण मास, पूरे भारत में इस समय एक भक्ति का, एक श्रद्धा का माहौल होता है। और उसके साथ साथ जो बारिश होती है और उसके कारण जो आसपास का वातावरण है वो भी बहुत ही सुंदर हो जाता है, एकदम चारों तरफ ग्रीनरी हो जाती है। तो बारिश का मौसम एनीवेज मेरा फेवरेट है। और जब सावन का महीना चल रहा होता है तो चारों तरफ शिव भक्ति में सब लोग विलीन रहते हैं, स्पेशली हमारे तरफ नॉर्थ में, इनफैक्ट साउथ में भी होती है पूजा, और नॉर्दर्न पार्ट, ईस्टर्न पार्ट में भी। ऊपर से अगर श्रावण मास का सोमवार है, विच इज़ मंडे, दैट इज़ द मोस्ट ऑस्पिशियस। और आज हम इसी पे बातें करेंगे, आपको थोड़ी बहुत हम इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे और आपसे भी पूछेंगे कि किस तरह से आप श्रावण का महीना मनाते हैं। तो चलिए अगले गाने की तरफ लेके चलती हूँ, लेकिन उसके पहले आपको एक जानकारी दे दूँ कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा स्पार्कल ऐड करना चाहते हैं, अपने स्पेशल मोमेंट्स को और स्पेशल बनाना चाहते हैं, तो जल्दी से जाइए मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की तरफ, जो कि प्रेस्टन रोड पे है फ्रिस्को में। येस, योर डेस्टिनेशन फॉर स्टनिंग डायमंड ज्वेलरी दैट्स एलिगेंट, टाइमलेस एंड क्राफ्टेड टू शाइन, फ्रॉम ब्यूटिफुल रिंग्स एंड ईयर रिंग्स टू डार्जलिंग नेकलेसेज एंड कंटेम्प्रेरी डायमंड स्टाइल्स। Find the perfect piece of engagement, anniversary, celebration or simply treating yourself. भाई जाइए और अपने घर में तोहफे दीजिए। Experienced unmatched craftsmanship and brilliance at Malabar Gold and Diamond in Frisco. And don't forget, download the Malabar Gold and Diamond mobile app for the latest collection updates and more details. चलिए, सावन का महीना और ये गाना ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। सुनाते हैं आपको बहुत ही प्यारा गाना। गाना है पुराना, लेकिन ये गाना आज भी हम सबके दिलों के करीब है।

0: पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर।

0: मिलन फिल्म का ये गाना है पुराना पर है हम सबके दिल के करीब, और ये गाना आपके लिए लेकर के आई थी मैं अभी। और आज ऐसा करते हैं, क्यों ना कुछ बारिश और सावन से जुड़े गाने प्ले करते हैं और देखते हैं कि आप भी कौन से अच्छे अच्छे गाने ना मुझे बता पाते हो। सावन और बारिश दो शब्द उसमें होने चाहिए, या मतलब आई मीन आइदर ऑफ द टू वर्ड्स, उसको ढूंढिए, फ़ोन करिए और मज़े लीजिए कुछ अच्छे अच्छे गानों के मेरे साथ था। क्योंकि सावन का महीना ऐसे थोड़ी सेलिब्रेट करेंगे, पहला सावन का सोमवार है और लोग बहुत सारे लोग फास्ट भी कर रहे हैं, तो अच्छे अच्छे गाने सुन करके अपने फास्ट को चाय की चुस्कियों के साथ एंजॉय करिए। हो सकता है डालिस में भी थोड़ी बारिश आ जाए और मौसम को राहत मिल जाए, ये जो गर्मी पड़ रही है ना, इससे अच्छा तो एक ज़ोरदार बारिश हो जाए यहाँ पर। उसके लिए ही कुछ अच्छे अच्छे गाने रिक्वेस्ट कर दीजिए। स्टूडियो का नंबर है 9722355555। आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को और वक्त हो रहा है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आएंगे और आपको सुनाएंगे 90s का ये प्यारा सा गाना। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए फनीशिया।
1: ये तारा वो तारा हर तारा।
2: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे। Are you trying to protect your business, retain top talent, and plan for future succession all at the same time? An executive retention strategy using life insurance may help address multiple business goals, including key person protection, employee retention incentives, and future buyout planning. To explore business life insurance strategies, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms, and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Business planning strategies should be reviewed with qualified legal and tax professionals. Not legal, tax, or investment advice.
3: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर।
4: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
2: अब करेगा, because Indian Attire Frisco summer sale is on. Stunning lehengas, elegant saris, bridal jewelry, men's and kids wear.
5: Wait, itna sab aur price?
2: Up to 25% off on lehengas and bridal collection. Summer sale through the end of August. Only at Indian Attire Frisco. Traditional ho ya fusion, ab har outfit bolega. Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
6: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास। 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में।
2: That magic removal हो, love and relationship issues हो, get trusted solutions with 100% privacy.
6: Thousands की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। Now it's your turn. समस्या का पक्का समाधान, एस्ट्रोलॉजर ईश्वर। Call now 9455270897 और विजिट astrologereeshwar.com.
7: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
8: कुछ भी नहीं, Ura Debt Relief will do it for us.
7: क्या मतलब?
8: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
7: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
8: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
7: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
9: Don't let debt ruin your life. Visit Ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
10: यार, मेरे फोन में हम दोनों के कितने सेल्फीज है यार।
2: तो चल उन सेल्फी से पिज़्ज़ास खाते हैं।
10: What?
11: This friendship day, bring your friendship to Fun Pizza Kitchen. Post a selfie with your friends on Instagram, tag Fun Pizza Kitchen and enjoy 10% off your bill or a free garlic bread. Offer valid till August 3rd. Visit funpizzakitchen.com for more details.
12: Hi Dallas, this is Ranbir Kapoor and you're listening to Fun Asia Radio.
0: वेलकम बैक आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक और आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को फन एशिया 104.9 FM पर। और आज हम थोड़ा सा सावन का सोमवार मना रहे हैं, सावन वाला मंडे जो कि थोड़ा स्पेशल होता है हमारे हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से। और साथ ही हम कुछ रिमझिम बारिश वाले गाने और सावन वाले गाने सुनने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि यू नो डैलस में भी थोड़ी बारिश हो जाए, मौसम थोड़ा अच्छा हो जाए यार। मतलब इंडिया में तो मैं जहाँ फ़ोन कर रही हूँ सब जगह बारिश हो रही है, बारिश के साथ गर्मी भी होती है वहाँ पर, लेकिन बारिश जब हो रही होती है ना उस समय गर्मा गर्म चाय और पकौड़ों के साथ बारिश का आनंद लेने का मज़ा ही कुछ और है दोस्तों, है कि नहीं? बताइए मुझे फ़ोन करके, स्टूडियो का नंबर आपको पता ही है, 9722355555 है स्टूडियो का नंबर। चलिए अगले गाने की तरफ आपको लेकर के चलते हैं। उसका ट्रेलर मैंने आपको ब्रेक के पहले दे दिया था, बहुत ही प्यारा सा गाना है 90s का। और आज हमारे स्टूडियो से हम आपके साथ मना रहे हैं सावन का महीना कुछ प्यारे प्यारे गानों के साथ।

फिल्म दहक का ये बहुत ही प्यारा सा गाना, वन ऑफ माय फेवरेट्स भैया, सोनाली बेंद्रे और अक्षय खन्ना हैं इस मूवी में, और 1999 की फिल्म है। 90s के गानों की बात ही कुछ और है, हमेशा कहते हैं हम ये, इन गानों से ना सुन के कहीं और ही चल जाते हैं, किसी और ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। और आज हम सावन और बारिश वाले गाने सुन रहे हैं और आपको सुना रहे हैं, क्योंकि सावन का महीना है और उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये महीना सिर्फ भक्ति का नहीं है, मतलब भक्ति का है, शिव भक्तों के लिए बहुत ऑस्पिशियस मंथ है, और उसमें से मंडे उसमें भी सबसे ऑस्पिशियस है। भारत के हर प्रदेश में ना अलग अलग तरीक़ों से मनाया जाता है। नादन पाठ की बात करें तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, इन सारे रीजन्स में मंडे का बहुत इम्पोर्टेंस होता है, जो कि आज है। आज के दिन मंदिरों में, टेम्पल्स में बहुत लंबी लंबी लाइन लगी रहती है, और इनफैक्ट हमारे डैलस के भी आसपास के जितने मंदिर हैं उसमें भी लंबी लंबी लाइनें लगी रहती हैं, सिर्फ और सिर्फ शिवलिंग पे जल अर्पित करने के लिए। तो बहुत ही ऑस्पिशियस दिन है। प्लस भारत में इस टाइम पे मंडेज को स्पेशली द फर्स्ट मंडे कांवर यात्रा निकलती है, लोग मीलों पैदल चलते हैं कंधे पर गंगा जल लेकर के शिवलिंग पे अर्पण करने के लिए। दिस इज़ अ डिफरेंट लेवल ऑफ भक्ति जो है वो भगवान शिव के लिए है, और गंगा जल चढ़ाने के लिए, मतलब मुझे पता है मैं बिहार से हूँ तो लोग बाबा धाम जाते हैं, पैदल चलते हैं, और वो कांवर पे इस कांवर पे पानी लेकर के, कांवर इज़ लाइक वन बिग रॉड जिसके दोनों साइड पे बकेट्स लटके होते हैं, उसमें गंगा जल होता है, उसको कंधे पर लेके जाना, और जा कर के कई कई किलोमीटर्स लोग पैदल चलते हैं, और उसके बाद जाके वहाँ शिवलिंग पे पूजा करते हैं, जल डालते हैं। बहुत भीड़ होती है भूखे प्यासे गर्मी में, भले ही बारिश का मौसम हो लेकिन इस समय ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, बट यू नो भक्ति में शक्ति होती है भाई, इसलिए लोग बड़ी भक्ति के साथ इसको निभाते हैं। और औरतों के लिए बड़ा ऑस्पिशियस महीना है सावन का सोमवार, जिसने जिसने 16 सोमवार किए हैं उनको पता होगा, तो उनके लिए भी बहुत ऑस्पिशियस महीना होता है। लोग हरे हरे कपड़े पहनते हैं, हरी चूड़ियाँ पहनते हैं, आज मैं भी हरी चूड़ियाँ पहन के आई हूँ, थी मेरे पास तो मैंने पहन ली। और हरियाली तीज मनाई जाती है, कजरी तीज होती है, मेहंदी लगाई जाती है, झूले पड़ते हैं और लोग गीत गाए जाते हैं, तो ऐसा बहुत कुछ होता है सावन के महीने में। इसी बात पे, प्रीति की फरमाइश पे, ये अगला गाना आप सब के लिए कहाँ गया गाना लगा के रखा है मैंने, पर कुछ तो, हाँ बस ये रहा आपके लिए अगला गाना।

मंजिल फिल्म का ये गाना 1979 की फिल्म है, अमिताभ बच्चन और मौसमी चटर्जी हैं इस फिल्म में। तो चलिए अपने शो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उसके साथ आपको एक जानकारी दे दें। इफ़ यू आर इन्वॉल्व इन एनी कार और ट्रक एक्सीडेंट और स्लिप एंड फॉल, अटॉर्नी उमर ख्वाजा विल फाइट योर केस एंड हेल्प यू गेट द कंपनसेशन दैट यू डिजर्व। डीलिंग विद इंश्योरेंस कंपनीज कैन बी स्ट्रेसफुल and you need an attorney that will make sure you are compensated. You don't pay until you win. For free consultation, you can call them. Their number is 469-300-5046 or you can visit attorneyomar.com. चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं और मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं बहुत सारे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, ताकि मतलब यू नो मुझे भी हेल्प मिल रही है भाई। आप लोग मुझे सावन और बारिश के गाने याद दिला रहे हो, तो ऐसे ही कॉल करते रहिए स्टूडियो के नंबर पे। एक बार फिर से याद दिला रही हूँ, स्टूडियो का नंबर है 9722355555 और आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को गपशप गली में। ये गली मीठू की है, पर इसमें मैंने अपनी जगह बना ली है और इस पूरे हफ्ते आपके साथ तो हूँ, आपको एंटरटेन करते रहूँगी कुछ बहुत ही प्यारे और खूबसूरत गानों के साथ और मेरी बक बक और कपशप के साथ। अगला गाना जल्दी से प्ले कर देती हूँ।

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: Ritesh, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
4: अरे relax, सब तुम्हारा ही तो है।
3: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
4: Wait, what?
2: Yes, अगर proper estate plan नहीं है तो आपकी फैमिली के decisions कोर्ट लेता है।
5: Hi, this is Deepti Verma with NRI Wealth. मैं families को help करती हूँ उनकी मेहनत को protect करने में, the right way with estate planning.
2: अगर आपके पास सिर्फ will है या कुछ भी नहीं है तो ये call delay मत कीजिए। Call 669-243-5799. That's 669-243-5799 for a free 15-minute consultation.
6: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
7: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
8: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस, चॉप टावर कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चॉप टावर कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली, मस्ट बी 21 इयर्स और ओल्डर टू गेम।
9: यार मेरे फोन में हम दोनों के कितने सेल्फीज है यार।
2: तो चल उन सेल्फीज से पिज्जास खाते हैं।
9: व्हाट?
10: दिस फ्रेंडशिप डे ब्रिंग योर फ्रेंडशिप टू फन पिज्जा किचन। पोस्ट अ सेल्फी विद योर फ्रेंड्स ऑन इंस्टाग्राम, टैग फन पिज्जा किचन एंड एंजॉय 10% ऑफ योर बिल और अ फ्री गार्लिक ब्रेड। ऑफर वैलिड टिल August 3rd। विजिट funpizzakitchen.com फॉर मोर डिटेल्स।
11: अजी सुनते हो?
12: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
13: The OG of tax planning, AG FinTax. सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions. Every Friday 9:45 AM, only on Funasia Radio.
14: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco. Saturday from 2 p.m. onwards, experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone.
2: Sponsorship booth from $3,000 to $50,000 and vendor stalls at $750. Call 214-529-3257.
14: Celebrate India's 80th Independence Day with the entire community. IANT Anand Bazaar 2026 on Saturday the 15th of August, 2 p.m. onwards at the Comerica Center in Frisco.
15: Zindagi ke kai rang, Funasia Radio ke sang.
16: वेलकम बैक आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। और आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को फनेशिया 104.9 एफएम पे। गपशप गली, गपशप गली है शो का नाम, और मीठू की है ये गली जिसमें मैंने अपनी जगह बना ली है इस हफ्ते के लिए, क्योंकि मीठू इस समय छुट्टियां मना रही हैं। तो चलिए अपने शो को आगे बढ़ाते हैं, अपनी बातों को आगे बढ़ाते हैं। हम बात कर रहे हैं आज सावन के महीने की और किस तरह से इस त्यौहार को देश के अलग अलग हिस्सों में मनाया जाता है, भारत देश के अलग अलग हिस्सों में बताया जा रहा है, इसके बारे में बात करी थी। तो मैंने आपको बहुत सारे नदन स्टेट्स के बारे में बताया। वैसे अभी श्रावण का महीना कुछ लोगों के लिए शुरू नहीं हुआ है। जो हमारे दोस्त महाराष्ट्र या फिर साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया से आते हैं उनके लिए श्रावण का महीना 15 दिन बाद शुरू होता है। ये अपने में एक अनोखी बात है, बट हाँ हम जो नॉर्थ वाले लोग हैं या फिर ईस्टर्न इंडिया से लोग हैं, यूपी बिहार और दिल्ली वाले लोग जो हैं, उस तरफ की जनता राजस्थान, इनके लिए ऑलरेडी पूर्णिमा के दिन से, मतलब पिछले थर्सडे से सावन शुरू हो गया है और राखी के दिन खत्म हो जाएगा, पर हमारे बाकी दोस्तों के लिए सावन का महीना 15 दिन बाद मतलब अमावस्या से शुरू होगा और अमावस्या पे खत्म होगा। ये अपने में एक अनोखी बात है। जब मैं महाराष्ट्र में पढ़ रही थी तब मुझे ये चीज पता लगी। उन्होंने बोला तुम अभी से सावन मना रही हो, सावन तो 15 दिन बाद शुरू होगा यार। मैंने बोला नहीं, हमारे यहाँ तो 15 दिन निकल भी गए हैं, मतलब 15 दिन ऑलमोस्ट मतलब खत्म हो गए। तो नहीं नहीं ऐसा नहीं है। फिर मुझे पता लगा कि अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। वैसे ही अगर हम साउथ इंडिया की बात करें, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इसमें श्रावण मास में ना पूरे परिवार के साथ धार्मिक अनुष्ठान का महीना माना जाता है। यहाँ पे शिव जी के साथ साथ भगवान विष्णु की भी पूजा की जाती है और देवी की भी विशेष पूजा होती है। कर्नाटका में वर महालक्ष्मी व्रतम बहुत श्रद्धा से मनाया जाता है इस टाइम पे। आंध्र और तेलंगाना में घरों में पूजा, दान पुण्य और सात्विक भोजन का विशेष महत्व होता है। जी हाँ, और तमिलनाडु में सोमवार का व्रत होता है, शिव मंदिरों में रुद्राभिषेक होता है। ये बहुत आम बात है। तो हमारी नॉर्दर्न स्टेट्स में भी होता है रुद्राभिषेक का। तो चलिए अगले गाने की तरफ लेकर के चलते हैं। ऐसे कुछ कुछ बीच बीच में जानकारी देते रहूँगी सावन महीने के बारे में। अगर आपके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई स्टोरी है, या फिर मैं अपने कॉलेज से बोलती हूँ जिन्होंने सावन के सोमवार किए थे, मतलब इसे कहा जाता ना मेरी दादी वादी के टाइम पे, मतलब मैंने तो नहीं किया पर मेरी दादी लोग मम्मी लोग से बोलती थी 16 सोमवार का व्रत किया है इसलिए ऐसा पति मिला है। तो आप में से कोई है जिसने 16 सोमवार का व्रत किया है अपने पति को पाने के लिए? है तो बताइए, कॉल करिए स्टूडियो के नंबर पे 972-235-5555 है स्टूडियो का नंबर। और ये अगला गाना आपके लिए।

तो ये एक और खूबसूरत था गाना आप लोगों के लिए था। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले आपको कुछ जरूरी जानकारी दे दें, क्योंकि हेल्थ से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो अगर वेन एवर यू गो फॉर अ डॉक्टर चेकअप, हाउ मच टाइम डज योर डॉक्टर स्पेंड विथ यू? 5 मिनट, 10 मिनट? लेकिन हमारे पास एक ऐसी जगह है जिसको कहते हैं पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, जहाँ पे हर अपॉइंटमेंट इज स्केड्यूल फॉर 30 मिनट्स, बिकॉज ट्रूली अंडरस्टैंडिंग योर हेल्थ टेक्स टाइम। एंड पैशन At Passion Health, you're not just a patient, you're family. For you, your family, and for the health of our community, Passion Primary Healthcare. 30 minutes is all it takes to complete your annual physical, anxiety care, fiber scan for alcohol-related liver concerns, vitamin B12 deficiency testing, and more are all available at Passion Health. So you can schedule your appointment today. The number is 214-666-6259. I repeat, it's 214-666-6259. You can call and book your appointment. Passion Health Primary Care. Your health is our passion. चलिए अपने शो को आगे बढ़ाते हैं, और मेरे कॉलर्स हमेशा मेरा साथ देते हैं, और अभी ऐसे ही हमारे एक मित्र का फ़ोन आया था। उन्होंने हमें सुन रहे थे वो ये सावन की कहानियाँ और बातें, उन्होंने एक और स्टोरी जो सावन महीने से रिलेटेड है उसके बारे में हमें बताया। पंकज जी का फ़ोन आया था मेरे पास, और उन्होंने ये बताया कि सावन मास का संबंध सिर्फ शिव जी से नहीं है, शिव जी का बहुत बड़ा रोल है उसमें, लेकिन उसके साथ साथ ये उस समय की बात है जब समुद्र मंथन हो रहा था। तो इसका जो स्टोरी का वर्णन जो है, कहते हैं भगवत पुराण और विष्णु पुराण में भी है, महाभारत में भी किया गया है। और इस कहानी के अनुसार कि जब देवता और असुर समुद्र मंथन कर रहे थे, हम सबको पता है, तो उस समय किशोर सागर जो था उसके मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी, मतलब मथने के लिए जो बड़ी सी इंस्ट्रूमेंट चाहिए थी, वो हमारा पर्वत था मंदरांचल पर्वत, और नाग वासुकी जी को रस्सी बनाया गया था और उससे मंथन किया गया था, और इससे निकला था एक बहुत ही भयंकर विष, हलाहल नाम का विष था, विच वॉज वो कोई भी उस विष से बच नहीं पा रहा था, यहाँ तक कि ब्रह्मदेव भी नहीं उस विष से बच पा रहे थे। तो सब लोग गए शिव जी के पास, एंड शिव जी हमेशा के तरह हमारे बाबा भोलेनाथ जो हैं भोले से वो आए और आगे से आकर के उन्होंने हेल्प की सबकी, और उस विष को उन्होंने अपने अंदर लेना शुरू किया और उन्होंने अपने कंठ में रोक लिया, और उस विष की गर्मी और उसके इफ़ेक्ट को कम करने के लिए सब लोगों ने गंगा जल शिव जी के ऊपर डालना शुरू किया। तो यही एक कहानी है कि ये इतना प्रचंड विष था कि पूरी सृष्टि का को समाप्त कर सकता था, एंड इसके लिए सिर्फ और सिर्फ शिव जी ही थे जिन्होंने आकर के इस विष को अपने कंठ में धारण किया, इसीलिए उनको नीलकंठ भी कहते हैं। तो ये जो मान्यता है, ये कौन मान्यता है, और इसीलिए वासुकीनाथ और बाबा बैद्यनाथ दोनों की पूजा की जाती है सावन के महीने में, और ये झारखंड में है, हमारे प्रदेश में है जहाँ से हम आते हैं, और सब जानते हैं बाबा बैद्यनाथ धाम जो कि देवघर में है और वासुकीनाथ मंदिर जो कि दुमका में है, दोनों एक साथ देखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि बाबा बैद्यनाथ की का दर्शन अधूरा है अगर आप वासुकी मंदिर नहीं गए, तो ये एक लोक परंपरा है, और लोग जब जाते हैं कांवड़ लेकर के, जैसे मैंने आपको बताया शुरू में, तो वहाँ से

उत्तर वाहिनी गंगा के जल को लेकर के कंधे पर जाते हैं और जाके शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और बम भोले बोलते हुए जाते हैं, भगवान का नाम लेते हुए जाते हैं। तो ये एक और कहानी थी बोल बम की। तो चलिए अगले गाने की तरफ लेकर के चलते हैं आपको। मेरी बातों और कहानियों का सिलसिला यहाँ चलता रहेगा। आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को फनेशिया 104.9 FM पर। स्टूडियो का नंबर है 9723555555। कॉल करिए, अपने पसंद के गाने बताइए।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels, India's finest, Dallas's newest.
4: Call 857-891-8942 today.
5: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
6: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
5: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
6: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
5: सच में सब संभालेंगे?
6: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
4: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.
7: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Ductime removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with duck time.
8: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
9: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
4: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
6: Filmon ka maza action, drama aur romance mein hai. Aur khane ka maza har flavor ke zabardast performance mein.
10: Kabhi chatpata sa twist, kabhi teekha sa kick, kabhi meetha sa sukoon.
6: Jahan har flavor kare full on entertain. The Flavor Lounge.
10: Papri चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाय सुपरहिट।
11: इफ यू और योर फैमिली मेंबर इज इन्वॉल्वड इन अ ट्रक एक्सीडेंट, हियर्स व्हाट यू मस्ट डू। फर्स्ट, इंश्योर एवरीवनस सेफ्टी। नेक्स्ट, गैदर एज मच इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल। Make sure you take great photos, talk to any witnesses that may have seen the accident, and ensure that you document all of the information for the truck driver and company. Truck accidents often lead to serious injuries, so don't deal with it alone. Call Attorney Omar at 833-GET-OMAR or visit us online at attorneyomar.com. When it comes to representing your case, our goal is simple. We want you to receive the maximum amount of money you deserve.
12: डालस की धड़कन 104.9 FM, फन एशिया रेडियो।
13: वेलकम वेलकम बैक आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक. आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को गपशप गली में फन एशिया 104.9 FM. और इस गपशप गली में आपकी होस्ट आयुषी आपके साथ है. ये गली तो है मीठू की, पर मीठू है वेकेशन पे, तो मैंने इस गली में अपनी जगह बना ली है और इस पूरे हफ्ते आपको अपनी बातों से एंटरटेन करने वाली हूँ और कुछ खूबसूरत गानों के साथ भी. तो भाई बहुत सारे गानों की फरमाइश आई हुई है जिसको मैंने लाइनअप करके रखा हुआ है, तो जल्दी से पहले गाने प्ले करा देते हैं इससे पहले कि मेरे लिसनर्स नाराज हो जाएं कि आयुषी आपने मेरा गाना नहीं बजाया. ऐसा हो नहीं सकता है. आपका हुक्म मेरे सर आंखों पर. अरे क्या हो रहा है, मेरी जबान को लड़खड़ा रही है. तो भाई आपका हुक्म सर आंखों पर. ये रहा अगला गाना जिसकी फरमाइश आई थी आज सवेरे और थोड़ा डिले हो गया इस गाने को प्ले करने में, लेकिन यस ये रहा अगला गाना आप लोगों के लिए.

Celebrate India's 80th Independence Day at IANT's Anand Bazaar 2026 on Saturday, August 15th from 2 p.m. onwards at the Co-America Center in Frisco. The best part, it's completely indoors and free for everyone. To enjoy authentic Indian food, a grand parade, cultural performances, live music, shopping. Apne parivar ko saath laiye, apne doston ko saath laiye and be a part of North Texas' biggest Indian Independence Day celebration. IANT Anand Bazaar 2026. तो मौका है भारतीय इंडिपेंडेंस डे मनाने का, जरूर जाइए 15 अगस्त को जो कि सैटरडे पड़ रहा है, तो अच्छी बात है. सेम डे जिस दिन जनरली हम लोग वीकेंड्स पे करते हैं, पर इस बार 15 अगस्त को ही हो रहा है. तो हम बहुत देर से बात कर रहे थे सावन और सावन के सोमवार पे, और बहुत सारे गाने जो है ना वो उसके कारण लाइन अप हैं, जिसमें सावन है, रिमझिम है, बूंदे हैं, बारिश है और बहुत मज़ा आ रहा है. लेकिन यार कल एक और बड़ा ही खूबसूरत सा दिन था, अगस्त का पहला संडे. और अगस्त का पहला संडे क्या होता है बताइए आप लोग. अगर आप लोग को याद है तो कॉल करके मुझे बताइए. तब तक मैं एक गाना प्ले करती हूँ, बहुत प्यारा सा गाना है, 1985 का है, ऋषि कपूर और डिम्पल कपाडिया है, किशोर कुमार की आवाज़ में गाना है. लेकिन मुझे ये ज़रूर बताइए कॉल करके स्टूडियो के नंबर पे जो कि है 9722355555, अगस्त का पहला संडे क्या हुआ करता था, जिसके लिए हम लोग बहुत तैयारियाँ किया करते थे जब छोटे थे. तो

So this part of our show is proudly brought to you by AG Fintechs, one of the fastest growing tax and accounting firms in the United States. Whether you are an individual, a startup or an established business, AG Fintechs offers innovative financial solutions tailored to your needs. From bookkeeping, payroll accounting and bank and credit card reconciliation to proactive tax planning, tax compliance, financial reporting and business advisory services, they keep your finances organized. Aur chahiye kya aapko? Matlab, they keep your finances organized, compliant and future ready. Trusted, efficient and committed to your success. AG Fintechs is your partner in building a stronger financial future. Call 469-942-9888. I repeat, that's 469-942-9888. I'll repeat that. I'm sorry. 469-942-9888 or visit agfintechs.com today. तो चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं. ब्रेक पे जाने के पहले, मतलब गाने के पहले, मैंने एक सवाल पूछा था कि अगस्त का पहला संडे क्या हुआ करता था. वो पहला संडे जिसका हम बेसब्री से इंतजार किया करते थे, क्योंकि स्कूल बंद हो जाता था, तो हम फ्राइडे या सैटरडे को ही एक दूसरे को फ्रेंडशिप बैंड्स बांधा करते थे और इंतजार करते थे कि किसको सबसे ज़्यादा फ्रेंडशिप बैंड्स बनेंगे, किसको सबसे ज़्यादा सबसे सुंदर वाला बैंड मिलेगा. और उस एक दोस्त का इंतज़ार करते थे जिसकी ना उम्मीद हम लगा के बैठते थे. भले ही हमें 10-12 फ्रेंडशिप बैंड मिल जाएं, पर वो एक दोस्त जो दिल के सबसे करीब था उसका इंतज़ार करते थे कि यार ये अपने से आएगा और मुझे आएगा या आएगी और उसने मुझे फ्रेंडशिप बैंड देगा या देगी, यू नो. तो वो स्पेशल फ्रेंड, वो बचपन की याद, वो दोस्त. फ्रेंडशिप्स डे जो कि कल था, फ्रेंडशिप डे और संडे, तो आप में से कितनों ने अपने दोस्त को फ़ोन उठाया और हैप्पी फ्रेंडशिप डे कहा. अपनी ज़िंदगी की इस भसड़ में जो हमारी चल रही है, सुबह शाम ऑफिस, घर का काम, बच्चे संभालना, इसके बीच में वक्त निकाल पाए आप? आज जब मैं ये बात बोल रही हूँ तो मैं रियलाइज़ कर रही हूँ कि मैं खुद नहीं निकाल पाई. चार दोस्तों से मिली थी जो यहाँ पर थे और उनको गले लगाया, हैप्पी फ्रेंडशिप डे कहा, पर उन दोस्तों को जो हमारे बचपन के दोस्त हैं उन सबको भूल गई और वो भी मुझे भूल गए. हम सारी अपनी ज़िंदगी में इतना उलझ गए हैं कि अपने बचपन के दोस्तों को भूल गए. ऐसा नहीं है कि मैंने उनको कॉल नहीं किया तो उनने मुझे कॉल कर लिया, उन्होंने भी नहीं किया, पर शिकायत नहीं करूँगी क्योंकि जिस तरह से मेरी ज़िंदगी में समय की कमी हो गई है, शायद हमारा ध्यान अपने बच्चों और परिवार पर आ गया है, वैसे उनकी भी ज़िंदगी में तो ऐसा ही कुछ चल रहा होगा ना. पर एक गाना उन दोस्तों के लिए.

Here was a beautiful song राहुल जैन की आवाज में. ये गाना था और ये गाना बड़े ही कुछ दिन पहले फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे वायरल हुआ था. यार इस गाने को सुन के ना कुछ कुछ हो जाता है यार, पुराने दिन याद आ जाते हैं. और दोस्त दोस्त हर उम्र के पड़ाव पे दोस्त बदल जाते हैं. हमें ऐसे लगता है बचपन में जो दोस्त बनाए थे वही दोस्त हमारे साथ टिके रहेंगे. हैं वो हमारी ज़िंदगी में ज़रूर हैं और बातें भी होती हैं जब फुर्सत मिलती है ना ज़िंदगी के उलझनों से, तो फिर उनसे बात हो पाती है. पर ज़िंदगी के हर पड़ाव पे दोस्त बदलते हैं. ये बहुत मुश्किल है. मतलब अगर आपने आज भी अपने उन पुराने दोस्तों से दोस्ती बनाई हुई है और मिल पा रहे हैं तो बड़ी काबिलियत की बात है. आप बहुत ही होशियार हैं कि आप ऐसा कर पा रहे हैं. बिकॉज़ कहीं ना कहीं साथ छूट जाता है, लोग पीछे छूट जाते हैं. पर हाँ, हर पड़ाव पे ज़िंदगी के नए दोस्त बनते हैं. पुराने साथ रहते हैं, कुछ छूट जाते हैं, बट यस, हर पड़ाव पे नए दोस्त बनते हैं. एंड ऐसा ही है, जब आप स्कूल में होते हो तो स्कूल के फ्रेंड्स होते हैं, उनमें से बहुत सारे होते हैं पहले, तो फिर उनमें से कुछ बच जाते हैं जो आपके साथ शायद कॉलेज चले जाएं या कॉलेज के बाद भी कनेक्टेड रहें. फिर आप जब कॉलेज जाते हो तो पुराने वाले तो होते ही हैं, बचे हुए कुछ दोस्त फिर कॉलेज में दोस्त बनते हैं, फिर वहाँ से भी ढेरों बनते हैं क्योंकि आपकी पढ़ाई अलग हो जाती है, क्लासेस अलग हो जाते हैं, एंड देन वो भी छूट जाते हैं. कुछ उसमें से आपकी जर्नी में कंटिन्यू रहते हैं. और फिर ऐसे अलग ऑफिस के दोस्त बनते हैं. फिर उसके बाद अब जब शादी करते हो तो आप अपने पार्टनर में दोस्त ढूंढने की कोशिश करते हो आप. और कई लकी ऐसे होते हैं जिनके दोस्त ही उनके पार्टनर बन जाते हैं. तो यार दोस्ती के बिना ज़िंदगी अधूरी है. ज़िंदगी के हर पड़ाव पर आपको दोस्त की ज़रूरत है. चाहे कितना भी लविंग पार्टनर हो, उस पार्टनर की गॉसिप करने के लिए एक दोस्त ज़रूर चाहिए ना. चलिए आगे बढ़ते हैं. आपको एक ज़रूरी जानकारी दे दें कि अगर आप किसी शादी की तैयारी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन की, हाउस वार्मिंग की, किसी भी स्पेशल सेलिब्रेशन की तैयारी करने वाले हैं, तो बिफोर यू स्टार्ट स्ट्रेसिंग अबाउट वेन्यूज, डेकोर, केटरिंग एंड ऑल द लिटिल डिटेल्स, इज वन नेम यू शुड नो. वेनेसा इवेंट्स, दे मेक प्लानिंग सिंपल बाय ब्रिंगिंग एवरीथिंग टुगेदर इन वन प्लेस, फ्रॉम वेन्यू सिलेक्शन एंड ब्यूटिफुल डेकोर बाय सिग्नेचर इवेंट्स टू फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी एंड डिलिशियस केटरिंग एक्सक्लूसिवली बाय द रेनोन्ड बसेरा ग्रैंड. सो यू कैन फोकस ऑन मेकिंग मेमोरीज वाइल दे टेक केयर ऑफ द रेस्ट. कॉल हरी बसेरा टूडे एट 469-442-8770. वेनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर. चलिए एक और गाना दोस्त के लिए, क्योंकि हर एक फ्रेंड ज़रूरी होता है.

0: हीरा है सदा के लिए, डायमंड्स आर इन जस्ट फॉर एवर, दे आर मोर इरेजिस्टेबल ड्यूरिंग तनिष्क फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स। एंजॉय अप टू 25% ऑफ ऑन डायमंड वैल्यू एंड मेकिंग चार्जेस, प्लस 0% डिडक्शन ऑन एक्सचेंज ऑफ गोल्ड अबव 18 कैरेट। सेलिब्रेट द सीजन विथ टाइमलेस स्पार्कल एट तनिष्क। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, विजिट तनिष्क इन फ्रिस्को। तो जी हाँ, तनिष्क जाइए, और अब हीरा सदा के लिए नहीं है वो, मतलब यू नो डायमंड फेस्टिवल है, तो आप जाइए वहाँ पर और हीरा खरीदिए, अपनी बीवी को गिफ्ट करिए और खुश हो जाइए, और उनको भी खुश करिए। चलिए अपने शो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन वक्त थोड़ा छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, तो ब्रेक पे जाते हैं, फिर वापस आते हैं और दोस्तों यारों को याद कर रहे हैं। कल था फ्रेंडशिप डे और संडे का, अगस्त का पहला संडे फ्रेंडशिप डे, और जिस जिसने अपने दोस्तों को विश नहीं किया, फ़ोन उठाओ और विश करो, क्योंकि मैंने तो कर दिया यार। भले उनको फुर्सत नहीं मिली हो, पर मैंने फुर्सत निकाल ली, क्योंकि आज दोस्तों की बात करी तो उन सबको जल्दी जल्दी हैप्पी फ्रेंडशिप डे कह दिया है। भूल गए हो तो कोई बात नहीं, ज़िंदगी की भसड़ में सब उलझ जाते हैं। कर दो विश यार, जिसको बहुत दिन से मैसेज नहीं किया है उसको भी कर दो, एक बार याद कर लो, खुश हो जाएगा वो भी और तुम भी, और फिर से शायद कनेक्ट कर पाओ उनसे। लाइफ में ऐसी टेंशन नहीं लेते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए, और दोस्तों को हमेशा पकड़ के रखना चाहिए, काम आते हैं यार। जब ऑफिस का स्ट्रेस होता था तब भी उनको फ़ोन करते थे, मम्मी से लड़ाई होती तब भी उनको फ़ोन करते थे, है ना। तो ऐसी सारी बातें होती रहेंगी फनीशा पे। आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को, वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, वापस जाते हैं और फिर जल्दी से आते हैं, सुनते रहिए फनीशा।
1: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
2: Hey, तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
3: लिया।
2: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
3: नहीं आया।
2: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे? इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनाडा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्कड हार्ड फॉर। No confusion, no unnecessary extras. Call Humera Jumani at Sonata Inc. 972-863-7772. That's 972-863-7772.
4: Visit www.sanadainc.com today.
5: यार, मेरे फोन में हम दोनों के कितने सेल्फीज है यार।
6: तो चल उन सेल्फीज से पिज्जास खाते हैं।
5: What?
7: This friendship day, bring your friendship to Fun Pizza Kitchen. Post a selfie with your friends on Instagram, tag Fun Pizza Kitchen and enjoy 10% off your bill or a free garlic bread. Offer valid till August 3rd. Visit funpizzakitchen.com for more details.
8: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
9: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
10: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
11: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
10: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
12: जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए।
13: आपका डॉक्टर गया लॉन्ग वेकेशन पर, कोई बात नहीं, पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के मल्टीपल लोकेशंस, एक्सपीरियंस फिजिशियंस के साथ क्वालिटी केयर कभी नहीं रुकती। और सिर्फ ट्रीटमेंट ही नहीं, आज ही अपना एनुअल फिजिकल शेड्यूल कीजिए, रेगुलर स्क्रीनिंग्स के साथ डिप्रेशन और एंजाइटी स्क्रीनिंग, अल्कोहल हेल्थ स्क्रीनिंग, फाइब्रो स्कैन, विटामिन B12 टेस्टिंग और बहुत कुछ। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, हेल्थ केयर दैट नेवर टेक्स अ वेकेशन।
14: कॉल 214-666-6259 टू बुक योर अपॉइंटमेंट्स टुडे।
15: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
16: कुछ भी नहीं, Ura Debt Relief will do it for us.
15: क्या मतलब?
16: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
15: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
16: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
15: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
17: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
3: Experience peace, music and meditation with Archana Didi at a free 3-day retreat in DFW. Join us on August 7th at Bhartiya Nivas in Richardson, August 8th and 9th morning at Sri Raghunath Temple in Plano, and August 8th evening at DFW Hindu Temple, Ekta Mandir in Irving. Enjoy meditation, soulful music and free vegetarian prasad.
4: Proudly supported by Roma Pithadia, Sri Vimal, Shankar Vilas, Payal Dance Class, Rajula's Kitchen, Fun Pizza Kitchen, Raghunath Temple, DFW Temple and Fun Asia.
3: Register free now at meditation.funasia.net.
0: Welcome back after this very short commercial break. आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को गपशप गली में. गली है मीठू की, पर इसमें मैंने इतनी जगह बना ली है. मीठू अभी एक हफ्ते तक यहाँ नहीं होंगी और मैं आपको एंटरटेन करते रहूंगी आपके पसंद के गानों के साथ और अपनी बातों के साथ. और हम ब्रेक पे जाने के पहले बात कर रहे थे दोस्तों की, यारों की, और बस कुछ पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे. मैंने अपने दोस्तों को मैसेज कर दिया, आपने नहीं किया तो कर दो. फ्रेंडशिप डे कल था यार, पर चलेगा, आज भी चलेगा. फ़ोन उठाओ और कर दो. और जब फ्रेंडशिप डे की बात हो रही हो तो ये वाला गाना हम प्ले ना करें या इसकी रिक्वेस्ट ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है. तो ये प्यारा सा गाना के की आवाज़ में.

केके की आवाज में था ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना है एंड दिस इज लाइक यू नो ये तो एंथम है दोस्ती का. और जब से ये गाना आया है ये तो हमेशा से हम लोग सुनते आए हैं, इसके फ़ैन हैं, केके के फ़ैन हैं और उनकी आवाज़ के फ़ैन हैं. ऐसे बहुत सारे खूबसूरत गानों का सिलसिला चलता रहेगा गपशप गली में आपके होस्ट आयुषी के साथ फनेशिया 104.9 FM पे. अपनी फरमाइशें दीजिए, दोस्तों को याद करिए और गाने बजवाइए उनके लिए, क्योंकि भाई दोस्त तो दोस्त होता है कि नहीं. अच्छे में बुरे में दोस्ती काम आते हैं और ज़िंदगी के हर मोड़ पे दोस्त ज़रूरी होता है. वो कहते हैं क्योंकि हर एक फ्रेंड ज़रूरी होता है. यस, ऐसा ही है. कई बार कई दोस्त आपको सबक सिखा के भी चले जाते हैं, भले वो आपकी ज़िंदगी से चले जाते हैं पर आपको क्या नहीं करना है इसका सबक वही दोस्त सिखा के जाता है. उस दोस्त की हमेशा मन में जगह होती है पर फिर दोबारा उनकी तरफ जाने का मन नहीं होता. ऐसा भी होता है ना, मेरे साथ ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है? आपके साथ अगर हुआ है तो ज़रूर कॉल करके बताइए मुझे, कुछ अपनी स्टोरी मेमोरी शेयर करिए, नहीं तो दोस्त के लिए गाना ही बजवा दीजिए यार. चलिए दोस्तों से, दोस्तों में दोस्त जो सबसे क्लोज दोस्त होता है वो भाई बहन. और इस रक्षाबंधन भाई बहन के लिए कुछ स्पेशल लेके आए हैं हम. जी हाँ, फनेशिया और चोकोटाओ कैसिनो एंड रिजॉर्ट इन ड्यूरेंट वॉन्ट्स टू हियर द मोस्ट अनफर्गेटेबल मेमोरी विथ योर ब्रदर और सिस्टर. कहते हैं ना भाई बहन पहला दोस्त होता है. सो सेंड अस अ 1 minute वॉइस नोट ऑन व्हाट्सएप एट 214-837-7147. आई रिपीट 214-837-7147 एंड यू कुड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट एंड रिजॉर्ट स्टे भी. And the grand prize, an unforgettable sibling reunion weekend at Choctaw Casino and Resort in Durant. For complete contest details, check out Phanasia Radio social media page, Choctaw Casino and Resort Durant, where unforgettable memories are made together. ओके, सो यू मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट. छोटे बच्चे नहीं कर सकते हैं, तो अगर आप 21 या 21 से ज़्यादा हैं तो ही पार्टिसिपेशन के लिए अपनी एंट्रीज भेजिए एंड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, सो प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली. चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले गाने की तरफ आपको लेकर के चलते हैं. इसके बाद समय होने वाला है हमारे गिव अवेज का, तो जल्दी से एक प्यारा सा आपको गाना सुनाते हैं और उसके बाद आपको गिव अवे भी देंगे.

0: 9 7. थैंक यू पंडित जी.
1: थैंक यू, हैव अ ब्लेस्ड डे.
0: थैंक यू सो मच. तो ये था आपका वीकली हॉरोस्कोप. तो भाई जो हॉरोस्कोप में मानते हैं, मैं मानती हूँ भाई, तो वो देखें आपका ये अगला हफ्ता कैसा रहने वाला है. और कुछ भी जानकारी चाहिए हो तो हमने आपको नंबर बता दिया है, आप पंडित ईश्वर को कॉल कर सकते हैं 9455270897. तो चलिए अपने शो को आगे बढ़ाते हैं. और वक्त हो रहा है घड़ी में 11:51. मैं आपके साथ कुछ और हूँ आधे घंटे 40 मिनट, जहाँ पर आपके पसंद के गाने बजाऊंगी. तो प्लीज़ स्टूडियो में कॉल करिए, अपने पसंद के गाने बोलिए 9722355555. सावन का सोमवार है, कल फ्रेंडशिप डे था और कल सिस्टर्स डे भी था. तो हाँ, उस सिस्टरहुड के लिए, बहनों के लिए भी ज़ोरदार तालियाँ हो जाएं एक बार. तो या चलिए अपने शो को आगे बढ़ाते हैं, एक अच्छा सा गाना सुनाते हैं आपको. स्टूडियो में कॉल करिए, गानों की फरमाइश दीजिए. आपके होस्ट आयुषी गपशप गली में इंतजार कर रही है आपके कॉल्स का.

0: न्यूयॉर्क फिल्म का ये गाना के की आवाज में, फिल्म में है जॉन अब्राहम, कटरीना कैफ और नीलतन मुकेश। बड़ी मजेदार, मतलब प्यारा सा गाना है यार ये। और मैं तो घूम फिर के ऐसे ही गानों में पहुंच जाती हूँ जो कि पुराने हैं, 2000s के हैं, 90s के हैं। मेरा दिल वहीं अटका हुआ है, मैं अभी भी वहीं अटकी हुई हूँ। मतलब मेरी उम्र भी वहीं अटक जाए, काश ऐसा हो। उम्र बढ़े ही ना, ऐसा सब चाहते हैं। तो बहुत मजा आ रहा है आप लोगों के साथ आज शो करके, बिकॉज़ आपकी फरमाइशें आ रही हैं, आपके कॉल्स आ रहे हैं और आपकी बहुत सारी प्यार भरी बातें सुनने मिल रही हैं, आपकी सराहना मिल रही है। और एक होस्ट को चाहिए क्या? बस हमें तो यही चाहिए कि हम माइक के इस तरफ बैठें, आपसे बातें करें और आप हमें कॉल करके अपनी फरमाइशें दें और बस इतना बोल दें यार, मज़ा आ रहा है। तो बस ऐसा ही हो रहा है मेरे साथ भी। अब वक्त हो रहा है छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, और ब्रेक पे जाने के पहले हम लोग थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। अब लंच का भी टाइम हो रहा है यार, तो जल्दी से आपको बता दूं कुछ खाने पीने के ठिकानों के बारे में। मेरी तो भूख बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और अभी जब मैं इस जगह की बात करने वाली हूँ ना, तो मेरी भूख दुगनी होने वाली है, बिकॉज दिस इज़ माई फेवरेट प्लेस। फ्रॉम सिजलिंग कबाब्स टू फ्लेवरफुल चाट, फ्यूजन बाइट्स एंड मॉकटेल्स, मतलब यहाँ पे ना आपको बिल्कुल लखनऊ वाले खाने का स्वाद, इंडियन खाने का स्वाद मिलेगा। बहुत ही अच्छी जगह है। इफ़ यू स्टिल हैवंट एक्सपीरियंस पेज 383 एट हब 121, यू आर सीरियसली मिसिंग आउट। दिस इज़ वेयर बोल्ड इंडियन स्ट्रीट फूड मीट्स मॉडर्न फ्लेयर। वेदर इट्स ब्रंच, डिनर, लेट नाइट और अ फूडी मीटअप, पेज 3 ब्रिंग्स द परफेक्ट मिक्स ऑफ फ्लेवर्स, एनर्जी एंड वाइब्रेंट वाइब्स। विजिट पेज 3 eatery at hub 121 and explore more at page3eatery.com। प्लीज़ जाइए यहाँ पे, बहुत ही ज़बरदस्त खाना है इनका। मैंने खुद ट्राई किया है और मैं हमेशा ऑर्डर करते रहती हूँ, जाते रहती हूँ। सो यू शुड डेफिनेटली गो टू page3eatery, इट्स एट हब 121। वक्त हो रहा है ब्रेक का, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं और फिर ये प्यारा सा गाना सुनाएंगे आपको, एक ट्रेलर। तो बस बने रहिए और सुनते रहिए।
1: दिस इज द फन एशिया नेटवर्क, यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, पायलट पॉइंट टेक्सास, साइमलकास्टिंग ऑन KTCG 104.1 FM HD2, सैंगर टेक्सास, पावर्ड बाय फन एशिया फिल्म्स एंड फन पिज़्ज़ा किचन।
2: ऑफिशियल टैक्स एंड फाइनेंस पार्टनर AG FinTax,
1: ऑफिशियल इंजरी लॉ पार्टनर द लॉ ऑफिसेस ऑफ ओमर क्वाजा,
2: इन एसोसिएशन विद पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर।
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, aur ab ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
7: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
8: Heere moti, main na chahu.
9: Achha, manifest karne se pehle thoda dubara soch lo. Kyunki ab diamonds mein mil raha hai buy 2 get 1 free offer. Tanmay Jewelers in Awing. Diamond rings, pendants, earrings aur bridal jewelry par buy 2 get 1 free. Aur wo bhi sab kuch wholesale price par. Chahe proposal ho, wedding ho ya bas apni sparkle upgrade karni ho. Ab shine double within budget. Luxury, brilliance, celebration. Tanmay Jewelers in Awing.
10: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, ये बॉक्सेस उठा ले रे।
11: अरे बॉक्सेस उठाने के लिए बाबा को नहीं, स्मार्ट लोग SFL वर्ल्डवाइड को बुलाते हैं।
10: अच्छा, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भेजने हो तो?
11: डॉक्यूमेंट्स, बॉक्सेस, पूरा घर रिलोकेशन, इवन कार ट्रांसपोर्ट
10: इंडिया तक।
11: सिर्फ इंडिया नहीं, विद इन USA और वर्ल्ड वाइड, कम्प्लीट डोर टू डोर शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज।
12: SFL वर्ल्डवाइड, घर हो, गाड़ी हो या जिंदगी का नेक्स्ट मूव, सब सेफली पहुँचता है। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1800 691 2335।
13: ड्यूड लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
14: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, बट तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
13: कैसे?
14: पेज 3 ईटरी?
13: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन
14: ड्यूड, इट्स पेज 3। स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट।
13: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं।
15: पेज 3 ईटरी, ईट सिप गॉसिप रिपीट।
16: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338, 4697343338। myfamilyhomeloan.com इज powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
17: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया। ट्रैफिक अलग और ऊपर से स्ट्रेस।
18: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
17: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
18: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
17: ये क्या होता?
18: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
19: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस,
20: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन अवेलेबल।
21: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है, चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग। फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस। फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव।
22: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को। विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 4693331099.
23: Mention Fun Asia and get 50% off on tryout session.
24: This is Uday Chopra and you are listening to Fun Asia Radio.
25: Don't touch that dial. Keep listening.
0: वेलकम बैक आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। और आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को फन एशिया 104.9 एफएम गपशप गली में। तो भाई शो को आगे बढ़ाते हैं, कुछ मिनट रह गए हैं मेरे पास, घंटे खत्म हो गए हैं, मिनट्स की तरफ आ गए हैं। कुछ प्यारे प्यारे गाने सुना रही हूँ आपको, कुछ अच्छी अच्छी बातें कर रही हूँ और आपके कॉल्स भी ले रही हूँ। तो वक्त हो रहा है हमारे गिव अवे का, ठीक है? तो इस सवाल का जवाब आपको देना है तो आपको जो है वो एक अच्छा सा गिव अवे मिलेगा। और इस बार ये गिव अवे मिल रहा है सैन इडली रेस्टोरेंट से। तो भाई आप यहाँ पर जीत सकते हैं एक डोसा ऑफ योर चॉइस प्लस एक फिल्टर कॉफी भी। और सैन इडली वेजिटेरियन रेस्टोरेंट एंड इंडियन फूड, 100% प्योर वेजिटेरियन है। ऑथेंटिक फ्लेवर्स मिलेंगे आपको यहाँ पे, क्रिस्पी डोसा मिलेगा, फ्लफी इडलीज मिलेगी, कंफर्टिंग साउथ इंडियन फेवरेट्स मिलेंगे और साथ में शहर की सबसे अच्छी फिल्टर कॉफ़ी मिलेगी। तो भाई फैमिली डिनर्स से लेकर के केटरिंग सारी सर्विसेज हैं, जैन फ्रेंडली ऑप्शंस भी हैं। आप सैन इडली वेज रेस्टोरेंट जा सकते हैं एट 121 एंड कस्टर जंक्शन पे है ये, ठीक है? तो सवाल पूछते हैं, सवाल बड़े आसान सा है, आपको बस फ़ोन उठाना है, स्टूडियो के नंबर पर कॉल करना है। नंबर है 972-235-5555। गाना प्ले कर रही हूँ, फिल्म का नाम बताना है, उसके साथ साथ ना इस फिल्म के लीड एक्टर्स भी बताने हैं। वैसे तो हैं तीन, लेकिन आप दो भी बता दोगे ना तो गिव अवे आपका। मूवी का नाम और लीड एक्टर्स, चलिए फोन उठाइए और कॉल करना शुरू करिए। ये रहा है आपका गाना।

चले बहारों। So that was a beautiful song from the movie पीकू। जी हाँ, और इसमें किरदार थे अमिताभ बच्चन साहब, इरफान खान और दीपिका पादुकोण। और हमें हमारे दो विनर्स मिल चुके हैं, उनके लिए जोरदार तालियां। So yes, Sudipto Das and Monica Malhotra, you are the winner for today and you can collect your gift from San Idli Restaurant, जो कि 121 और कस्टर जंक्शन पे है। अगले गाने की तरफ लेकर के चलते हैं, बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा गाना है आपकी ही फरमाइश पे।

Here was this beautiful song और अगले गाने की फरमाइश आ गई है, लेकिन गाने की फरमाइश के पहले ना थोड़ी सी आपको आपकी सेहत के लिए टिप दे देते हैं. जी हाँ, दिस इज स्मॉल हेल्थ टिप फ्रॉम पैशन हेल्थ. एंड डिड यू नो दैट योर हार्ट डजंट नीड पेन टू सिग्नल अ प्रॉब्लम. ये हार्ट प्रॉब्लम्स डोंट ऑलवेज बिगिन विद चेस्ट पेन. शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, अनयूजुअल फटीग, नॉशिया एंड डिसकम्फर्ट इन द जॉ, नेक एंड or arm can also be a warning sign. If symptoms are sudden or severe, seek immediate medical attention. So yes, this is the health fact of the day, and this is brought to you by Passion Health. So agar isme se koi bhi cheez aapke saath ho rahi hai, chest pain is not the only signal, then definitely seek immediate medical attention. And I have a beautiful song lined up for you. हमारी कॉलर की रिक्वेस्ट पर है ये, तो इस गाने की तरफ जल्दी से लेके चलते हैं आपको.

सुरमई से अंधेरे की चादर हटा के एक पर्वत के तकिए से सूरज ने सर जो उठाया तो देखा दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां महकने लगी हैं। अनकही अनसुनी आरजू आधी सोई हुई आधी जागी हुई आंखें मलते हुए देखती है लहर दर लहर मौज दर मौज बहती हुई जिंदगी जैसे हर पल नई और फिर भी वही हाँ वही जिंदगी जिसके दामन में कोई मोहब्बत भी है कोई हसरत भी है पास आना भी है दूर जाना भी है और ये एहसास है वक्त झरने सा बहता हुआ जा रहा है ये कहता हुआ दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां

Here was this beautiful song from the movie Veer Zara. कितना प्यारा गाना है ये, जावेद अख्तर के बोल हैं और इस मूवी में तुम जानते ही हैं कि प्रीति जिंटा है और उनके साथ शाहरुख खान है. बहुत ही प्यारी मूवी थी और बहुत ही प्यारा गाना. वक्त बहुत कम है हमारे पास और अंत में जाते जाते आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि आप लोगों के प्यार, आप लोगों के कॉल्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. हमारे लिए, हम आरजेस के लिए, हम होस्ट के लिए, हमारे शो के अच्छे होने का सिर्फ एक ही एक ही तरीका है जो हमें पता लगता है, जैसे आपके कॉल्स, आपका प्यार, आपकी सराहना. जब चाहे वो गिव अवे हो, चाहे वो नॉर्मल रिक्वेस्ट हो, सॉन्ग रिक्वेस्ट हो, आप सुन रहे हैं, आप हमारे साथ बने हुए हैं, ये जान करके हमें बहुत खुशी मिलती है. तो भाई आज हमने अपने शो पर बहुत सारी बातें करी, सावन के सोमवार के बारे में बातें करी, कुछ माइथोलॉजिकल, कुछ स्टोरीज, कुछ कहानियाँ, दोस्तों की बात करी, बहनों की बात करी, सबकी बात करी. बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा वक्त बीता. लेकिन आप लोगों को ये भी बता देती हूँ कि मैं सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हो गई हूँ आजकल, और इंस्टाग्राम पे मेरा हैंडल है बिहारी मॉम इन अमेरिका के नाम से. तो अगर आप मुझे वहाँ फॉलो करना चाहते हैं, मेरे मिनी व्लॉग्स में देखना चाहते हैं मुझे, तो प्लीज़ मुझे फॉलो करिए, बिहारी मॉम इन अमेरिका. एंड येस, आई एम ऑन फेसबुक इज़ वेल, आयुषी भूषण के नाम से. तो बस फॉलो कर लीजिए, वहाँ भी बने रहेंगे, जुड़े रहेंगे. और मैं हूँ बिहार से, तो जब भी लोगों को पता लगता है कि मैं बिहार से हूँ, तो उनका जब कॉल आता है और जब वो बोलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है. और रीजनल गाने हम बजा नहीं पाते, लेकिन हाँ भाई, हमारे बॉलीवुड में है, लोगों को पता नहीं है बात कि हमारे बॉलीवुड में ना रीजनल गाने भर भर के हैं. पुरानी सारी फिल्मों में ना भोजपुरी गाना हुआ ही करता था, वो एक टच, वो फील आता ही था यूपी बिहार का हर गानों में. तो वैसा ही एक गाना आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ और उसी के साथ अपना शो ख़त्म करूँगी आज के लिए. मुझे विदा दीजिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, यू हैव मेड माई डे. आपका भी मंडे अच्छा रहे, सावन का ये सोमवार आप सबके जीवन में हरियाली और खुशहाली लाए. तो आज के इस आखिरी गाने के साथ आपसे विदा लेना चाहूंगी. नमस्कार, हम मिलेंगे कल फिर सुबह 10 बजे. आपकी होस्ट आयुषी आज के लिए आपसे विदा ले रही है.

0: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
1: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense. Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
2: यार, मेरे फोन में हम दोनों के कितने सेल्फीज है यार.
1: तो चल उन सेल्फीज से पिज्जास खाते हैं.
2: What?
3: This friendship day, bring your friendship to Fun Pizza Kitchen. Post a selfie with your friends on Instagram, tag Fun Pizza Kitchen and enjoy 10% off your bill or a free garlic bread. Offer valid till August 3rd. Visit Fun Pizza kitchen.com for more details.
1: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
4: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास. 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में.
1: दैट मैजिक रिमूवल हो, लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो, गेट ट्रस्टेड सॉल्यूशंस विद 100% प्राइवेसी.
4: थाउजेंड्स की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से. नाउ इट्स योर टर्न. समस्या का पक्का समाधान एस्ट्रोलॉजर ईश्वर. कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com.
5: Fort Worth, the wait is over. The all-new India Bazaar is celebrating its grand opening from August 7th to August 9th. And you're invited. Enjoy exclusive grand opening specials, exciting games, family fun, and your chance to win incredible raffle prizes, including an iPhone 17 Pro, iPad, and 75-inch, 65-inch, and 55-inch TVs. Spend $200 or more and receive a digital raffle entry. Join us for the ribbon-cutting ceremony on Friday, August 7th, from 9 a.m. to 10 a.m. at 5152 Quadrant Way, Suite 110, Fort Worth, India Bazaar, the People's Store.
6: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना.
1: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं. 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट. और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर. लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य. एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे. लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर. ओपन 7 डेज अ वीक, 8 AM टू 8 PM. वॉक इन एनी टाइम. 9191 काइजरवे, स्वीट 205, फ्रिस्को.
7: बेटा, 95% आए?
8: हाँ मम्मी.
7: गुड. अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए.
9: मेरा?
7: हाँ. प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड.
9: वो
1: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने. एजी फिनटैक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज. विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. एजी फिनटैक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी. सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
10: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco. Saturday from 2 p.m. onwards, experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone.
1: Sponsorship booth from $3,000 to $50,000 and vendor stalls at $750. Call 214-529-3257.
10: Celebrate India's 80th Independence Day with the entire community. IANT Anand Bazaar 2026 on Saturday the 15th of August, 2 p.m. onwards at the Comerica Center in Frisco.
11: Dallas ki dhadkan 104.9 FM, Funisia Radio.

हेलो हेलो डैलस, गुड आफ्टरनून और वेलकम है आपका सबका आफ्टरनून अड्डा विद आरजे स्निग्धा में. और इट्स ओनली ऑन फनीशा 104.9 एफएम पर. वीकेंड इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो गए ये जवाब तो हमें नासा भी नहीं देती होगी. और मंडे वो तो बिना इनविटेशन के हर हफ्ता आ ही जाता है. किसी का कॉफ़ी मग एक्स्ट्रा फुल है, किसी की टू डू लिस्ट ऑलरेडी फुल है और कुछ लोग तो अभी भी मेंटली संडे पर ही अटके हुए हैं. लेकिन टेंशन बिल्कुल नहीं, अगले दो घंटे हम मंडे को बोरिंग से एंटरटेनिंग बनाएंगे विद अमेजिंग म्यूजिक एंड फन कॉन्वर्सेशंस. लेट्स गो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर मंडे ब्लूज इन दिस आफ्टरनून.

सो डैलस, अपनी फाइनेंशियल फ्यूचर को स्मार्ट तरीके से ग्रो करने के लिए चाहते हो तो कनेक्ट कीजिए माई टाइम इक्विटी के साथ। CPA सुधीर पाई के पर्सनलाइज्ड इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रियल एस्टेट और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स के साथ विजिट mytimeequity.com या कॉल करिए 4697021272 पर। माई टाइम इक्विटी, इन्वेस्ट स्मार्ट एंड ग्रो स्ट्रांग।

आर लिसनिंग टू आफ्टरनून अड्डा विथ मी आरजे स्निग्धा ऑन फनीशिया 104.9 एफएम पर. सो इट इज ऑलमोस्ट लंच टाइम. इंडिया के ऑथेंटिक फ्लेवर्स की क्रेविंग हो रही है तो जाइए होको फ्रिस्को. लेजेंडरी चना पूरी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करीज और सबका फेवरेट होको कोल्ड कोको अब नॉर्थ टेक्सस में. विजिट होको एट 2693 प्रेस्टन रोड फ्रिस्को या मेन्यू देखिए hoko.us. डॉट पर. होको कम हंग्री लीव विथ अ टेस्ट ऑफ इंडिया.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
3: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
2: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
3: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपरहिट।
4: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
5: इस रक्षाबंधन चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी, एंड ए लाइफ टाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज, एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड। अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 2148377147 पर, या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फन एशिया रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस।
0: चौक टॉक कैसीनो एंड रिसॉर्ट डुरांट, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर। मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। प्लीज प्ले रिस्पांसिबली।
6: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो।
7: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
0: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
8: Not sub or price?
0: Up to 25% off on lehengas and bridal collection. Summer sale through the end of August. Only at Indian Attire Frisco. Traditional ho ya fusion, ab har outfit bolega.
9: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer? उमर ख्वाजा।
10: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम, तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
11: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you are dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
12: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
13: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
12: Kya matlab?
13: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
12: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
13: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
12: Ab to karna hi padega, madam.
14: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
15: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from 3 convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.

You are listening to the afternoon adda with me, RJ Snigdha, on Phoenicia 104.9 FM पर. So, अब बात करते हैं adulting 101. स्कूल और कॉलेज में बहुत कुछ पढ़ाया, लेकिन किसी ने ये बताया कि बिल खुद भी भरने पड़ते हैं, पासवर्ड याद रखना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और ग्रोसरी शॉपिंग में सिर्फ चिप्स ले आना शॉपिंग नहीं होती है एनी मोर. अडल्टिंग का मतलब है एक्साइटेड भी खुद होना, स्ट्रेस भी खुद ही होना, और फिर खुद की ऑनलाइन डिस्काउंट भी ढूंढना. आज का सवाल अडल्टिंग की वो एक चीज जो लाइफ ने प्रैक्टिकली हमें सिखाई हो, लेकिन किसी ना किसी पहले कभी ने बताया. डू यू लाइक हैव एनी सजेशन, और किसी ने आपको बताया अडल्टिंग के बारे में? आई नो सब बोलते हैं कि तू तो अब बच्चा है, तू तो अब छोटा है, तू बस एंजॉय कर, पर अडल्टिंग के लिए भी तो थोड़ा हमें बताइए. सो ऑन अ मंडे व्हेन वी आर ट्राइंग टू बिकम अ बेटर अडल्ट, ऑल वी नो इज लाइक इतना मुश्किल होता है अडल्टिंग. यार बचपन ही अच्छा था.

0: you are listening to the Afternoon Adda with me, RJ Snigda. So now it's the time for a giveaway. So my giveaway question, I don't know, agar aapne last week meri show follow ki hai, to main bas ek hero ka like voice aapko sunaungi, and it's a famous dialogue. Aapko bas hame hamare studio 972-235-5555 par call karna hai aur batana hai ye awaaz kaun si hero ki hai, and then you win the giveaway from the Fun Pizza Kitchen. So ready guys?
1: मुझे मालूम नहीं तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या सिखाया, लेकिन मेरी माँ ने मुझे ये सिखाया कि हालात को अपना गुलाम बनाओ। गुलाम बनोगे तो कुत्ता समझकर लात मारेगी दुनिया, और गुलाम बनाओगे तो शेर समझकर सलाम करेगी।
0: So that's all guys, this is the dialogue. तो कॉल कीजिए इफ यू नो हु इज दिस एक्टर और हमें बताइए।

You're listening to the Afternoon Adda with me, RJ Snigdha, on Fun Asia 104.9 पर. So I had a question for a giveaway कि ये हीरो का नाम क्या है जिसका वॉइस नोट मैंने आपको सुनाई थी. That's none other than Anil Kapoor, and we have the giveaway winner, Miss Pallavi Patel. She gets a giveaway from Fun Pizza Kitchen, and pizza lovers get ready for a flavor fiesta. Fun Pizza Kitchen ले आई है अपनी ब्रांड न्यू मैक्सिकन इंस्पायर्ड पिज्जा लाइनअप फिएस्टा, वेजी से लेकर स्पाइसी पोलो लोको तक, सेन्योर कैमरॉन और मूचो मूचो पोर्क हो, और हर बाइट फुल ऑन फ्लेवर से लोडेड. तो आज ही विजिट कीजिए फन पिज्जा किचन और टेस्ट कीजिए अपना न्यू ऑब्जेशन. डिटेल्स के लिए गो इन टू funpizzakitchen.com या विजिट करें उन्हें फ्रिस्को, एंड इट इज सो यमी. इंडियन के साथ मैक्सिकन भी, गो ट्राई इट ऑन गाइज. एनी वेज, इट्स लंच टाइम. अगर किसी का प्लान अभी तक हुआ नहीं तो जाइए और खाइए अच्छी अच्छी फिएस्टा वाली वेजी या नॉन वेज मैक्सिकन पिज्जाज ऑन ओनली फन पिज्जा किचन.

0: जर्रा जर्रा कहे ये जर्रा जर्रा तेरी गुस्ताख आंखें करे बेबाक।
1: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन,
2: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है। एक हफ्ता, दस दिन, अगले ट्यूसडे,
3: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख।
4: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट। आज बुखार, आज डॉक्टर, आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर, आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर, प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी।
2: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259।
5: Experience peace, music and meditation with Archana Didi at a free 3-day retreat in DFW. Join us on August 7th at Bharatiya Nivas in Richardson, August 8th and 9th morning at Sri Raghunath Temple in Plano and August 8th evening at DFW Hindu Temple, Ekta Mandir in Irving. Enjoy meditation, soulful music and free vegetarian prasad.
4: Proudly supported by Roma Pithadia, Sri Vimal, Shankar Vilas, Payal Dance Class, Rajula's Kitchen, Fun Pizza Kitchen, Raghunath Temple, DFW Temple and Fun Asia.
5: Register free now at meditation.funasia.net.
6: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
7: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
8: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
9: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
8: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
4: Have you thought about what would happen if you or a business partner passed away unexpectedly? The death of an owner can create serious challenges for a business, from ownership disputes to cash flow concerns and family financial needs. A properly structured buy-sell agreement funded with life insurance may help provide the funds needed to purchase a deceased owner's share of the business and allow for a smoother transition to the surviving owners. Life insurance can be used with different buy-sell structures, including cross-purchase and entity purchase arrangements. Protect your business, your partners, and your family. Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603 to learn more about business continuation planning with life insurance. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms, and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult your attorney and tax advisor regarding buy-sell agreements. Not legal, tax, or investment advice.
10: Shaadi byah ka koi mauka ho ya koi tyohar, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
11: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
12: ये तारा वो तारा हर तारा।
13: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
14: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
15: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
14: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
15: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
14: सच में सब संभालेंगे?
15: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
11: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770। वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
16: जिंदगी के कई रंग, फनीशा रेडियो के संग।

0: Welcome back. You're listening to the Afternoon Adda with me, RJ Snigda. So now it's that time for a Ura Debt Relief segment. So welcome to the Ura Debt Relief segment. Today we have the pleasure of having Ura Debt Relief Organization representative, Mr. Aman. He's going to tell us about Ura Debt Relief programs. Hi, Mr. Aman. Thanks for joining on 104.9 FM Phoenicia Radio. How are you, sir?
1: Yes, hello. फाइनेंशियल सुनने वाले सभी लिसनर्स को उरा और अमन की तरफ से नमस्कार. नया महीना शुरू हुआ है, अगस्त का महीना है. एक गलती वो मत कीजिएगा जो पिछले महीने की थी, यानी कि क्रेडिट कार्ड की मिनिमम पेमेंट भर के अपने पैसे खराब मत कीजिए. क्रेडिट कार्ड की मिनिमम पेमेंट करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर क्रेडिट कार्ड पूरा फुल भरा हो, क्रेडिट कार्ड की मिनिमम पेमेंट से वो उतरता नहीं है और आपका टाइम और मनी दोनों वेस्ट हो रही है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपके क्रेडिट कार्ड का कर्जा उतर जाए, आधे से ज्यादा कर्जा माफ हो जाए, तो उरा को कॉल कीजिए. उरा आपके इन सारे कार्ड्स की, पर्सनल, बिजनेस, स्टोर, इन सारे कार्ड्स की एक पेमेंट बना देगा, आधे से ज्यादा कर्जा माफ करा देगा. ना सिर्फ क्रेडिट कार्ड बल्कि पर्सनल लोन्स और बिजनेस लोन्स, अगर आपके वो अनसिक्योर्ड डेट कैटेगरी में फॉल करते हैं, या फिर आपका कोई ऐसा डेट जैसे गाड़ी का लोन हो या रीफाइनेंस कराई, जो गाड़ी रीपोजेस हो गई है या गाड़ी टोटल हो गई है, इस तरह के लोन्स को भी नेगोशिएट करके माफ करवाया जा सकता है. सो सिंपल कीजिए काम, कॉल कीजिए उरा. उरा हमारा टोल फ्री नंबर है 1-888-888-9914, 1-888-888-9914. या फिर आप अपने दोस्त अमन से सीधी बात करना चाहते हैं, यानी मुझसे बात करना चाहते हैं, कॉल मी, व्हाट्सएप मी, टेक्स्ट मी 9167736355, 9167736355. अगेन 9167736355. हमारी वेबसाइट है www.ura.org. तो प्लीज मिनिमम पेमेंट करने से पहले कॉल कीजिए, आधे से ज्यादा कर्जा माफ करवा लेंगे, तो कॉल कीजिए आज ही. थैंक यू.
0: थैंक यू अमन जी.

भाई वाह भाई वाह, शुड गो टू ओमार ख्वाजा। एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है, लेकिन इंसाफ मिलना भी उतना ही ज़रूरी है। अगर आप कार एक्सीडेंट, ट्रक क्रैश या स्लिप एंड फॉल के शिकार हुए हैं, तो अटॉर्नी ओमार ख्वाजा को कॉल कीजिए, तो आपके लीगल राइट्स के लिए लड़ेंगे और जब तक केस जीतेंगे नहीं, वो आपके पास कोई फीस नहीं देंगे। इसी बात पे तो भाई वाह। फ्री कंसल्टेशन के लिए कॉल करें 4693005046। रिपीटिंग द फोन नंबर अगेन 4693005046, या विजिट करें attorneyomar.com।

सो इट्स ऑलमोस्ट मिड आफ्टरनून. बॉलीवुड का एक अलग ही सुपर पावर है. लाइक खुश हो तो गाना, दुख हो तो गाना, ट्रैफिक में फंसे तो भी गाना, और मंडे को थोड़ा फिल्मी बनाने के लिए रेडी हो जाइए, बिकॉज नेक्स्ट फ्यू सॉन्ग्स आर ऑल अबाउट गुड वाइब्स.

are listening to the Afternoon Adda with me, RJ Snigdha, on Phanesha 104.9 FM पर. So, Dallas, क्या आपके डॉक्टर के पास आपके लिए सिर्फ 5 या 10 मिनट होते हैं? Passion Health Primary Care में हर अपॉइंटमेंट के लिए मिलते हैं पूरे 30 मिनट, ताकि आपकी हेल्थ को समझ सके वो. और सिर्फ ट्रीट नहीं किया जाए, आपकी हेल्थ को समझना भी जरूरी होता है. एनुअल फिजिकल्स सिर्फ 30 मिनट्स में, साथ ही एंग्जाइटी केयर, फाइब्रो स्कैन फॉर लिवर हेल्थ, विटामिन B12 डेफिशिएंसी टेस्टिंग और बहुत सारी हेल्थ केयर सर्विसेज एक ही जगह पे. आज ही अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कीजिए. कॉल करें 214-666-6259 पर. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, योर हेल्थ इज देयर पैशन.

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
3: कौन सा?
2: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोल की भी है।
3: अरे सारे तो सेम है।
2: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो, ये वाला।
3: ओह हाँ, ये तो अलग है।
4: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
5: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
4: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
6: यार, मेरे फोन में हम दोनों के कितने सेल्फीज हैं यार।
4: तो चल, उन सेल्फीज से पिज़्ज़ास खाते हैं।
6: What?
7: This friendship day, bring your friendship to Fun Pizza Kitchen. Post a selfie with your friends on Instagram, tag Fun Pizza Kitchen and enjoy 10% off your bill or a free garlic bread. Offer valid till August 3rd. Visit funpizzakitchen.com for more details.
8: Pritesh, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
9: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है.
8: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
9: वेट, व्हाट?
4: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है.
10: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ. मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग.
4: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए. कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन.
11: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए. दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम. चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स. डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन.
12: हे, तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
13: लिया.
12: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
13: नहीं आया.
12: मुझे भी नहीं आया. आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है. इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस. वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू. होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर. नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास. कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-772. That's 972-863-772.
14: Visit www.senadainc.com today.
15: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco. Saturday from 2 p.m. onwards, experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone.
4: Sponsorship booth from $3,000 to $50,000 and vendor stalls at $750. Call 214-529-3257.
15: Celebrate India's 80th Independence Day with the entire community. IANT Anand Bazaar 2026 on Saturday the 15th of August, 2 p.m. onwards at the Comerica Center in Frisco.
16: This is Ali Zafar and you're listening to me on Fun Asia Radio.

You're listening to the Afternoon Adda with me, RJ Snigdha, on Phoenicia Radio 104.9 FM पर. So Dallas, अगर आपको चाहिए reliable tax और accounting solutions, तो याद रखिए AJ FinTax. चाहे आप individual हो, startup चला रहे हो या एक established business हो already, AJ FinTax आपके लिए लेकर आया है complete financial solutions, bookkeeping, payroll, tax planning, tax filing, financial reporting और business advisory. सब कुछ एक ही जगह, experienced professionals के साथ. अपने फाइनेंस को रखिए ऑर्गेनाइज्ड, कंप्लेंट फ्री एंड फ्यूचर रेडी. आज ही कॉल कीजिए 4699429888 या विजिट कीजिए ajfintax.com. AJ FinTax, योर ट्रस्टेड पार्टनर फॉर अ स्ट्रॉन्गर फाइनेंशियल फ्यूचर. एंड कीप लिसनिंग टू मी अंटिल 2:30 PM.

are listening to me on Afternoon Adda with me, RJ Snigdha, on Funisha 104.9. So, अब एक fun imagination करते हैं. अगर आपके आज के मंडे को बॉलीवुड मूवी का टाइटल देना हो तो क्या होगा? This is just for a fun. You know what? I have like examples. अगर मंडे ब्लूज का कुछ नाम चाहिए तो it should be like Wake Up Sid, हंगामा, Three Idiots या फिर भागम भाग. और ऑफिस के मीटिंग ज्यादा बोरिंग हो गए तो इट शुड बी लाइक या लाइक लोग ऐसे ही बात कर रहे करते जा रहे, बॉस बात करते, फिर कलीग, फिर हमारे मैनेजर. इट शुड बी लाइक वेलकम टू द जंगल. सो हियर यू गो एंड नेक्स्ट ब्यूटीफुल ट्रैक फॉर यू गाइज़.

You're listening to me, RJ Snigdha, on Phoenicia 104.9. It's afternoon adda. So now let's talk about subscriptions. के बिना हम कैसे जीते हैं. लाइक सब्सक्रिप्शंस यू कांट लिव विदाउट. आजकल ना सब्सक्रिप्शन भी फैमिली मेंबर्स जैसे हो गए हैं. म्यूजिक ऐप, ओटीटी प्लेटफॉर्म, फूड डिलीवरी मेंबरशिप, क्लाउड स्टोरेज या ऑनलाइन शॉपिंग. कभी कभी लगता है सैलरी से पहले सब्सक्रिप्शन का पेमेंट निकल जाता है. तो बताइए वो एक सब्सक्रिप्शन कौन सा ही है जिसके बिना आप काम नहीं चला सकते. एंड यू नो वॉट इज दैट वन सब्सक्रिप्शन फॉर मी. आई थिंक इट्स आई क्लाउड, बिकॉज बहुत सारे फोटोज मुझे चाहिए होते हैं और आई क्लाउड बोलते हैं 2 TB ले ले बहन तू.

You're listening to Afternoon Adda with me, RJ Snigdha, on Fanisha 104.9 FM पर. So I have a very exciting news. It's August. भाई बहन की यादों तो priceless होती है, पर इस रक्षाबंधन आपकी एक special memory आपको exciting prizes भी जीत सकती है. Like Fanisha Radio और Chalk Tove Casino and Resort Durant के साथ share कीजिए अपनी unforgettable sibling story. बस एक मिनट का voice note WhatsApp कीजिए 214-837-7147 पर. लेट मी रिपीट 214-837-7147 पर और जीतिए डेली प्राइजेस, डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, रिसॉर्ट स्टेज और ग्रैंड प्राइजेस, सिबलिंग रियूनियन वीकेंड एट चॉक टॉप कैसीनो एंड रिसॉर्ट दुरंत. तो देर किस बात की, अपनी यादगार कहानी भेजिए और इस रक्षाबंधन को बनाइए एक्स्ट्रा स्पेशल. कॉन्टेस्ट की डिटेल्स के लिए फनेशिया रेडियो सोशल मीडिया पेजेस चेक कीजिए. यू मस्ट बी 21 और older, terms and conditions apply. Please play responsibly and it's such an exciting thing. Come on guys, do it. Bhai behno apna story yaad karo aur bhejiye Fanisha par.

लिसनिंग टू द आफ्टरनून अड्डा. सो नाउ आज के आफ्टरनून अड्डा के वक्त यही तक था. मंडे को थोड़ा स्माइल, थोड़ा सा म्यूजिक और बहुत सारी मस्ती के साथ स्पेंड करने के लिए मेरे साथ थैंक यू सो मच माय लिसनर्स. याद रखिए, मंडे चाहे कितना भी बिजी हो, अगर मूड अच्छा हो तो पूरा वीक थोड़ा ईजी ही लगता है. थैंक यू. इट्स मी आरजे स्निग्धा साइनिंग ऑफ.

0: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
1: यार मेरे फोन में हम दोनों के कितने सेल्फीज है यार।
2: तो चल उन सेल्फीज से पिज़्ज़ास खाते हैं।
1: What?
3: This friendship day, bring your friendship to Fun Pizza Kitchen. Post a selfie with your friends on Instagram, tag Fun Pizza Kitchen and enjoy 10% off your bill or a free garlic bread. Offer valid till August 3rd. Visit funpizzakitchen.com for more details.
4: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
5: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
4: नहीं।
5: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
4: नहीं।
5: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
4: वो भी नहीं।
5: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
6: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, your growth, our strategy.
7: AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
8: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
9: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया। ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस।
10: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
9: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
10: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
9: ये क्या होता?
10: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
11: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस, सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
12: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन, जस्ट 3 डोर्स डाउन, विद लिमिटेड रिजर्वेशन।
13: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, ये बॉक्सेस उठा ले रे।
14: अरे बॉक्सेस उठाने के लिए बाबा को नहीं, स्मार्ट लोग SFL वर्ल्डवाइड को बुलाते हैं।
13: अच्छा, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भेजने हो तो?
14: डॉक्यूमेंट्स, बॉक्सेस, पूरा घर रिलोकेशन, इवन कार ट्रांसपोर्ट
13: इंडिया तक।
14: सिर्फ इंडिया नहीं, विद इन USA और वर्ल्ड वाइड, कम्प्लीट डोर टू डोर शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज।
12: SFL वर्ल्डवाइड, घर हो, गाड़ी हो या जिंदगी का नेक्स्ट मूव, सब सेफली पहुंचता है। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
15: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस। विद ओवर 400 इयर्स ऑफ फैमिली ट्रेडिशन, थ्रू हिज एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड पाम रीडिंग, पंडित ईश्वर जी कैन हेल्प यू विद एनी डिफिकल्टी इन योर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, फ्रॉम रिलेशनशिप इश्यूज टू नेगेटिव एनर्जी रिमूवल। कॉल द मोस्ट ट्रस्टेड एस्ट्रोलॉजर, पंडित ईश्वर जी, 9455270897, और विजिट astrologerishwar.com।
16: भूख लगी, जोरों की
17: भूख लगी है, या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
18: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 Eatery। ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
19: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू Page 3, हब 121 मैकिनी।
5: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
6: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
5: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
6: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
5: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
6: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
5: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338। दैट्स 817-786-3338।
3: Hi, this is Madhavan, and you're listening to me on my official radio station, Fun Asia Radio.

वेरी गुड आफ्टरनून टू द लिसनर्स ऑफ 104.9 एफएम फाइनेंशियल रेडियो सुन रहे हैं आप. मैं हूं किरण आपके साथ. थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस दिस आफ्टरनून. 2:30 PM टिल 5 PM आफ्टरनून ड्राइव टाइम के साथ मैं आपके साथ रहती हूं मंडे थ्रू फ्राइडे 2:30 से 5 बजे तक. और आप भी मेरे साथ रहते हैं 972-235-5555 है स्टूडियो का नंबर. और आज है जी मंडे. हफ्ते की शुरुआत हमेशा ही आपकी फरमाइश से होती है. जी हाँ, फिल्मी फरमाइश लेकर हाजिर हुई हूँ पसंद आपकी आपके मनपसंद रेडियो स्टेशन पे आपकी मनपसंद आरजे के साथ. अगले 2 घंटे आप कर सकते हैं रिक्वेस्ट 90s से आगे का कोई भी गाना. किसी को कोई डेडिकेशन देनी है, कोई सॉन्ग रिक्वेस्ट, कोई बर्थडे विश करनी है या कोई मैसेज रिले करना है, वी आर ऑल इयर्स. 972-235-5555 मंडे इज एट सुनहरी किरण इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू यू.

0: तनु वेद्स मनु से सुन रहे थे आप ये गाना। वैसे कुछ लोग होते हैं इतने खास कि उनके रंग में रंग जाने को दिल करता है, और कुछ ऐसी ही रिक्वेस्ट यहाँ इस गाने में आप सुन रहे थे। अच्छा जी, आगे बढ़ रहे हैं, फरमाइशों का सिलसिला शुरू हो चुका है और आपकी रिकमेंडेशंस और रिक्वेस्ट मेरे पास लाइंड अप हैं, एक एक करके उनको प्ले करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताती चलूँ कि योर ड्रीम होम मे बी क्लोजर देन यू थिंक, और वो कैसे होगा? अगर आप ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं अपने, तो ड्रीम होम मॉर्गेज वो जगह है जो आपके इस ख्वाब को आपके लिए हकीकत बना सकता है। सिंस 1998 ड्रीम होम मॉर्गेज हेल्प कर रहा है फैमिलीज को अक्रॉस द कंट्री टू टर्न देयर होम ओनरशिप ड्रीम इनटू अ रियलिटी। पर्सनलाइज मॉर्गेज सॉल्यूशंस आपके लिए क्रिएट करते हैं जो कि स्मूथ और स्ट्रेस फ्री प्रोसेस के थ्रू होता है। लाइसेंस्ड हैं ड्रीम होम मॉर्गेज वाले ऑल 50 स्टेट्स में जी, और उनकी जो एक्सपीरियंस टीम है वो कमिटेड है finding you the right loan options जो कि आपकी needs और आपकी requirements के around tailor किए जाते हैं, चाहे आप first time home buyer हो, upgrade कर रहे हो, refinancing करवाना चाहते हो। So अपने घर की जो home ownership की जो dream है आपकी, उसको उस journey को start कीजिए confidence के साथ with Dream Home Mortgage। और Dream Home Mortgage के हुसैन पंजवानी जी तो हमारे साथ आफ्टरनून ड्राइव टाइम में शामिल होते हैं एवरी वेंसडे, वो मेरे साथ कनेक्ट करते हैं। उनको कॉल कीजिए इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, दैट नंबर इज 972-245-5626 972-245-5626, या फिर आप उनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं विच इज dreamhomemortgage.com, या उन्हें ईमेल कर सकते हैं info@dreamhomemortgage.com। ड्रीम होम मॉर्गेज आपके ख्वाबों को बना रहा है हकीकत।
1: असूलों पर जहां आ जाए टकराना जरूरी है, बंदा जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, बंदा हो तो जिंदा हो।

अच्छा जी, 3 साल की एब्सेंस, ये जिंदा गाने से मुझे शाहरुख खान के बारे में एक खबर आपके साथ शेयर करना याद आई कि 3 साल से हमने उनकी कोई मूवी नहीं देखी है बिग स्क्रीन पे, लेकिन सुपरस्टार शाहरुख खान विल रिटर्न दिस ईयर विद द हाईली एंटिसिपेटेड एक्शन एंटरटेनर, जो कि हम बहुत अरसे से सुन रहे थे कि सुहाना के साथ आ रही हैं वो, द किंग, किंग नाम है उस फिल्म का. स्पेशल अनाउंसमेंट प्रोमो अनवील हुआ जी इन जनवरी, जो कि पिछले इस साल हुआ था, टू कन्फर्म दैट द फिल्म वुड अराइव इन सिनेमाज ऑन December 24th. और इन रिसेंट वीक्स हावेवर स्पेकुलेशन हो रहा था कि शायद किंग जो है वो अपने स्केड्यूल पे रिलीज नहीं होगी और 2027 में शायद पुश हो जाएगी, लेकिन इस खबर को कर दिया गया है रद्द. और अभी जो लेटेस्ट अपडेट आई है वो यही आई है, बॉलीवुड हंगामा ने जब अपडेट दी कि December 24th ही किंग फिल्म की रिलीज तय हुई है, क्योंकि December 24th या December के जो आखिरी 10 दिन होते हैं उसमें बड़ी बड़ी हॉलीवुड की मूवीज रिलीज हो रही हैं, जैसे कि शायद एवेंजर्स डूम डे रिलीज हो रही है, जुमानजी एक बार फिर आ रही है. अगर आप जुमानजी के फैन हैं जैसे मैं हूँ जुमानजी की फैन, तो उसका Part 3 आ रहा है, तो इट विल बी सो मच इंटरेस्टिंग. जून इज गोइंग, और ड्यून Part 3 भी आ रहा है, तो उसमें शायद हो रहा था कि किंग को शायद डिले कर दिया जाए, मगर ऐसा नहीं है. सिग्निफिकेंटली किंग विल अराइव अमिड 3 major हॉलीवुड रिलीजेज. December 18 जो है वो रिलीज डेट आई है एपिक क्लैश बिटवीन एवेंजर्स एंड ड्यून Part 3 की. और डूम्सडे Part 3 एवेंजर्स डूम डे इज एक्सपेक्टेड टू टेक थंडरस स्टार्ट, जबकि ड्यून भी बहुत बड़ी सुपर हिट है एंड पीपल आर वेटिंग फॉर Part 3. सो इस सारे में किंग कहाँ स्टैंड करेगी ये तो टाइम ही बताएगा, बट फिलहाल रिलीज डेट डिले नहीं हुई.

डॉन से याद आया मुझे कि डॉन 3 भी वैसे कुछ परेशानी में ही पड़ी हुई, अभी समझ ही नहीं आ रहा कि डॉन 3 ने रिलीज होना भी है या नहीं होना, जब तक से रणवीर सिंह ने डॉन 3 छोड़ी है और सारी खबरें आई और सू हुए वो, अब अल्लाह जाने आगे क्या हो रहा है उनके साथ. बट इस सारे में हम एज व्यूअर्स, हमारा नुकसान नहीं होना चाहिए, डॉन 3 बननी चाहिए और हमें 3 और हमें

से रणवीर सिंह ने ड्रोन 3 छोड़ी है और सारी खबरें आई और सू हुए वो, अब अल्लाह जाने आगे क्या हो रहा है उनके साथ. बट इस सारे में हम एज व्यूअर्स, हमारा नुकसान नहीं होना चाहिए. ड्रोन 3 बननी चाहिए और हमें थ्री और हमें देखना चाहिए कि आगे क्या होने वाला है ड्रोन में. मैं तो कहती हूँ शाहरुख को ही दोबारा ले लीजिए, ख़त्म करें कहानी. एनीवेज आगे बढ़ रहे हैं, आपकी फरमाइशों का सिलसिला जारी है. ये है फिल्मी फरमाइश, आपकी पसंद, आपके मनपसंद रेडियो स्टेशन पे. मैं किरण आपके साथ मौजूद हूँ. और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं जी कि दिस पार्ट ऑफ आवर शो इज ब्रॉट टू यू बाय एजी फिनटेक्स, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स फर्म्स एंड अकाउंटिंग फर्म्स इन जी यूएस में. चाहे आप इंडिविजुअल हो या आपके पास कोई, या आपने कोई स्टार्टअप शुरू किया हो या यू हैव एन एस्टैब्लिश बिजनेस, एजी फिनटेक्स ऑफर करता है आपको इनोवेटिव फाइनेंशियल सॉल्यूशंस जो कि आपकी नीड्स के इर्द गिर्द टेलर किए जाते हैं, जैसे कि फ्रॉम बुक कीपिंग, पेरोल अकाउंटिंग एंड बैंक एंड क्रेडिट कार्ड रिकंसिलिएशंस टू प्रोएक्टिव टैक्स प्लानिंग, टैक्स कंप्लायंस, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. और साथ ही साथ एजी फिनटेक्स आपको बिजनेस एडवाइजरी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है. दे हेल्प कीप योर फाइनेंसेस ऑर्गेनाइज्ड, कंप्लायंट एंड फ्यूचर रेडी. तो जरूर कॉल कीजिए एजी फिनटेक्स को, बनाइए अपना पार्टनर इन बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फ्यूचर. गिव देम अ कॉल 4699429888. कोई भी आपका सवाल है, कॉल करने में कोई हर्ज नहीं है जी, कॉल कीजिए, अपने बात कीजिए. अगर आपको आगे बढ़ना सही लगता है तो जरूर गिव देम अ चांस, यू नो, कॉल से ही पता लगेगा. 4699429888 इज दैट नंबर, या फिर उनकी वेबसाइट विच इज अवेलेबल agfintax.com, FINTAX, agfintax.com.

अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Omar Khawaja, the official injury partner of Funasia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Omar Khawaja, your legal lifeline.
2: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस चौकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस. पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं. तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए. चौकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में. प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली, मस्ट बी 21 ईयर्स.
3: यार मेरे फोन में हम दोनों के कितने सेल्फीज है यार.
4: तो चल उन सेल्फीज से पिज़्ज़ास खाते हैं.
3: व्हाट,
5: दिस फ्रेंडशिप डे ब्रिंग योर फ्रेंडशिप टू फन पिज़्ज़ा किचन. पोस्ट अ सेल्फी विद योर फ्रेंड्स ऑन इंस्टाग्राम, टैग फन पिज़्ज़ा किचन एंड एंजॉय 10% ऑफ योर बिल और अ फ्री गार्लिक ब्रेड. ऑफर वैलिड टिल August 3rd. विजिट funpizzakitchen.com फॉर मोर डिटेल्स.
6: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
7: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
6: Kya matlab?
7: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
6: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
7: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
6: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
8: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
9: Experience peace, music and meditation with Archana Didi at a free 3-day retreat in DFW. Join us on August 7th at Bhartiya Nivas in Richardson, August 8th and 9th morning at Sri Raghunath Temple in Plano, and August 8th evening at DFW Hindu Temple, Ekta Mandir in Irving. Enjoy meditation, soulful music and free vegetarian prasad.
10: Proudly supported by Roma Pithadia, Sri Vimal, Shankar Vilas, Payal Dance Class, Rajula's Kitchen, Fun Pizza Kitchen, Raghunath Temple, DFW Temple and Fun Asia.
9: Register free now at meditation.funasia.net.
11: Hi, this is Akshay Kumar and you're listening to Fun Asia Radio.
12: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फनेशिया 104.9 FM.

आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण में आप सुन रहे हैं फिल्मी फरमाइश, आपकी पसंद आपके मन पसंद रेडियो स्टेशन पे. मैं किरण लेकर आई हूँ. 972-235-5555 इज द नंबर टू द स्टूडियो. आगे बढ़ते हुए आपको बताएं जी कि अगर आप अनफॉर्चुनेटली किसी कार या फिर किसी ट्रक एक्सीडेंट में इन्वॉल्व्ड हैं या फिर देयर इज अ स्लिप और अ फॉल इंसिडेंट, तो दिस सिचुएशन कैन बी एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल. डीलिंग विद द पेपर वर्क, द इंश्योरेंस कंपनीज, द लीगैलिटीज, द निटिग्रिटीज ऑफ द सिचुएशन, जो बहुत सारे सिनेरियोज में हमें मालूम भी नहीं होता, हम पूरी तरह अवेयर भी नहीं होते उन निटिग्रिटीज के, तो ऐसी सिचुएशन में आपको एक अटर्नी चाहिए जो आपकी तरफ से इन तमाम चीजों का ख्याल रखे, फाइल करे आपका केस, इन पेपर वर्क को प्रोसेस करे, और आप सिर्फ अपनी सेहत और अपनी रिकवरी का ख्याल रखिए. एंड दैट अटर्नी इज अटर्नी उमर ख्वाजा. अटर्नी उमर ख्वाजा एंड हिज टीम विल हेल्प यू फाइट योर केस, गेट यू द बेस्ट कॉम्पनसेशन दैट यू डिजर्व. और जो बेहतरीन बात है वो ये है कि आपको कुछ पे नहीं करना जब तक कि आप इस केस को जीत नहीं जाते. सो दिस इज अ विन विन सिचुएशन फॉर यू. सो डू कॉन्टैक्ट अटर्नी उमर ख्वाजा फॉर फ्री कंसल्टेशन. नंबर नोट कर लीजिए, 4693005046. वो नंबर है, या फिर उनकी वेबसाइट पे विजिट कीजिए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है. दैट वेबसाइट इज अटर्नी उमर OMAR अटर्नी उमर .com. फिल्मी फरमाइश, आपकी और मेरी पसंद के गाने.

जी हाँ, धुरंधर से सुन रहे थे आप ये गाना, एक बहुत ही पुरानी कव्वाली का एक बड़ा मॉडर्न सा वर्जन। अच्छा, आगे बढ़ते हुए आपको बताऊं जी, अक्षय कुमार एक बार फिर खबरों में आ चुके हैं। अक्षय कुमार मोर देन अ डेकेड आफ्टर कोलैबोरेटिंग ऑन अक्लेम्ड फिल्म्स जैसे कि स्पेशल 26 आई या फिर बेबी आई, अक्षय कुमार और फिल्म मेकर नीरज पांडे एक बार फिर कोलैबोरेट कर रहे हैं एक साथ। और रिपोर्टेडली दे हैव कम ऑन बोर्ड विद नीरज अपकमिंग बायोपिक जो कि लेजेंडरी कंपोजर, म्यूजिक कंपोजर आर डी बर्मन साहब पे बनने वाली है। फरहान अख्तर सुना है कि इस मूवी को करेंगे डायरेक्ट। डिटेल्स तो अभी कुछ खास पता नहीं लगी कि अक्षय कुमार का रोल क्या होने वाला है इसके अंदर, लेकिन कुछ गॉसिप के गलियारों में या खबरों के गलियारों में ये खबर आ गई है कि अक्षय कुमार और नीरज पांडे एक बार फिर एक साथ नजर आएंगे, एक साथ काम कर रहे हैं और मूवी बनेगी बायोपिक आर डी बर्मन साहब की जिंदगी पे। सो इट इज गोइंग टू बी एन एक्सट्रीमली फन वॉच, लेट्स वेट फॉर इट।

एयरलिफ्ट फिल्म से अक्षय कुमार पे पिक्चराइज्ड और निमृत कौर पे पिक्चराइज्ड ये गाना आप सुन रहे थे. और अभी मुझे एक फ़ोन कॉल भी आई कि पता नहीं क्या फिल्म बनेगी ये बायोपिक जो आर डी बर्मन साहब की बन रही है. अक्षय कुमार होंगे, फरहान अख्तर डायरेक्ट करेंगे, फिल्म मेकर है नीरज पांडे. सो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी. लेकिन बहरहाल जब रिलीज़ होगी तभी पता लगेगा कि क्या बना. या फिर अभी तो बहुत सारी चेंजेस, आपको पता है खबरें तो आ जाती हैं मगर उन खबरों में बहुत सारी चेंजेस होती ही रहती हैं बॉलीवुड के गलियारों में. तो आगे बढ़ते हुए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मेरी नज़र से गुजरी, देखिए हम सब जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि डॉक्टर हमारे साथ, पीसीपी हो आपका या जब आप एक रेगुलर चेकअप के लिए जाते हैं, कि वो आपके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, आपकी हेल्थ हिस्ट्री को समझें, आपसे बात करें, आपके मसले को पूछें कि भाई आपके साथ मसला क्या है और क्या चल रहा है, आपके अंदर इंटरेस्ट लें. सो कई बार ऐसा होता है कि 5 मिनट डॉक्टर इन एंड आउट होते हैं, कोई ज़्यादा इंटरेस्ट आप में नहीं लिया. लेकिन पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर पर ऐसा हरगिज़ नहीं होता. हर अपॉइंटमेंट 30 मिनट्स के लिए स्केड्यूल की जाती है बिकॉज दे आर कमिटेड टू अंडरस्टैंडिंग, ट्रूली अंडरस्टैंडिंग योर हेल्थ. सो पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, यहाँ पे आपको वाकई आपको फैमिली मेम्बर की तरह केयर किया जाता है. फॉर यू, फॉर योर फैमिली एंड सारी कम्युनिटी के लिए दे आर हेयर. 30 मिनट्स ही काफ़ी होते हैं. दे इट्स ऑल इट टेक्स टू कम्प्लीट आर एनुअल फिजिकल्स. एनजाइटी केयर हो, फाइब्र स्कैन फॉर एल्कोहल रिलेटेड लिवर कंसर्न्स हैं आपके, वाइटामिन B12 डेफिशिएंसी टेस्टिंग करानी है आपने, और भी बहुत कुछ इज अवेलेबल एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर. आप अपनी अपॉइंटमेंट आज ही स्केड्यूल कर सकते हैं बाय कॉलिंग एट दिस नंबर 214-666-6259. उनका नंबर है, इस पे कॉल कीजिए, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराइए. दे आर एक्सट्रीमली पैशनेट अबाउट ट्रीटिंग यू नाइसली एंड वेल. सो बी पैशनेट अबाउट योर हेल्थ एंड कॉन्टैक्ट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर.

अच्छा जी, इसी के साथ बस अभी 2-3 मिनट में हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आकर मैं आपको बताऊंगी 72nd नेशनल फिल्म अवार्ड्स के बारे में, जो कि नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया प्रेजेंट करती है, और देवर अनाउंस्ड ऑन 18 जुलाई 2026 इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस टू ऑनर द बेस्ट ऑफ इंडियन सिनेमा इन 2024। अब मुझे नहीं पता कि 2026 में 2024 के क्यों अनाउंस हो रहे हैं, लेकिन बाहर ये जो अभी अभी की लेटेस्ट खबर है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। बने रहिए मेरे साथ, और दिस इज फाइनेंशियल रेडियो। राइट आफ्टर दिस ब्रेक वी विल टॉक अबाउट द 72nd नेशनल फिल्म अवार्ड्स।

0: रेस्टोरेंट चूज करना हो, गूगल रिव्यूज। होटल बुक करना हो, गूगल रिव्यूज। लेकिन बच्चों के डॉक्टर की जब बात आए तो एक ही रिव्यू सबसे इम्पोर्टेंट होता है, माँ का रिव्यू।
1: इसलिए डॉक्टर फरहाद हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ DFW चाइल्ड मॉम अप्रूव्ड पीडियाट्रिशियन फॉर 4 कंसेक्यूटिव इयर्स 2023 through 2026। मीट डॉक्टर निशात फरहाद एट पैशन हेल्थ पीडियाट्रिक्स, सर्विंग फैमिलीज एट फ्रिस्को एंड ऑब्री, स्टार्टिंग एट द एंड ऑफ ऑगस्ट। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, बिकॉज एवरी हेल्दी स्माइल बिगिंस विद ट्रस्टेड केयर। कॉल 214-666-6259 एंड शेड्यूल योर अपॉइंटमेंट्स टुडे।
2: Immigration is a serious concern for our community, and when you are filing your case, you want a firm which is exclusively devoted to immigration law, like the law offices of Seema Mehta. From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa, perm labor certification or citizenships, they do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
3: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर।
4: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
1: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
5: वेट, इतना सब और प्राइस?
1: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
6: मैं ही तो।
7: सुनो, कल बहुत काम है। पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली। कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
8: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
7: कहाँ?
9: फूडिस्तान इन ऑबरी। फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, केटरिंग सर्विसेज, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी। एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट D-Vibe, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर।
1: फूडिस्तान इन ऑबरी, मेंशन फन एशिया एंड एंजॉय 10% डिस्काउंट।
10: जिंदगी एक रंगमंच है
0: और घर ढूंढना सिर्फ इंटरवल। असली क्लाइमेक्स तो तब है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और चाबी आपके हाथ में हो। पर्दा गिरने से पहले फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल, हम पक्का करते हैं कि घर सच में आपका हो, हर कदम आपके साथ।
1: कॉल 972-897-1530 firstunitedtexastitle.com।
11: ओचो
12: होको,
11: ओचो
12: होको,
11: ओचो
12: इट्स होको।
13: अरे बस भी करो यार।
12: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है।
13: नाम होको हो या होचो क्या फर्क पड़ता है? एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूड़ी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करीज, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना, फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा।
1: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक होको अब फ्रिस्को में। वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिएड केटरिंग ऑप्शंस। टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज।
14: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
15: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
16: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
17: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
18: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
17: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
19: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
7: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
19: पर और यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
6: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
19: सच में सब संभालेंगे?
6: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
1: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770। वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
11: डालस की धड़कन 104.9 FM, फनीजिया रेडियो।

You're tuned into 104.9 FM Fun Asia Radio Afternoon Drive Time सुन रहे हैं आप सुनहरी किरण के साथ और 972-235-5555 के थ्रू आप कर सकते हैं अपनी फरमाइश रजिस्टर यहाँ. जी हाँ, आपकी फरमाइश ले रही हूँ. पसंद आपकी, आपके मनपसंद रेडियो स्टेशन पे आपकी मनपसंद आरजे मंडे इसको लेकर आती हूँ आपके लिए. 2:30 PM टिल 5 PM आपकी लेते हैं रिक्वेस्ट और आप ही की पसंद के गाने. दिस इज कम्प्लीटली मंडे इज कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू यू. हर रोज आपके लिए एक नया फ्लेवर होता है मेरे पास सुनहरी किरण में. तो आज का फ्लेवर है पर आपकी पसंद. वैसे साथ साथ मैं आपको कुछ खबरें भी बता रही हूँ बॉलीवुड की. और उससे पहले आपको बताती चलूं जी कि तंदूरी फ्लेम जो कि गार्लैंड में लोकेटेड है, ये एक ऐसी जगह है जहां अगर आपको घर का खाना पसंद है, स्पाइस लवर हैं आप, तो तंदूरी फ्लेम इज द प्लेस फॉर यू टू गो. सिजलिंग तंदूरी प्लैटर्स, रिच करीज, सारी नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स जो आपके हैं वो होम स्टाइल पंच के साथ आपको मिलेंगे. तो जी हर प्लेट, हर डिश जो है वो ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल घर का खाना हो. और ख़ास तौर पे जब कभी हमारे घर मेहमान आते हैं और दिल नहीं कर रहा होता खाना पकाने का, तो बाहर से ऑर्डर करें, लेकिन जो परोसना है खाना वो घर जैसा ही होना चाहिए. तो ये जगह है आपके पास तंदूरी फ्लेम लोकेटेड इन गार्लैंड. डू विजिट देम एंड चेक देम आउट. केटर कराइए, टेक आउट कराइए, वहाँ बैठ के खाइए. तमाम चीज़ें आपके लिए सहूलतें मौजूद हैं. अच्छा, तो ये तो हो गई आपके लिए ये बात. और ब्रेक, इस ब्रेक पे जाने से पहले और गाने पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि 72nd नेशनल फिल्म अवार्ड्स की अनाउंसमेंट्स हो चुकी हैं. जी हाँ, कौन कौन जीता है इस बार वो अवार्ड्स, ये अनाउंसमेंट्स दे दी गई हैं. बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, ये सब बता दिए गए हैं. फंक्शन कब होगा इसका मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं है, लेकिन द 72nd नेशनल फिल्म अवार्ड्स जो कि प्रेजेंट करते हैं नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, वो अनाउंस्ड ऑन 18th of July, अभी दो हफ्ते पहले, इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस टू ऑनर द बेस्ट इंडियन सिनेमा ऑफ 2024. ये आप नंबर याद रखिएगा, 2024 की फिल्मों की यहां पे बात हो रही है. देयर वर 400 एंट्रीज इन द फीचर फिल्म कैटेगरी, 161 एंट्रीज इन द नॉन फीचर फिल्म कैटेगरी, 38 बुक्स नॉमिनेट हुई, 24 क्रिटिक्स सबमिशन आई, द पॉलिटिकल, और फिर क्या हुआ ये मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी. तो ये सब सबमिशंस थी. अब जब हम इस गाने से वापस आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या हुआ और कौन कौन जीता और क्या नई नई खबरें आई इस से. और इस साल के नेशनल फिल्म अवार्ड में हिंदी लैंग्वेज फिल्म यानी कि बॉलीवुड फिल्म के एक स्टार जिन्हें हमने शायद शुरू शुरू में उनको थोड़ा सा नेपोटिज्म का सामना भी करना पड़ा और परेशानियों का और फेवरेटिज्म का सामना भी करना पड़ा, बट दिस गाय स्टूड आउट अमंगस्ट ऑल.

जी हाँ, बताती चलूँ आपको कि जो अनाउंसमेंट्स हुई हैं नेशनल फिल्म अवार्ड्स की, उसमें बेस्ट फीचर फिल्म प्रमोटिंग नेशनल सोशल एंड एनवायरमेंटल वैल्यूज मिली है जी तमिल फिल्म को, एंड दैट फिल्म इज कैप्टन मिलर. लेकिन बेस्ट फीचर फिल्म टोटल ओवरऑल जिस फिल्म ने जीता, दैट वाज अ बॉलीवुड फिल्म जिसका नाम है आर्टिकल 370. आर्टिकल 370 जिसे आदित्य सुहास ने डायरेक्ट किया था जी, और हमें इसमें नजर आई यामी गौतम और प्रियामणि. यामी इज एन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट एक्ट्रेस. डे बाय डे विद मूवीज आफ्टर मूवीज शी इज प्रूविंग हर सेल्फ टू बी अ स्टार ऑफ परफॉर्मेंस. ना सिर्फ आर्टिकल 370 बल्कि अभी जो उनकी मूवी नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई हक, मुझे तो ऐसा लगता है कि हक के लिए भी उनको कोई ना कोई नॉमिनेशन जरूर मिलनी चाहिए फॉर हर ब्रिलियंट ब्रिलियंट परफॉर्मेंस. अच्छा जी, इसी के साथ बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ अ डायरेक्टर, हिंदी फिल्म सत्यन सवतन्यार वीर जो है उनको मिली. रणदीप हुडा इसके अवार्डी थे. और साथ ही साथ बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट वॉज अ तेलुगु फिल्म काल्की 2898 AD. बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म मिली तेलुगु फिल्म 35 चिन्ना कथाकारु को, जबकि बेस्ट डायरेक्शन भी एक तमिल फिल्म ने जीता विच वॉज अमारन. तो ये थे बेस्ट फिल्म्स और बेस्ट जो है, और इसको कहा जाता है गोल्डन लोटस अवार्ड, यानी कि स्वर्ण कमल जिन्हें मिलता है, और साथ ही साथ सर्टिफिकेट भी मिलता है और कैश प्राइज भी मिलता है. सो आर्टिकल 370 वाज द बेस्ट फीचर फिल्म. और इसी के साथ जो बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल का जो अवार्ड मिला, वो दो एक्टर्स में स्प्लिट हुआ. वन वॉज अ मलयालम एक्टर, जबकि दूसरे हैं जो हम अभी बात कर रहे थे, कार्तिक आर्यन. चंदू चैंपियन फिल्म के लिए कार्तिक आर्यन ने जीता है बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल नेशनल फिल्म अवार्ड, जो कि अनाउंसमेंट्स में अभी नजर आया है, जबकि बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल जीता यामी गौतम ने फॉर द मूवी आर्टिकल 370. तो ये हुए जी यामी गौतम और साथ ही साथ कार्तिक आर्यन, जिन्होंने इस बार की अनाउंसमेंट्स में नजर आया है कि जीता है बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस का रोल. अब यामी गौतम की बात हो रही है तो आर्टिकल 370 से ही आपके लिए ये गाना लगाती हूँ.

और इस सारे में भूल भुलैया 3 का भी एक नाम सुनाई दिया, और वो किसके लिए? बेस्ट साउंड डिजाइन के लिए भूल भुलैया 3 को मानस चौधरी को मिला ये अवार्ड। सो भूल भुलैया 3 का एक गाना आपके लिए लाइंड अप है, लेकिन वो प्ले करने से पहले आपको बताती चलूं जी कि PMJ ज्वेलर्स अब फ्रिस्को में खुल चुके हैं, ब्रिंगिंग ओवर 60 ईयर्स ऑफ ज्वेलरी एक्सलेंस और टाइमलेस इंडियन क्राफ्ट्समैनशिप। आप एक्सप्लोर कीजिए PMJ ज्वेलर्स को, यू विल फाइंड स्टनिंग गोल्ड डायमंड एंड ब्राइडल कलेक्शंस। चाहे कैसा भी आपका सेलिब्रेशन हो, कोई भी माइलस्टोन हो, जो भी आपने जेवर खरीदने का आपका रीजन हो, यू विल फाइंड समथिंग फॉर योरसेल्फ व्हिच इज़ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। और PMJ ज्वेलर्स इज प्राउडली एसोसिएटेड विद महेश बाबू एंड सितारा। PMJ इज द नेम दैट इज ट्रस्टेड by generations. तो आप जरूर विजिट कीजिए PMJ ज्वेलर्स, फ्रिस्को में लोकेटेड हैं ऑन मेन स्ट्रीट, और देखिए कि किस तरह के वो ज्वेलरी पीसेस आपके लिए कैरी करते हैं। इट्स लाइक एवरी पीस हैज अ स्टोरी टू टेल। ऑल यू हैव टू गो डू इज गो टू PMJ ज्वेलर्स इन फ्रिस्को एंड लिसन टू दैट स्टोरी।

जी हाँ, भूल भुलैया 3 से सुन रहे थे ये गाना। और ब्रेक की तरफ जाते हुए, क्योंकि फिल्मी फरमाइश का सिलसिला जारी है, तो चित्रा जी की रिक्वेस्ट पे ये गाना आपके लिए प्ले कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताती चलूं कि सेलिब्रेट इंडियाज़ इंडिपेंडेंस डे एट IANT's आनंद बाजार 2026। इट इज़ हैपनिंग ऑन सैटरडे August 15th को है जी, 2 बजे से ऑनवर्ड्स, दोपहर 2 बजे से ऑनवर्ड्स एट कमेरिका सेंटर फ्रिस्को। और अगर आप सोच रहे हैं कि इतनी गर्मी में ये सब कैसे होगा, तो जी बिल्कुल परेशानी की बात नहीं है, बिकॉज अंदर है, इंडोर इवेंट है और बिल्कुल फ्री है, कोई टिकट भी आपको नहीं लेना। सो ये हुआ आपके मसले का हल। एंजॉय कीजिए, ऑथेंटिक फूड, ग्रैंड परेड होगी, कल्चरल परफॉर्मेंसेज होंगी, लाइव म्यूजिक है। अगर आप शॉपिंग के दीवाने हैं तो शॉपिंग का पूरा इंतजाम होगा आपके लिए इस मेले में। अपने दोस्तों के साथ आइए, अपनी फैमिली के साथ आइए, ब्रिंग योर फ्रेंड्स एंड बी अ पार्ट ऑफ नॉर्थ टेक्सास बिगेस्ट इंडिपेंडेंस डे, इंडियाज इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। दिस इज IANT Anand Bazaar 2026. See you there. Chitra ji, this is for you.

जी हाँ, इस आखिरी घंटे का आगाज़ हम इसी दुआ से करते हैं, मुझको भी लिफ्ट करा दे, बंगला मोटर कार दिला दे. सुन रहे हैं आप आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण. दिस इज़ 104.9 FM फन एजर रेडियो, आपकी पसंद, आपके मनपसंद रेडियो स्टेशन पे आपकी मनपसंद आरजे के साथ. मंडेज इज़ कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू यू एंड योर चॉइसेस. 90s से आगे का कोई गाना आप मेरे से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज हर रोज़ एक नया फ्लेवर होता है और हर रोज़ एक नई थीम के साथ हाजिर होती हूँ यहीं आपके सामने ऑन योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम. अच्छा जी, अब लेके आई हूँ आपके लिए एक गिव अवे, और गिव अवे आया है चंडीगढ़ बाइट्स की तरफ से. सो आपके पास ये मौका है टू विन $10 ऑफ ऑन योर डाइन इन बिल ऑफ $50 और मोर. तो जाइएगा आप तो चंडीगढ़ बाइट्स पे, इफ यू स्पेंड $50 यू विल गेट $10 ऑफ. प्लस एंजॉय कर सकते हैं आप द स्पेशल थाली जो कि मंडे थ्रू फ्राइडे वो लोग प्रोवाइड करते हैं विद एक्साइटिंग न्यू डिशेज रोटेटिंग डेली फॉर लंच ओनली. तो चंडीगढ़ बाइट्स वैसे भी विजिट कीजिए, उनकी लंच की थालीज हर रोज रोटेट होती हैं, उनमें डिशेज रोटेट होती हैं. दे आर लोकेटेड ऑन मैकडर्मट ड्राइव इन एलन. इसी के साथ आप उनकी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं इफ यू हैव टू चेक आउट देयर मेन्यू और एनी अदर specials that are going on. That website is chandigarhbites.com. Note कर लीजिए एक बार website फिर से chandigarhbites.com. अच्छा जी, ये तो हुआ ये. अगर आप पिछले एक महीने में ये गिव अवे किसी और शो पे फन एशिया के जीत चुके हैं तो प्लीज थोड़ा वेट कर लीजिए. यू कैन ओनली बी अ विनर वंस अ मंथ एट चंडीगढ़ बाइट्स. यू हैव दिस चांस ऑफ विनिंग $10 ऑफ योर $50 और मोर डाइन इन बिल. अच्छा, सवाल क्या है? अभी मैं आपको बता रही थी कि 72nd नेशनल फिल्म अवार्ड्स की अनाउंसमेंट्स हो गई हैं और यामी गौतम ने जीत लिया है इस बार का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड फॉर नेशनल फिल्म फॉर द मूवी आर्टिकल 370. ये बात तो हो गई. आप मुझे कॉल करके बताइए कि कौन सी वो मूवी थी, उस मूवी का नाम बताइए और किसके साथ यामी गौतम आई थी जिसके लिए उन्होंने बहुत सारी नॉमिनेशंस पाई और बहुत और जीता भी कुछ जगहों पे बेस्ट फीमेल डेब्यू का अवार्ड. व्हाट वाज द फर्स्ट बॉलीवुड मूवी जिसके लिए शी गॉट नॉमिनेटेड एट मेनी प्लेटफॉर्म्स एंड वन अ लॉट ऑफ बेस्ट डेब्यू अवार्ड. सो 972-235-5555 है वो नंबर जहां आपने मुझे कॉल करके ये जवाब देना है टू विन दिस चंडीगढ़ बाइट्स $10 ऑफ ऑन योर डाइन इन बिल ऑफ $50 और मोर.

ऑलराइट जी, पानी दा रंग, वैसे ये गाना तो आपने सुनते ही, मैंने जो सवाल पूछा था उस मूवी का गाना भी लगा दिया था, इससे ज्यादा आसान नहीं मैं कर सकती। चंडीगढ़ बाइस की तरफ से ये $10 ऑफ आपके लिए आया था ऑन योर डाइन इन बिल ऑफ $50। एंड सवाल था कि यामी गौतम, जो इस बार नेशनल अवार्ड जिनको मिला है, उनकी पहली फिल्म यानी कि डेब्यू फिल्म कौन सी थी जिसके लिए उन्होंने, डेब्यू फिल्म के लिए भी बहुत सारे अवार्ड्स जीते भी थे और नॉमिनेट भी हुई थी वो, तो डेब्यू मूवी का नाम पूछा था जी। और आप सबकी फोन कॉल्स का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले डेब्यू मूवी का नाम बता देते हैं, विक्की डोनर वॉज द मूवी जिसमें यामी गौतम हमें पहली बार नजर आई थी आयुष्मान खुराना के साथ। और विक्की डोनर मूवी जो थी वो भी मैं आपको बताती चलूं कौन से सन में रिलीज हुई थी, इट वॉज 2012। आप सबकी फोन कॉल्स का शुक्रिया। और आज की जो हमारी लकी विनर है वो है सईदा वहाद। सईदा जी, कांग्रेचुलेशन, 2 दिन का हमें टाइम दीजिए आपका नाम और नंबर रेस्टोरेंट यानी कि चंडीगढ़ बाइट्स पे पहुंचाने के लिए। दे आर लोकेटेड ऑफ मैकडर्मट ड्राइव इन एलन और आपके पास अराउंड 6 से 7 दिन का टाइम है। आफ्टर दैट, आफ्टर द 2 डेज टू गो टू चंडीगढ़ बाइट्स एंड अवेल योर $10 ऑफ योर $50 बिल। और आप तमाम लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, थैंक यू सो मच। फनीजा इस तरह के बहुत सारे गिव अवेज आपके लिए लेकर आता है। ऑल यू हैव टू डू इज स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड।

अच्छा जी, जैसे ये मूवी आप मैं हूं ना का गाना सुन रहे थे, जिसमें शाहरुख खान और जायद खान की अमेजिंग ब्रदरली केमिस्ट्री थी. और शाहरुख खान तो खैर अपना सारा काम शाम छोड़ के आ जाते हैं इस यूनिवर्सिटी में, कॉलेज ज्वाइन करते हैं अपने भाई के साथ रहने के लिए, और वैसे तो अंडरकवर ऑपरेशन के लिए आते हैं, बट साथ साथ भाई भी मिल जाता है, और फिर क्या होता है वही कहानी है. तो ऐसे ही अगर आपकी भी भाई बहन के साथ अपनी कोई अनफॉरगेटेबल मेमोरी है, तो रक्षाबंधन आ रहा है जी, एंड दिस रक्षाबंधन फाइनेंशियल रेडियो इन चौक टाउ कैसीनो एंड रिजॉर्ट ड्यूरेंट सुनना चाहते हैं आपकी अनफॉरगेटेबल मेमोरी विद योर ब्रदर और सिस्टर. और आपको क्या करना है, आपको करना है जी 1 मिनट की वॉइस नोट रिकॉर्ड करनी है. इस सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि आप जीतेंगे क्या. डेली एक्साइटिंग प्राइजेस हैं, इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टे, और साथ ही साथ ग्रैंड प्राइज भी है, जो सबसे बेस्ट कहानी लगेगी ना उनको, उनको मिलेगा जी एन अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौक टाउ कैसीनो एंड रिजॉर्ट इन ड्यूरेंट. तो आपने 60 सेकेंड्स की अपनी एक वॉइस नोट बनाना है, 1 मिनट का जो के, और उसको व्हाट्सएप करना है इस नंबर पे, और उस नोट में आपने क्या बताना है, द अनफॉरगेटेबल मोस्ट अनफॉरगेटेबल मेमोरी बिटवीन विद योर ब्रदर और योर सिस्टर. और आपने इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है 2148377147. नंबर एक बार फिर नोट कीजिए, 2148377147. इस पे आपने व्हाट्सएप कर देना है और आप जीत सकते हैं डेली प्राइजेस एज वेल एज यू माइट जस्ट बी द विनर ऑफ द ग्रैंड प्राइज एज वेल. कंप्लीट कॉन्टेस्ट डिटेल्स आपको फाइनेंशियल रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस पे मिल जाएंगे. तो अगर आप अभी तक हमें फॉलो नहीं करते तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह पे हमें फॉलो कीजिए. चौक टाउ कैसीनो एंड रिजॉर्ट इन ड्यूरेंट, दिस इज अ प्लेस वेयर यू मेक अनफॉरगेटेबल मेमोरीज. यू हैव टू बी 21 ईयर्स और ओल्डर टू पार्टिसिपेट. Terms and conditions apply, and please play responsibly.

A very good evening to the listeners of Fun Asia Radio 104.9 FM. This is your host Bandhan Das, Marvin Das, and I'm with you Monday to Thursday, 5 to 7 p.m. Bringing the community together is what we stand for, and I will give you company on 104.9 FM. Fun Asia Radio is your favorite station, and main rakhunga ji aapko full on entertainment ke saath 7 baje ke saath rahunga aapke saath saath. Want to thank the Almighty for yet another opportunity where I am able to come here. Kuch apni baatein sunaunga yaar, kuch aapki sununga, aur isi tarah is प्यार भरे दो घंटे की जर्नी को जी हम जबरदस्त तरीके से एंजॉय करेंगे. ऑफ कोर्स माय स्टूडियो लाइंस आर ऑलवेज ओपन फॉर यू गाइस. बर्थडेज हो, एनिवर्सरीज हो, कोई भी खुशी की बात आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, और जस्ट लाइक मी सेलिब्रेटिंग वन मोर डे दैट गॉड हैज गिवन मी, बिकॉज आई नो अ लॉट ऑफ पीपल माइट नॉट हैव दिस चांस एट लाइफ, एंड इफ दे डू दे माइट नॉट बी फुल ऑफ एवरीथिंग फाइन एंड गो, यू नो सब कुछ अच्छा है ना, दोनों लातें चलती हैं, दोनों हाथ चलते हैं, आंखों से दिखता है, उस मुंह से हम टेस्ट करते हैं क्या खूबसूरत चीजें जो इस दुनिया में हमारे लिए उस उपवाल ने बनाई हैं. सो थैंकिंग हिम, एंड ऑफ कोर्स नए गानों से रखूंगा जी आपको एंटरटेन, कुछ पुराने भी चलेंगे. दैट्स हाउ आई प्लान माय मिक्स, बट यू आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट पार्ट. अगर नया गाना आपने सुनना है, गिव मी अ कॉल. 5:12 इन द स्टूडियो क्लॉक. मंडे हो चुका है जी, ब्रांड न्यू मंथ, एंड टुडे इज ऑगस्ट 3rd. सो दो बातें स्पेशल हैं जी. कल ऑगस्ट 2nd इट वॉज माई वाइफ्स बर्थडे, एंड आई टुक हर फॉर अ हेलीकॉप्टर राइड. चलो आज आपको हेलीकॉप्टर की सैर कराएं. सो वी हैड फन देयर. इट्स डेफिनेटली एन एक्सपीरियंस. इफ यू हैवन सीन इट, गो एंजॉय दैट. एंड टुडे मार्क्स अनदर डे व्हिच आई विल नेवर फॉरगेट इन माय लाइफ. टुडे मार्क्स द बर्थ रादर द डेथ एनिवर्सरी ऑफ माय मॉम. उनका नाम शादी से पहले सतनाम कौर था, शादी के बाद हुआ प्रीति दास, एंड शी पास्ड अवे एट द एज ऑफ 59 इन 2019. इट्स बीन 7 years. बट वो कहते हैं ना कि वक्त के साथ साथ ठीक हो जाता है जी, वक्त के साथ ऐसा हो जाता है जी, वक्त के साथ. देखो कुछ नहीं होता यार. ऑल यू डू इज यू लर्न टू हैंडल योर पेन, यू लर्न टू हैंडल योर सॉरो. बट आई थिंक ये जो एक गैप है विच योर पेरेंट्स लीव, आई डोंट थिंक इसको कहीं कोई भी भर सकता है. एंड आई ऑलवेज व्हेन आई गेट अप आई हैव हर फोटोग्राफ एज माई प्रोफाइल पिक्चर ऑन व्हाट्सएप. तो हर सुबह जब मैं उठता हूँ, पहले आज भी उनका चेहरा देखता हूँ, एंड आज भी यही समझता हूँ कि मैं जो भी हूँ, आई वॉन्ट टू थैंक हर एंड माई फादर कि वो मिले, उनसे मेरी इंसेप्शन हुई. एंड आई डोंट थिंक मैं इसके अलावा कहीं और जन्म लेना चाहता. अगर कोई और जन्म है और फिर से माँ बनेगी, तो मेरी माँ वही बनेगी जो मेरी माँ है, थी और हमेशा रहेगी. मॉम आई लव यू अ टन अ लॉट, एंड आई नो और इस विश्वास से जीता हूँ कि एक ना एक दिन मैं तुझसे फिर मिलूंगा. तब तक के लिए ये गाना दिल से तेरे लिए माँ. हियर वी गो.

0: पता।
1: And I think हर माँ को वो सब कुछ पता होता है जो उसको हमें लगता है कि शायद उसको नहीं पता। But she always knows your heart in and out। क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, कहाँ आप सैड हो, क्या चीज़ें आपको बॉदर कर रही हैं। And when this part of your life goes away, it does create that gap which will never be gone, but it will always remain with you in good memories। यार जो दुआएं और जो प्यार मुझे जो आप सबको अपनी माँ से मिला है, शायद ही किसी और से मिले। सो आई जस्ट वॉन्ट लेट यू नो दैट बड़े प्रेशियस एक जिंदगी जो हमारी है, इसमें सब कुछ ही प्रेशियस है यार। बी दैट योर ओन लाइफ, योर वाइफ, योर किड्स, योर डॉग्स, योर फ्रेंड्स, योर मॉम, योर डैड, ये दोबारा कभी नहीं आने वाले। एक बार गए तो गए, तो जब तक हैं उनका खूब ख्याल रखो यार। स्पॉइल देम टिल यू कैन। यू नो मैं थोड़ा सा रिजर्व था एज अ चाइल्ड। आई वॉज वेरी लविंग टूवर्ड्स माई मॉम। मम्मा के बिना कहीं नहीं जाना, मम्मा ने कहीं जाना तो मैंने साथ जाना। बट एज आई ग्रो अप आई स्टार्टेड बींग रिजर्व। मैं आई वॉज नॉट वेरी फिजिकली इमोशनल। मैं उनको किस नहीं करता था, ज़्यादा हग नहीं करता था, जबकि मेरा भाई वो करता था। एंड आज जब वो नहीं है तो बस दिल करता है कि पकड़ूँ एंड गो शो हर माई लव, बट यू कांट डू दैट। तो भाई और बहनों जो भी सुन रहे हो यार, जितने भी आपके करीब वाले हैं ना, ये लड़ाई झगड़ा, ये दुख तकलीफ सबकी लाइफ में, ट्राई टू लर्न टू फॉरगेट देम एंड जस्ट रिमेंबर द ब्यूटीफुल मेमोरीज पीपल लीव फॉर यू ऑल। एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद मैं वापस आ रहा हूँ। यस, आई एम अ लिटिल लाइट हार्टेड हियर, बट इन ऑल गुड, बिकॉज व्हाट आई हैव लर्नड फ्रॉम द पर्सन दैट लेफ्ट मी विल ऑलवेज स्टे विद मी। लव यू मा, एंड टू ऑल द अदर मॉम्स, आई विल बी राइट बैक।
2: If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
3: Ocho.
4: Hoko.
3: Ocho.
4: Hoko.
3: Ocho.
4: It's Hoko.
5: अरे बस भी करो यार।
4: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है।
5: नाम होको हो या होचो क्या फर्क पड़ता है। एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूरी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करीज, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना, फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा।
6: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक होको अब फ्रिस्को में। वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिएड केटरिंग ऑप्शंस। टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज।
7: अरे यार घर मिल गया।
8: घर तो देख रहा हूँ, लेकिन इट्स हार्ड टू फाइंड अ रियल्टर हु ऑफर्स ग्रेट सर्विस एंड आल्सो कैशबैक एट क्लोजिंग।
6: इसलिए कॉल करो अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट। अजय इज एन एक्सपीरियंस्ड रियल्टर। वो सिर्फ घर नहीं दिखाते, हर प्रॉपर्टी का ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं, प्रोज एंड कॉन्स समझाते हैं, बेस्ट प्राइस नेगोशिएट करते हैं, बिल्डर इंसेंटिव दिलवाते हैं और क्लोजिंग पर कैशबैक भी।
8: सीरियसली, अच्छे सर्विस भी और कैशबैक भी।
6: बिल्कुल, विजिट ajayprabhu.com एंड सी व्हाई सो मेनी पीपल आर रेविंग अबाउट हिम।
9: यार मेरे फोन में हम दोनों के कितने सेल्फीज है यार।
6: तो चल उन सेल्फीज से पिज़्ज़ास खाते हैं।
9: व्हाट,
10: दिस फ्रेंडशिप डे ब्रिंग योर फ्रेंडशिप टू फन पिज़्ज़ा किचन। पोस्ट अ सेल्फी विद योर फ्रेंड्स ऑन इंस्टाग्राम, टैग फन पिज़्ज़ा किचन एंड एंजॉय 10% ऑफ योर बिल और अ फ्री गार्लिक ब्रेड। ऑफर वैलिड टिल ऑगस्ट 3rd। विजिट funpizzakitchen.com फॉर मोर डिटेल्स।
11: इस रक्षाबंधन चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी एंड ए लाइफ टाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड। अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837-7147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फनीशा रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस।
6: चौक टॉक कैसीनो एंड रिसॉर्ट डुरांट, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर। मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। प्लीज प्ले रिस्पांसिबली।
12: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
13: कुछ भी नहीं, Ura Debt Relief will do it for us.
12: क्या मतलब?
13: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
12: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
13: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
0: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
3: Don't let debt ruin your life. Visit Ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
14: Experience peace, music and meditation with Archana Didi at a free 3-day retreat in DFW. Join us on August 7th at Bharatiya Nivas in Richardson, August 8th and 9th morning at Sri Raghunath Temple in Plano, and August 8th evening at DFW Hindu Temple, Ekta Mandir in Irving. Enjoy meditation, soulful music and free vegetarian prasad.
15: Proudly supported by Roma Pithadia, Sri Vimal, Shankar Vilas, Payal Dance Class, Rajula's Kitchen, Fun Pizza Kitchen, Raghunath Temple, DFW Temple and Fun Asia.
14: Register free now at meditation.funasia.net.

बहुत सारी चीजें लाइफ में एक्सटिंक्ट हो जाती हैं यार, चली जाती हैं। उसमें से कभी पेरेंट्स होते हैं, फिर एक नेचर की फिलॉसफी होती है कि एनिमल्स भी एक्सटिंक्ट हो गए, जैसे कि डायनासोर। अब डायनासोर के अलावा एक और प्रजाति है जो इंस्टिंक्ट होती जा रही है धीरे धीरे, वो पिछली जेब में कंघी रखने वाले हैं ना, वो भी जा रहे हैं यार। पर अगर आपके घर में अभी भी कोई है जो पिछली जेब में कंघी रखता है, छोटी वाली है जी, जहाँ पहुँचते हैं वहाँ एक बारी बालों को सहलाते हैं और कंघी बनाते हैं, उनको जरूर एक जोर से हक दे देना और बोलना स्टे ब्लेस्ड मैन। मेरे दादा की आदत ही होती थी कि उस टाइम पे ये भी होता था कि मोटरसाइकिल और टू व्हीलर पे जाते जाते थे लोग, तो हेलमेट पहनते थे, हेलमेट पहनते तो बाल खराब हो जाते थे। तो मेरे दादा बड़े स्टाइलिश आदमी थे, उनकी बैक पॉकेट में या उनकी कोट की पॉकेट में एक छोटी कंघी रहती थी, और फिर उन्होंने उतर के पहले शीशे में देख के अपने बालों को करना सेट, और फिर बाकी बातें होती थी जनाब। 5:25 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में, और माफी चाहूंगा अगर मैंने आपको थोड़ा इमोशनल किया। पर्पज ही ये था यार कि दिल की बात अगर दिल तक ना पहुंचे तो वो बात ही क्या हुई, है ना। एंड आई ऑनेस्टली वांट यू गाइस टू जस्ट लव एवरीथिंग अराउंड यू। यार ये नफरतों का क्या है? हमने स्यापा डाला हुआ है ना कि उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया। अरे वो बात हो गई, चली गई, खत्म हो गई। अब यहां से आगे क्या है, उसको बेहतर करना चाहिए, एंड वो बेहतरी सिर्फ हमारे हाथ में है। बट इफ यू आर एवर इन्वॉल्वड इन एक्सीडेंट, या अगर आपका स्लिप एंड फॉल हो जाए, जो कि मैं दुआ मांगता हूं कभी भी ना हो, बट इफ यू आर इन दैट ट्रबल, गिव अ कॉल टू अटर्नी ओमर ख्वाजा, या फिर उनकी वेबसाइट पर जाइए attorneyomar.com, एंड दैट्स वन नेम यू हैव टू रिमेंबर। कभी भी अगर ये मुसीबत आपके सर पे आन पड़े तो आपने सिर्फ वेबसाइट पे जाके अटर्नी ओमर गूगल करना है, उनका नंबर ढूंढना है बिफोर यू कॉल द इंश्योरेंस कंपनी। ऑफ कोर्स यू कॉल 911, मेक श्योर यू आर सेफ। जैसे ही आप सेफ हैं, पहला काम आप अटर्नी ओमर को कॉल करेंगे, ही विल फाइट फॉर यू, ही विल मेक श्योर कि जो भी ड्यू कॉम्पनसेशन आपको बनता है, चाहे वो आपका जॉब लॉस है, चाहे आपकी गाड़ी का नुकसान है, आपकी सेहत का नुकसान है, ही विल मेक श्योर दैट यू आर वेल कॉम्पनसेटेड, एंड दैट इज attorneyomar.com। एक गाना और, माँ को याद कर ही रहा हूँ, आप लोगों को भी वहाँ तक ले ही गया हूँ, तो क्यों ना एक प्यारा सा गाना और, जस्ट फॉर एवरीबॉडी हु लव्स देयर मॉम सो वेरी मच, टू ऑल द मॉम्स दैट आर हियर, to all the moms that are gone, and to all their kids who love them so much. This one's for you too.

Beautiful track, and to all the beautiful moms out there, you know, if you're here, very good. If you're not, you are always loved and missed, mom. चाहे किसी की भी माँ हो, जब वो जाती है तो उसकी याद तो हमेशा आती है. हाँ, कुछ दिन ऐसे होते हैं जब वो याद का जो दर्द है वो और बढ़ जाता है, especially when it's their birthday or the day they passed away, and today happens to be 3rd of August, which is in 2019, the day I lost my mother. But I just lost her in the physical format, okay? उनका दिल, उनकी रूह, उनका जो प्यार है वो मुझ में है, एंड आई एम हर क्रिएशन. सो आई थिंक जो उन्होंने चीज़ बनाई है, अगर आप लोग सहमत हैं तो मैं भी अच्छी चीज़ ही बनाया हूँ, उस सुपर वाले का बनाया हुआ, बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स, दैट वॉज सो लवली. ऑलराइट, इट इज़ टाइम टू गो फॉरवर्ड एंड मूव ऑन इन लाइफ, एंड एज वी मूव इन लाइफ, यू नो, मेरे पेरेंट्स ने भी, मेरे माँ बाप ने भी जो भी किया वो इसीलिए किया कि हम लोगों को एक अच्छी लाइफ मिल सके. दैट इज़ मी, माई ब्रदर, एंड दैट्स ऑल यू स्ट्राइव फॉर टू, है ना? आप सब लोग इसी के लिए काम करते हो कि हाउ डू वी गेट अ बेटर लाइफ फॉर आर किड्स, एंड हाउ डू वी नो दैट दे आर सेफ व्हेन दे आर गॉन. वेल, उसके लिए एक चीज़ लगती है जिसको बोलते हैं वर्किंग टूवर्ड्स योर एसेट प्रोटेक्शन. दैट इज़ वर्किंग टूवर्ड्स मेकिंग श्योर दैट यू हैव अ प्लान on how you can seamlessly pass your assets to the children. And every time we think, kar lenge yaar, ho jayega yaar, mujhe sab pata hai. Aapko to sab pata hai, par waqt ka kisi ko nahi pata. And most people think, once they sign a trust, everything is complete. Is that really what it is? Let me get Geeta on the line for you, Deepthi rather, on the line for you. Usse pehle ek gana ye, and I'm going to bring back Deepthi on Funasia from NRI Wealth, who's going to tell you more about this, कि क्या एक ट्रस्ट साइन कर लिया और फिकर खत्म. बताता हूं right after this one.

0: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, ये बॉक्सेस उठा ले रे।
1: अरे बॉक्सेस उठाने के लिए बाबा को नहीं, स्मार्ट लोग SFL वर्ल्डवाइड को बुलाते हैं।
0: अच्छा, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भेजने हो तो?
1: डॉक्यूमेंट्स, बॉक्सेस, पूरा घर रिलोकेशन, इवन कार ट्रांसपोर्ट
0: इंडिया तक।
1: सिर्फ इंडिया नहीं, विद इन USA और वर्ल्डवाइड, कंप्लीट डोर टू डोर शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज।
2: SFL वर्ल्डवाइड, घर हो, गाड़ी हो या जिंदगी का नेक्स्ट मूव, सब सेफली पहुँचता है। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
3: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
4: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
3: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
4: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपरहिट।
1: प्रीतेश, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
5: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है।
1: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
5: वेट, व्हाट?
2: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है।
6: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ। मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग।
2: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए। कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन।
7: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया। ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस।
8: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
7: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
8: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
7: ये क्या होता है?
8: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
9: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस, सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
2: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन अवेलेबल।
10: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है, चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग। फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस। फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव।
11: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को। विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 469-333-1099.
12: Mention Fun Asia and get 50% off on tryout session.
13: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
14: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
15: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
16: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
15: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
17: Hey everybody, this is Asim and you're listening to the rocking music of my film only on Fun Asia Radio.

दिलजीत दोसांझ जिन्होंने वाकई में ही दुनिया भर का दिल जीत लिया है जनाब विद आलिया भट्ट इन दिस ट्रैक. दिस वाज एक कुड़ी उड़ता पंजाब वाज द नेम ऑफ द मूवी एंड द म्यूजिक वाज गिवन बाय द वेरी टैलेंटेड मिस्टर अमित त्रिवेदी. इट्स 5:47 इन द स्टूडियो क्लॉक 5:47 एंड यू आर गोना बी विद मी टिल 7 o'clock दिस इवनिंग. वंस अगेन थैंकिंग यू ऑल कि आप अपने इस बिजी स्केड्यूल में हमारे लिए भी वक्त निकालते हैं. यू टेक टाइम आउट टू लिसन टू अस. दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय हिमालयन बाजार जो कि आपके लिए ग्रैंड प्रेरी में आ चुका है. फॉर ऑल द पीपल इन ग्रैंड प्रेरी आर्लिंगटन मैंसफील्ड एरिया दिस इज अ ग्रेट न्यूज फॉर यू ऑल क्योंकि कहाँ आपको कोस कोस दूर इतने पता नहीं कितने किलोमीटर साइकिल स्विमिंग करके जाना पड़ता था ग्रोसरी लेने के लिए बट आपको वो बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा भैया. राइट नाउ यू हैव दिस ग्रेट स्टोर दैट हैज कम योर वे and is right at the intersection of Highway 20 and Highway 360. Grand Prairie ke bilkul dil mein basta hai ji. Himalayan Bazaar, HB. Himalayan Bazaar, Google karenge, you'll get all the information. But I'll give you their address. It's 5103 Magna Carta Boulevard in Grand Prairie. Bahut paas hai from 20 and 360. South Asian Grocery Stores ka naya hub ban chuka hai ji. Fresh produce ho, halal meat ho, ya water buff for my Nepalese people. You get it all there. And that too, very fresh, just minutes from Mansfield and Arlington. आप अगर local area में रहते हैं, within a 5-mile radius रहते हैं, then you need to get with their delivery program. Because अगर आप within a 5-mile radius रहते हैं, you'll get free delivery on orders that are $50 or more. When you spend a dollar, you get 1 point for each dollar. That gives you 5% off the moment you hit 100 points. Himalayan Bazaar, bringing the taste of home closer to you. And अगर शाम को पकौड़े खाने का दिल करे, गर्मा गर्म समोसे खाने का दिल करे, साथ में गर्म गर्म चाय, तो भैया नो टेंशन बिकॉज आपके लिए ये सब कुछ वो बनाते हैं ताज़ा. ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट गूगल द नेम हिमालयन बाजार ग्रैंड प्रेरी एंड यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन दैट यू नीड. फॉर नाउ इट इज अ गाना फ्रॉम द मूवी. अरे अरे कहाँ से भाई इतना जल्दी क्यों होती है गानों को भैया रुको तो सही बात तो करने दो यार. लो अब सुनो ये गाना. Right after this track, I have a giveaway coming up from Foodistan, right here in Aubrey

Magical was the name of this track taken from the movie Alpha. You know, I loved Alpha, yaar. Maine film dekhi hai, bahut maza aaya. If you haven't seen it, go check it out. I think one time watch, do bari bhi dekh sakte ho, teen bar bhi dekh sakte ho. But I think jo isme maza aaya, wo mujhe storyline ka aaya, mujhe acting ka aaya. And I think the girls did a great job. Bobby Deol, as always, great acting. But I think जो मसाला चाहिए होता है ना एक फिल्म को एंटरटेनमेंट के साथ देखने के लिए, वो पूरा मसाला इस फिल्म में था. ऑलराइट, नाउ पीपल इन ऑबरी, वो कहते थे यार ऑबरी में रहते हो मार्विन, आप वहाँ की कोई डील क्यों नहीं लाते? ले आए आपके लिए. पहले तो आपको ये बता दूं कि फूडिस्तान इज नाउ ओपन फॉर यू इन द हार्ट ऑफ ऑबरी. इफ़ यू लुकिंग फॉर फ्रेश इंडियन ग्रोसरीज इन दिस साइड ऑफ टाउन, ऑबरी, प्रॉस्पर, लिटिल एल्म, तो 380 पे खुल चुका है जी फूडिस्तान. फ्रेश प्रोड्यूस, बेकरी आइटम्स, लाइव पानीपुरी, फ्रेश गन्ने का रस, जियस पिया जियस, गन्ने का ताजा जियस वहीं पर मिलेगा जी आपको. केटरिंग सर्विसेज and an upscale dining experience. You need to visit Foodistan in Aubrey. And they also have a restaurant right next to them, which is, of course, D-Vibe. It's D-E, the letters D-E, D-Vibe, V-I-B-E. But Foodistan, your restaurant, it is in the same complex as D-Vibe. And the Foodistan in Aubrey offers you a price match guarantee on grocery and free delivery if you have $30 or more ka order. Aubrey mein jo, ये फूडिस्तान है, $30 की डिलीवरी ऑर्डर पे कोई भी डिलीवरी फीस नहीं लेगा विद इन अ 5 mile रेडियस. अब इसके ऊपर अगर आप मेंशन करेंगे फनेजिया तो आपको 10% का डिस्काउंट और मिलेगा. नाउ इन द सेम कॉम्प्लेक्स ऑफ फूडिस्तान विच इज ऑन 380 इन ऑबरी, वहां पे आ चुका है जी डी वाइब रेस्टोरेंट. अब आपको मिल रहा है मौका इस ऑबरी के डी वाइब रेस्टोरेंट से एक आइटम ऑफ योर चॉइस एब्सोल्युटली फ्री. आपको कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है. इफ यू आर इन ऑबरी, इफ यू लिव इन प्रॉस्पर, इफ यू लिव इन लिटिल एल्म, आपको पता है मैं किस फूडिस्तान की बात कर रहा हूँ. इट्स राइट ऑन 380 ऑन द मेन हाईवे इन ऑबरी, एंड उसी के साथ ये डी वाइब रेस्टोरेंट है. नाउ इफ यू कैन गो टू डी वाइब, जैसे मैंने कहा प्रॉस्पर, ऑबरी, लिटिल एल्म, तभी आप इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिएगा. अदरवाइज

द मेन हाईवे इन ऑबरी, एंड उसी के साथ ये डी वाइब रेस्टोरेंट है. नाउ इफ यू कैन गो टू डी वाइब, जैसे मैंने कहा प्रॉस्पर ऑबरी लिटिल एल्म, तभी आप इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिएगा. अदरवाइज आई वांट टू गिव दिस टू समबडी, यू कैन गो टू डी वाइब रेस्टोरेंट इन ऑबरी एंड एंजॉय दिस फ्री आइटम ऑफ योर चॉइस. टुडे इज द बर्थडे ऑफ दिस एक्टर स्लैश टीवी होस्ट स्लैश एंकर मॉडल एंड सिंगर. बॉर्न ऑन द 3rd of August, आज ही के दिन, द ईयर वॉज 1981. इनका करियर शुरू हुआ था एज एन RJ एंड अ VJ. उसके बाद एक्टिंग लेने से पहले कुछ स्टैंड अप कॉमेडी भी किया एंड देन होस्टेड अ लॉट ऑफ इवेंट्स. He's recognized as one of the most prominent television anchors and hosts of his generation, celebrated for his charisma, versatility and engaging presentation style. Aaj ke din inka janmdin hua hai, and he is somebody who went on to host shows like Sunday Tango on Star Plus in 2002, remained a VJ with Zee Music and a radio jockey with Radio City's morning drive time show, Kasakai Mumbai. Do you know who I'm talking about? उन्हीं की फिल्म का एक गाना लगा रहा हूं. मिकी वायरस वॉज द फिल्म. आई मेड इट ईजी फॉर यू. कॉलर नंबर 3 हु गिव्स मी द राइट आंसर गेट्स देम. एक्चुअली ये तो ऑबरी का है ना, पता नहीं ऑबरी से कितने लोग सुन रहे होंगे. तो पहला इंसान जो मुझे देगा सही जवाब, वॉट इज द नेम ऑफ दिस एक्टर स्लैश VJ हु वॉज ऑल्सो अ रेडियो जॉकी फॉर रेडियो सिटी कसकाय मुंबई.

0: वाह रे वाह रे वाह, गाना लगाते ही कुछ बात करते, ये तो ऐसा हुआ घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में आ गए ये। गुड इवनिंग फनेजिया, कौन बोल रहे हैं?
1: केशव बोल रहा हूँ। हेलो मालवीन।
0: केशव,
1: यस
0: केशव जी कैसे हैं?
1: मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो?
0: मैं भी बढ़िया हूँ मालिक, खा के सुबह बढ़िया हो गया मैं। बढ़िया बढ़िया होती है हमारे पंजाब की स्पेशल डिश। एनीवे केशव भाई, आपको मालूम है मैं किसकी बात कर रहा हूँ?
1: यस मनीष पॉल।
0: मनीष पॉल। ये आपने कैसे बताया कि मनीष पॉल?
1: निकी वायरस मनीष पॉल की मूवी है। हाँ
0: निकी वायरस मनीष पॉल की मूवी है। केशव भाई ये बताइए कि आप ओबरी जा सकते हैं?
1: जा सकते हैं।
0: वाह क्या बात है यार, फिर तो ये इनाम आपका हुआ जनाब। एब्सोल्युटली इट इज नन अदर देन मिस्टर मनीष पॉल, जिनका आज के दिन होता है जी जन्मदिन। यू विल होल्ड माई द लाइन फॉर मी केशव भाई, आई टेक योर डिटेल्स ऑफ द एयर। बट इफ आई टेल यू, केशव साहब वॉज बॉर्न इन दिल्ली, एंड दिल्ली में पैदा होने के बाद बहुत सारा काम स्ट्रगल किया। जैसे कि मैंने कहा, स्टार प्लस पे एक शो आया था संडे टैंगो 2002 में, देन एक वीजे रहे जी म्यूजिक के साथ, एंड देन रेडियो सिटीज मॉर्निंग ड्राइव टाइम शो कसक आए मुंबई। और उसके बाद एक्टिंग करियर जब शुरू हुआ तो स्टार वन का गोस्ट बना दोस्त, उसमें एक रोल प्ले किया था। देन कुछ सीरियल्स आए थे जैसे राधा, राधा की बेटियां कुछ कर दिखाएंगी, दैट वाज ऑन एनडीटीवी इमेजिन। देन व्हील, घर घर में ऑन स्टार वन, एंड देन मेनी अदर्स। उसके बाद ऑफ कोर्स आपको पता है कि टीवी होस्टिंग, एंकरिंग एंड द 9 यार्ड्स ही टुक अप, एंड ही डिड अ ग्रेट जॉब ऑन दैट एज वेल। वी विश मिस्टर मनीष पॉल फ्रॉम द टीम ऑफ फनेजिया एंड फ्रॉम बंदा बिंदास अ वेरी हैप्पी बर्थडे।

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो।
2: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
0: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
3: इतना सब और प्राइस?
0: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
4: मैं।
5: एक्सीडेंट के बाद इंश्योरेंस कंपनी से डील करना बहुत मुश्किल हो गया था। ना वो हेल्प कर रहे थे, ना मुझे समझ आ रहा था कि क्या करूं। आई फेल्ट कम्प्लीटली स्टक। फिर मैंने ओमर ख्वाजा टीम को कॉल किया और सब कुछ चेंज हो गया। उन्होंने सारे कॉल्स हैंडल किए, मेरी तरफ से बात की और इंश्योर किया कि मुझे फेयर ट्रीटमेंट मिले। हर स्टेप पे मुझे अपडेट किया, सब कुछ क्लियरली समझाया और मेरी टेंशन कम कर दी। उन्होंने मेरी केस के लिए सच में फाइट की और आज मैं दिल से थैंकफुल हूँ।
0: कॉल नाउ टू 833-GET-OMAR, द लॉ ऑफिसेज ऑफ ओमर ख्वाजा। आपका हक, उनके जिम्मेदारी।
6: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco. Saturday from 2 p.m. onwards, experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone.
0: Sponsorship booth from $3,000 to $50,000 and vendor stalls at $750. Call 214-529-3257.
6: Celebrate India's 80th Independence Day with the entire community. IANT Anand Bazaar 2026 on Saturday the 15th of August, 2 p.m. onwards at the Comerica Center in Frisco.

दिस वाज डीनो जेम्स इका एंड बादशाह डेफ जैम इंडिया ने बनाया था जी इस गाने को एंड दिस वन केम आउट अबाउट 3 इयर्स अगो वंडरफुल ट्रैक डिफरेंट स्टाइल ऑफ म्यूजिक एंड दैट्स व्हाट वी ब्रिंग राइट हियर ऑन फन एशिया बट दिस मैन डजंट चेंज हिज स्टाइल मैन आई एम टॉकिंग अबाउट अभिषेक शर्मा पंजाब का पुत्र लेटेस्ट गेम च फिर फटे चक दिए जी लड़के ने अभिषेक शर्मा स्मैश्ड एन इनक्रेडिबल 233 रन्स ऑफ जस्ट 91 डिलीवरीज जी हाँ सही सुना आपने 2 अगस्त को एक पंजाब स्टेट इंटर डिस्ट्रिक्ट वन डे टूर्नामेंट चल रहा था जी जिसमें अमृतसर मैन सीनियर वर्सेज तरन तारण मैन सीनियर खेल रहे थे दिस गाय स्कोर्ड 233 रन इन जस्ट 91 बॉल्स विद 25 सिक्सेस एंड 15 फोर्स जी हाँ 25 छक्के 15 चौके with a strike rate of 256. Oh my God. Scored 210 off his 33 runs purely through 25 massive sixes and 15 fours. Yani ki 233 mein se sirf 23 run jo hain wo bhaag ke ya idhar udhar liye hain baki 210 run sirf chaukon aur chhakkon se aaye hain and shared a massive 305 run opening partnership with his partner and of course jo score kar gaye dusri team to fir kahan hi aa pati bhaiya 500 kuch run banaye the 533 for 8 in 50 overs this guy is crazy saath mein Suryavanshi aa gaye main to kehta hu dono ko aisa train karo bas train ki tarah hi jaye aur rukne ka naam hi na le this part of the show And this run scoring of Abhishek Verma, Sharma was brought to you by Texas Star Rehab. And the person who owns Texas Star Rehab is actually a physiotherapist for Mumbai Indians New York, the cricket team here in DFW that plays for MCL and nationwide. And uske saath saath baki bahut sare cricketers, including living legend Mr. Sachin Tendulkar ka ilaaj bhi kar chuke hain. Texas Star Rehab and Performance Center is the name of that business. They're proud to announce their brand new state-of-the-art Frisco location. Chahe orthopedic ya sports injury ho, pelvic floor therapy ho, massage therapy ho, गायट्रिक रिहेबिलिटेशन हो स्पोर्ट्स मेडिसिन हो रेड लाइट थेरेपी हो फंक्शनल न्यूट्रिशन हो दे डू इट ऑल एंड द बेस्ट पार्ट सब कुछ पर्सनल वन ऑन वन केयर के साथ करते हैं आई हैव पर्सनली यूज्ड हिम आई पर्सनली नो द जेंटलमैन ही इज थरो विद व्हाट ही डज दिल से काम करते हैं यू कैन सी दैट ट्रस्टेड बाय प्रोफेशनल एथलीट एंटरटेनर्स एंड कम्युनिटी लीडर्स इंक्लूडिंग मी दे बिलीव एवरी पेशेंट डिजर्व्स वीआईपी ट्रीटमेंट सो बिफोर यू गिव योर मॉम एंड डैड पेन किलर्स फॉर पेन मेरे कहने पर एक बारी इनके ऑफिस जाइए गो डू अ चेकअप जॉइंट पेन हो नी हो बैक पेन्स हो ऑल ऑफ दिस विल गो अवे ऑल यू हैव टू डू इज ट्रस्ट टेक्सास स्टार रिहैब एंड परफॉर्मेंस सेंटर नाउ दे आर लोकेटेड इन फ्रिस्को नया लोकेशन वहां खुला है ब्रांड न्यू स्टेट ऑफ द आर्ट एंड द सेकेंड वन फॉर यू इज इन अर्विंग वेयर डू यू फाइंड देम टेक्सास स्टार रिहैब डॉट कॉम Right after this break, I have another giveaway coming up on the other side.

0: विवाह और विवाद शब्द एक जैसे लगते हैं ना, खाली बैठा था मैं, कहा चलो बता देता हूँ, ब्रेक के बाद आया वापस।
1: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
2: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
3: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
4: Fort Worth, the wait is over. The all-new India Bazaar is celebrating its grand opening from August 7th to August 9th. And you're invited. Enjoy exclusive grand opening specials, exciting games, family fun, and your chance to win incredible raffle prizes, including an iPhone 17 Pro, iPad, and 75-inch, 65-inch, and 55-inch TVs. Spend $200 or more and receive a digital raffle entry. Join us for the ribbon-cutting ceremony on Friday, August 7th from 9 a.m. to 10 a.m. at 5152 Quad. Way, Suite 110, Fort Worth, India Bazaar, the People's Store.
5: Hello, Texas Parivar. Kya aapko pata hai? There is a first-time home buyer program under Fannie and Freddie for conforming loans that helps you to get better rates by almost half a point to 1%. So call kijiye Kamna ko at 214-845-4189, kyunki aapka bharosa hi meri pehchan hai. NMLS 96641.
6: यार मेरे फोन में हम दोनों के कितने सेल्फीज है यार।
7: तो चल उन सेल्फीज से पिज़्ज़ास खाते हैं।
6: What?
8: This friendship day, bring your friendship to Fun Pizza Kitchen. Post a selfie with your friends on Instagram, tag Fun Pizza Kitchen and enjoy 10% off your bill or a free garlic bread. Offer valid till August 3rd. Visit funpizzakitchen.com for more details.
7: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनल energy solutions or exceptional customer service. Tara Commercial Energy, powering Texas businesses for over two decades. Call 844-428-2808 or visit taraenergy.com today. Tara Commercial Energy, jo aapke business ko roshan rakhe.
9: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
10: जिंदगी एक रंगमंच है
11: और घर ढूंढना सिर्फ इंटरवल। असली क्लाइमेक्स तो तब है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और चाबी आपके हाथ में हो। पर्दा गिरने से पहले फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल, हम पक्का करते हैं कि घर सच में आपका हो, हर कदम आपके साथ।
2: कॉल 972-897-1530, firstunitedtexastitle.com।
9: देसी फ्लेवर्स भी और टेक्सास के फेवरेट्स भी, अब सब कुछ मिलेगा एक ही जगह HEB में। सोना मसूरी राइस, नानक पनीर, पाले जी बिस्किट्स और बहुत कुछ, वही ऑथेंटिक स्वाद जिसके साथ आप बड़े हुए हैं। और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो आपको यहाँ पसंद है। अब एक ही शॉपिंग ट्रिप में ज्यादा काम निपटाइए और इस समर जरूर देखिए HEB के नए DFW स्टोर्स, मिड सीरीज, अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं। तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स। HEB, हियर एवरीथिंग इज बेटर।
12: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं मिला? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस चौकटाउ कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस. पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं. तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए. चौकटाउ कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में. प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली. मस्ट बी 21 इयर्स ओल्ड टू गेम.

ए राजू, ए राजू, वो राजू था ना हेरा फेरी में, ऐसे राजू और भी होते हैं लाइफ में। और फिर राजू की एक स्ट्रगल फेज के बाद हो जाती है शादी। तो राजू बैठा था अपने दोस्त के साथ और उसको बता रहा था कि यार मैं ना रोज दोपहर को 3 घंटे आराम करता हूँ। दोस्त कहता है इसका मतलब तू दोपहर को थोड़ी देर सो लेता है लगता है। कहता नहीं, मैं आराम करता हूँ, बीवी सो लेती है 3 घंटे।

अब देखो आराम करना है फिर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है ना यार, बीवी को सुला दो आराम से, आपकी आराम हो जाएगा, रिलैक्स हो जाता बंदा। गलत नहीं समझना होता, भावनाओं को समझो। और वैसे भी मैं कहता हूँ भावनाओं को नहीं, अगर आपने एक ही भावना को समझ लिया तो उसकी जिंदगी सुधर जाएगी, बाकी भावनाओं का आपने ठेका ले रखा है। हमें भावनाओं को समझो, एक को तो समझ नहीं पाए तुम, भावनाओं को क्या समझोगे। खैर अगर आपको और कुछ नहीं समझ आ रहा है कि 15 अगस्त को आपने कहाँ सेलिब्रेट करना है, तो भैया IANT लेके आ रहे हैं आपके लिए, इंडियाज एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ टेक्सास का आनंद बाजार, विच इज द इंडियाज इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। ये है जी सैटरडे अगस्त 15th ऑन द डे ऑफ इंडिपेंडेंस डे, एंड दिस इज गोना बी एट द कमेरिका सेंटर इन फ्रिस्को। 2 बजे से होगा ये इवेंट शुरू, आपको बस वहां आना है, कंप्लीटली इनडोर्स एंड कंप्लीटली फ्री। तो ये मत मेरी ब्यूटी का क्या होगा रे, आपकी ब्यूटी का पूरा टेक केयर किया जाएगा, इट्स टोटली इन नॉट इन द सन यू नो, एंड यू सो चार्मिंग सो ब्यूटिफुल जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव विल रिमेन लाइक अ वाव बिकॉज वो सन और पसीना और द चिप चिप नहीं होगा, बिल्कुल एयर कंडीशन माहौल होगा। तो आप आइए पूरी फैमिली को लेके आइए, ऑथेंटिक फूड स्टॉल जो कि बहुत सारे लगते हैं आनंद बाजार में, ग्रैंड परेड होता है, कल्चरल परफॉर्मेंस होता है, लाइव म्यूजिक आपके लिए, फुल ऑन एंटरटेनमेंट का खजाना, शॉपिंग के साथ साथ थोड़ा सा पैसा कैश लेके आना, बीवी के पर्स में डालना ताकि आप अपने दोस्तों से बात कर सको। ब्रिंग योर फैमिली, ब्रिंग योर फ्रेंड्स एंड बी अ पार्ट ऑफ द नॉर्थ टेक्सास बिगेस्ट इंडियन इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, IANT, जिसका नाम है जी इंडिया बाजार, इंडिया एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ टेक्सास, ब्रिंगिंग यू द इंडी आनंद बाजार 2026। याद रखिए दिस इज गोना बी ऑन द 15th ऑफ अगस्त फ्रॉम 2 PM टू late at night at the Comerica Center in Frisco, and of course iske sath sath aapke liye kafi celebration cheeze wahan pe arrange ki jayengi which you will definitely enjoy. Ek gaane ki taraf aapko le ja raha hu, uske baad aa raha hu wapas, only on Fun Asia.

ब्यूटीफुल ट्रैक देयर टेकन फ्रॉम द मूवी जिसका नाम था जी कॉकटेल दुइटो यानी कि कॉकटेल टू. दिस वाज लहर नेम ऑफ द ट्रैक. शाहिद कपूर कृति एंड रश्मिका इन दिस मूवी. आई हैवंट सीन द मूवी सो आई वोंट कमेंट ऑन इट. आई हैव सीन हाफ ऑफ इट बट यू नो पिछली कॉकटेल भी दे डोंट रजिस्टर विद माई ब्रेन फॉर सम रीजन. आई कॉन्ट रजिस्टर विद स्टूपिडिटी एंड आई थिंक पैशन लव ऑल दैट इज एक्सक्यूज मैन. बट ये तो स्टूपिडिटी है ना. मतलब क्या अपने दोस्त और हटा सा नहीं हटा बत्ती हो जा. फिलहाल आपको ये बता दूं जी कि चौकटाओ कैसीनो एंड रिजॉर्ट इन डुरांट इज ऑफरिंग यू अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. दिस रक्षाबंधन फन इज योर रेडियो एंड चौकटाओ कैसीनो एंड रिजॉर्ट डुरांट वांट टू हियर योर मोस्ट अनफॉरगेटेबल मेमोरी विद योर ब्रदर और सिस्टर. देखिए भाई बहन हैं तो कुछ ना कुछ यादें तो हमारी उनके साथ होती ही हैं. अगर आप उसका एक मिनट का वॉइस नोट छोड़ना चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो कि है 214-837-7147, you could win exciting daily prizes including dining experiences, entertainment and resort stay at the Choctaw Casino and Resort in Durant. And jo grand prize hai, that is an unforgettable sibling reunion weekend at Choctaw Casino and Resort in Durant. For complete cost contest details, aapko Fun Asia Radio ke social media pages pe jana hai and just dial search for Choctaw रक्षाबंधन. नाउ अभी राइट अवे यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू गेट योर नेम इन दैट लिस्ट जिनको मिलेगा जी ऑफकोर्स डेली एक्साइटिंग प्राइजेस और फॉर दैट मैटर द ग्रैंड प्राइज ऑफ सिबलिंग रियूनियन वीकेंड. करना क्या है, मुझे स्टूडियो के नंबर पे कॉल करना है और अपनी बचपन की कोई याद. इफ यू आर अ मेल देन यू विल टॉक अबाउट अ मेमोरी विद योर सिस्टर. और अगर आप फीमेल हैं तो आप अपने भाई की किसी बात को याद करके मेरे साथ शेयर करेंगे राइट नाउ ऑन द स्टूडियो लाइन. 972-235-5555 इज द स्टूडियो का नंबर. अब मैं आपको ये बता दूं कि मेरी याद ये है जनाब कि जब मैं छोटा था तो मेरी दीदी हैं शीबा दीदी. शी इज अ कजन सिस्टर टू मी बट वी वर लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली. और उनको बार बार ये कह के मुझे बहुत मजा आता था कि तू काम वाली का बेटा है. जब भी काम वाली ने आना, मतलब कूड़े वाली ने आना, काम वाली ने आना, मैंने छुप जाना कि ये मुझे ले जाएगी. सो दैट इज़ वन थिंग दैट आई ऑलवेज. क्यों मेरे साथ ऐसा किया उन्होंने. खैर अगर आपके पास कोई अच्छी याद है अपने भाई की या अपनी बहन की देन गिव मी अ कॉल ऑन द स्टूडियो लाइन. शेयर इट विद मी राइट नाउ एंड आई विल पुट योर नेम इन दैट लिस्ट टू विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस. चाहे डाइनिंग एक्सपीरियंसेस हो, एंटरटेनमेंट हो, रिजॉर्ट स्टे हो या एक अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटाओ कैसीनो एंड रिजॉर्ट. आने दो जी, लेट्स एक्सप्लोर योर चाइल्डहुड मेमोरीज अबाउट योर ब्रदर और सिस्टर.

ठुमके तो ठुमका मारे नी लख तेरा ठुमके तो ठुमका मारे। दिस वाज संग बाय मनमोहन वारिस जो कि एक पंजाबी सिंगर हैं जी। आज के दिन इनका होता है बर्थडे, 3rd of August 1967 ही वाज बोर्न। ही इज 59 इयर्स ऑफ एज। वेरी हैप्पी बर्थडे टू दिस पंजाबी, पंजाब द पुत्र एंड ऑफ कोर्स पंजाबी फोक पॉप सिंगर मनमोहन सिंह हीर फ्रॉम द टीम हियर एट फनेजिया एंड फ्रॉम बंदा बिंदास मारविन दास विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। सीमा मेहता लॉ फर्म इज ब्रिंगिंग यू दिस बर्थडे विश। If you're on H-1B या F-1 या L-1 या किसी भी नॉन इमिग्रेंट वीजा पे हैं आप, तो आपको अगर एक क्विकर पाथ टू यूएस सिटीजनशिप चाहिए, देन यूएस परमानेंट रेजिडेंसी कैन बी ऑफर्ड बाय द EB-5 प्रोग्राम। इसके साथ साथ बहुत सारे और ऑप्शंस हैं, चाहे एम्प्लॉयमेंट वीजा हो, चाहे पर्म हो, लेबर सर्टिफिकेशन हो, यूएस सिटीजनशिप हो, दे डू इट ऑल। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन जस्ट गो टू देयर वेबसाइट विच इज सीमा मेहता लॉ फर्म .com। सीमा मेहता SEEMA MehtaLawFirm.com, or if you are looking to get more information on the EB-5 investor program, then you will email info@SeemaMehtaLawFirm.com. That's info@SeemaMehtaLawFirm.com. One more track, iske baad lete hain ji ek chota sa commercial break, and on the other side I will share one of my tracks which has a relevance to today's date. Kya hai wo relevance? Pehle aane do ji, break ke baad बताते हैं क्या है रेलेवेंस। फॉर नाउ इट इज दिस वन।

0: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
1: Call 857-891-8942 today.
2: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
3: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
4: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
5: Zindagi ek safar hai suhana, yahan kal kya ho kisne jana.
6: Life ho ya health, kab kya ho jaye pata nahi. 13 saal tak Texas Primary Care Clinic ne jeeta aapka trust. Aur ab wahi trusted care, urgent care services ke saath naye Kaiserway location par. Lunoxy Medical, founded by Dr. Mandeep Acharya. एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे. लुनोक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 डेज अ वीक, 8 AM टू 8 PM, वॉक इन एनी टाइम. 9191 काइजर वे, स्वीट 205, फ्रिस्को.
7: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
8: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
9: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
10: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
9: Kya matlab?
10: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
9: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
10: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
9: Ab to karna hi padega, madam.
11: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
12: Ye tara wo tara har tara.
13: Arre arre arre. Dallas ke aasman mein itne saare तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है. तारा कमर्शियल एनर्जी, 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
14: जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए.
15: आपका डॉक्टर गया लॉन्ग वेकेशन पर, कोई बात नहीं. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के मल्टीपल लोकेशंस, एक्सपीरियंस फिजिशियंस के साथ क्वालिटी केयर कभी नहीं रुकती. और सिर्फ ट्रीटमेंट ही नहीं, आज ही अपना एनुअल फिजिकल शेड्यूल कीजिए. रेगुलर स्क्रीनिंग्स के साथ डिप्रेशन और एंग्जायटी स्क्रीनिंग, अल्कोहल हेल्थ स्क्रीनिंग, फाइब्रो स्कैन, विटामिन B12 टेस्टिंग और बहुत कुछ. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, हेल्थ केयर दैट नेवर टेक्स अ वेकेशन.
16: कॉल 214-666-6259 टू बुक योर अपॉइंटमेंट्स टुडे.
17: बेटा, 95% आए?
18: हाँ मम्मी.
17: गुड. अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए.
19: मेरा?
17: हाँ. प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड.
19: वो
7: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने. एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड CFO सर्विसेज. विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी. सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
3: गिव योर चिल्ड्रन द गिफ्ट ऑफ स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग एंड कल्चरल आइडेंटिटी थ्रू चिन्मया मिशन्स बालविहार प्रोग्राम. Families can choose from 3 convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, Shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Bal Vihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.

0: Raksha Bandhan is around the corner. Welcome back to your evening drive time show. And we're going to talk about Choctaw Casino and Resort, a resort in Durant that is giving you a great, great opportunity to, apne siblings ko khush karne ke liye, a special day celebrate karne ke liye. Choctaw Casino and Resorts is looking for your stories. Agar aap apni stories karenge hamare saath share, and that would be any story from your childhood about your brother or your sister. So if you're a male, you will write a story about your sister, and if you're a girl, you'll write a story about or tell a story about your brother. All you have to do is WhatsApp pe is number pe aap apna voice note chodenge. Ek minute ki kahani choti si batani hai. 214-837-7147. और डेली प्राइजेस जीत सकते हैं जिसमें है जी डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, उसके साथ साथ एंटरटेनमेंट की टिकट्स एंड रिजॉर्ट स्टेज. एंड द ग्रैंड प्राइज होगा उसमें मिलेगा जी अनफॉरगेटेबल सिबलिंग्स रीयूनियन वीकेंड एट चॉकटाओ कैसीनो एंड रिजॉर्ट इन ड्यूरांट. एंड नाउ आई हैव समबडी हुज बीन वेटिंग वेरी पेशेंटली टू टेल मी देयर स्टोरी. मैम फर्स्ट ऑफ ऑल आपका नाम एंड देन योर स्टोरी प्लीज.
1: अंकिता साहू.
0: Welcome,
1: and ये स्टोरी है जब बहुत छोटे थे हम लोग, तीन भाई बहन है, तो मैं और मेरा बीच में.
0: आपकी आवाज चली गई थी. आप हैं, आपकी बहन है और बीच में एक ब्रदर है, इज दैट हाउ इट इज?
1: नो, मैं हूँ और मेरे दो छोटे भाई हैं. तो
0: अच्छा.
1: मैं और मेरा बीच वाला भाई, हम लोग बचपन में तरबूज जो होता है उसके बीज निकलते हैं, तो उसको वॉश करके सुखा के फिर तोड़ के, तो स्पॉट फिक्स होता था एक एक छोटा पत्थर लेके. तो मैं पहले जिस स्पॉट पे बैठी हुई थी वहां पे थोड़ी देर थोड़ी बाजू में ही वो भाई बैठा हुआ था. फिर वो उठ के चला गया तो मैं उसकी स्पॉट पे जाके तरबूज का बीज तोड़ने लगी. थोड़ी देर बाद वो आया, उसने बोला मुझसे कि मेरी जगह से हटो. मैं नहीं हटी. तो उसने डायरेक्टली बीज मेरे सर पे रखे और पत्थर से तोड़ दिया. एंड आई गॉट हर्ट.
0: वाह जी वाह, दैट वाज क्वाइट सम एंगर, हां दैट वाज क्वाइट सम फ्रस्ट्रेशन.
1: एंड मैं बहुत पेशेंटली उसको करने भी दे रही हूँ. मैं मींस शॉक में हूँ कि क्या है.
0: एंड हाउ ओल्ड वर यू एंड योर लिटिल ब्रदर?
1: Maybe I was somewhere around 8 or 9 and he is 3
0: years younger. All right, wow. Wonderful. Well, that's a great story. Please tell me your name again.
1: Ankita Sahu.
0: Ankita Sahu, thank you for participating. Let's see who do we have next with us. He's been waiting patiently as well. Good evening, sir. Baki sare volumes kam kar dijiye. Bluetooth se mujhe utha lijiye. Gaadi ki khidkiyan band kar dijiye. Agar bhabhi hain to unko bolega 2 minute de do mohtarma. Aur ab aap shuru ho jaye. Aapka naam?
2: Sir, mera naam Sadik hai.
0: Sadik? Sadik. Sadik bhai, main Bluetooth pe hoon kya? दरख्वास्त आपसे हमने यही करी थी सर.
3: हेलो,
0: हम हिंदुस्तानी है ना सर, हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी सिर्फ दरख्वास्त कर सकते हैं, सुनता उनकी कोई भी नहीं है.
3: नहीं सर, मैंने बंद कर दिया.
0: अच्छा, बड़ी मेहरबानी. अब बताइए सर, आपका नाम सादिक है और क्या कहानी, क्या क्या बचपन की याद हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं?
3: सर, ये 97 में शायद इंडिया पाकिस्तान का वर्ल्ड कप था, उस वक्त की बात है. तो मैं ऐसी अपनी बहन को तंग करता था कि यार इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा. तो वो बड़े उससे लड़ती थी मेरे से कि नहीं, पाकिस्तान जीतेगा. तो जब बाई चांस ऐसी तुक्के पे मैंने अपनी बहन को बोला देख अभी कैच होगा,
0: और वो हो गया,
3: चांस पाकिस्तान आउट हो गया.
0: ओ तेरा वाला, ये तो मुसीबत पड़ गई आपके ऊपर.
3: अब वो मेरे लिए ऐसी मुसीबत पड़ी कि मेरी सिस्टर ने जो है वो मुझे सैंडल खींच के मारा.
0: वाह वाह वाह, आज तक भी उस सैंडल की गूंज आपके कानों में गूंज रही है सादिक भाई.
3: ऐसा सैंडल मारा कि उसकी हील जो है वो मेरे सीधा बोन पर लगी और मुझे हेडलाइन फ्रैक्चर हो गया.
0: ओ, पर सर वो जो दिल पे प्यार की लकीर लिखी गई वो फ्रैक्चर से कहीं ज्यादा बेहतर थी. बहुत बहुत शुक्रिया सादिक भाई. एक कॉल और लूंगा. गुड इवनिंग. Evening, Fanisha. What's your name?
4: Hello, my name is Madhu.
0: Madhu bhai, kaise hain?
4: I'm fine, thank you.
0: All right, Madhu, quickly tell me your life experience or a memory of your sister.
4: Well, she is 10 years younger to me, and actually she's no more. So it's not a, you know.
0: Well, she's resting in peace. She's resting in peace. She's in a better place. Yes. But आपकी कोई याद जो है, वो तो हम सुन के उनके चेहरे पे भी मुस्कुराहट लाएंगे और आपके भी.
4: Right. So basically, you know, she grew up in Ethiopia. Basically, my dad and mom were there, and when she, when my parents brought her home, she was a baby, and I was 10 years old, and you know, it was.
0: Sir, I want to know the story because it's a radio station. I know the memories are longer, but I want you to share one memory that you remember.
4: Well, you know, basically carrying her to school.
0: गोदी में उठा के स्कूल छोड़ने जाते थे बड़े भैया.
4: Right.
0: And then वापसी पे आते आते कुछ खिलाते भी थे उनको, कहीं से लॉलीपॉप, कहीं से कोई टॉफी, कहीं से कोई पॉपकॉर्न, कहीं से वो ग्लू वाली कैंडी, कुछ ऐसा.
4: Well, not exactly. We were not that well off, but
0: that is okay, Madhubai. That is okay. And I think ये जो एक छोटा सा स्कूल जाने तक का सफर था, स्कूल से वापस आने तक का जो आपका सफर था, और वो आपसे 10 साल छोटी थी. आई थिंक फॉर हर यू विल ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज रिमेन लाइक अ फादर, ऑलवेज रिमेन लाइक अ प्रोटेक्टिव फिगर, एंड शी कुड ब्लाइंडली ट्रस्ट के भाई अगर भाई मेरे साथ है तो दुनिया की कोई भी चीज़ मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती. मधु भाई, थैंक यू फॉर दैट कॉल, एंड आई हैव हैड 3 कॉल्स टुडे व्हिच विल सेंड टू आवर डेटाबेस. Rest is all on your kismet. Today also, we're celebrating Tom Brady, the football player. August 3rd, 1977, he was born. He's 49 years of age today. Of course, somebody who's won 7 Super Bowl championships and 4 Super Bowl MVP awards during his 2-decade tenure with the New England Patriots. Today, we are wishing Mr. Tom Brady a very happy birthday. Aaj ke din itihas mein hua tha ek gana release, jo ki tha by a girl called Camila Cabello. I'll give you a trailer of that and then play something that I made getting inspired from Camila.

तो भैया ये गाना आज ही के दिन रिलीज किया गया था, एंड दैट वाज इन द ईयर 2017, दैट्स कम आउट 9 इयर्स अगो व्हेन दिस ट्रैक केम आउट. और फिर मैंने, एंड देयर इज अ लोकल सिंगर हियर प्रियंका, शी इज वेरी टैलेंटेड गर्ल, वी मेड अ कवर सॉन्ग ऑफ दिस ट्रैक व्हिच आईड लाइक टू शेयर विद यू. दिस इज मी एंड यहाँ की एक लोकल आर्टिस्ट है प्रियंका, शी इज अ वेरी यंग गर्ल, आई थिंक शी इज जस्ट गेटिंग टू हर सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज नाउ, बट व्हेन शी डिड दिस विद मी आई थिंक शी वॉज इन हर टीन्स, एंड दिस इज द ट्रैक दैट वी बोथ मेड inspired from Camila. अरे इसका म्यूजिक का कोई बात नहीं, जब तक हम इस ग्लिच को ठीक करते हैं भैया, आपको दूसरा गाना सुनवाते हैं और आपको साथ साथ ये बताते हैं कि अगर आपने 15 तारीख का भी तो कोई प्लान नहीं बनाया है, देन IANT इवेंट इज वन दैट यू डू नॉट वांट टू मिस, बिकॉज 15 अगस्त को इंडियाज इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन यहाँ मनाया जा रहा है, जिसको बोला जाता है जीत द IANT का आनंद बाजार. आनंद बाजार के नाम से इस सेलिब्रेशन का नाम दिया गया, एंड दिस इज फॉर दिस ईयर At the heart of Frisco. You do not want to miss this. Sari details aapke liye available hai at the IANT website. So just log on to IANT.org. You'll get all the information that you need. For now, ek gana aur uske baad aake lunga aapse ijazat while I fix my Havana.

सारी डिटेल्स आपके लिए अवेलेबल है एट द IANT वेबसाइट. सो जस्ट लॉग ऑन टू IANT.org, यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट यू नीड. फॉर नाउ एक गाना और उसके बाद आके लूंगा आपसे इजाजत. व्हाइल आई फिक्स माय हवाना.